0: 94.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: जहाँ तंदूर की आंच हर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अर्विंग में।
6: इंट्रोड्यूसिंग पंजाब बाय पेज 3। पंजाब से आए शेफ्स के हाथों बना अमृतसरी कुलचा विद छोले और मक्के की रोटी विद सरसों का साग, साथ में एक ठंडी लस्सी।
5: पंजाब बाय पेज 3 नाउ इन अर्विंग। स्वाद पंजाब का, अंदाज पेज 3 का।
7: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
8: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
9: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
7: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
9: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
4: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
10: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
5: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
11: डील कहाँ?
5: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या। डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
4: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
12: दिल की बात किससे कहें?
4: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777, दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
15: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
16: वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनी शो रेडियो पर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए, सुनने के लिए। मुझे 7:07 पाँच से आठ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहता है आपका मेरा साथ ऑन फ्राइडे की। फ्राइडे व्हेन आई से द वीकेंड, वीकेंड वाइब्स ऑन, क्योंकि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: और इस समय तो स्पेशली दैट द वीकेंड को हमने च्युइंगम की तरह स्ट्रेच कर दिया है. इट्स स्टिल फार फार फार अवे वर्क डे विच इज मंडे. सो यस, थरली एंजॉय इट. एंड व्हेन यू आर विद मी ऑन फनीशा रेडियो, आई टोटली टोटली फील दैट आई यू डेफिनेटली नीड टू हैव सो मच फन. और इस फन में आ जाता है एक कॉल, ट्रिंग ट्रिंग, जेलू राम स्पीकिंग, और मुझे बोलते हैं मुझे आज तक कौवे ने नहीं काटा नवनीता. तो मैंने बोला अच्छा, इससे क्या बात साबित होती है, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, झूठ बोले कौवा काटे. ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे मुहावरे हैं ना लाइफ में, जो क्यों है वो मुहावरे नहीं पता. यू नो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आई मीन वाई विल द आंगन बी टेढ़ा. बट होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें जिसको हम गंभीरता से नहीं सोचते. हमारे झीलू राम ले आते हैं उसे.
1: किसी को नहीं बताया, यू नो यू बीन माय बेस्ट बडी सिंस फॉरएवर, राइट?
0: That's for you.

ये कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खाने पीने निकले हैं, पार्टी की तैयारी है, समबडीज माइलस्टोन और समथिंग इज हैपनिंग, यू नो फ्राइडे इज दैट फील।

माय गॉड. तो ये तो था वो जो फिल्म है ना जिसमें मुंजिया, जिसमें वो भूत बने थे, काइंड ऑफ आई एम गेस, बट दैट वाज द फिल्म. बट द सॉन्ग्स वर सो गुड एंड आई हैव ऑलवेज लव प्लेइंग दोस सॉन्ग्स. सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत. यू नो व्हाट, ये जो हमारे कुछ कुछ बातें होती हैं फोन्स के लिए, कौन मुझे सच सच बताएगा कि कितने बार आपके फ़ोन खोता है? आई मीन मैं तो ऐसी हूँ, आई गो इन टू द वार्डरोब एंड आई हैव पिक्ड अप समथिंग एंड आई लेफ्ट माई फ़ोन देयर एंड आई कीप थिंकिंग बैक एंड रीट्रेसिंग माई स्टेप्स कि कहाँ होना चाहिए फ़ोन. बट एट द डे व्हेन आई कैन येल, वेयर इज़ माई फ़ोन, फ़ोन तुम कहाँ हो, एंड द फ़ोन कैन येल बैक, यहाँ यहाँ काउच पे वो तकिया हटाओ, देन आई विल रियली फील इट इज अ स्मार्टफोन. व्हाट डू यू से? ये तो होना ही चाहिए ना. बट वो फाइंड माई फोन का जो एक फीचर है ना, वेन यू कैन, यू आर वेयरिंग योर वॉच, आई फोन वॉच, एंड देन यू कैन फाइंड योर फोन एंड टी टी टी टी टी टी करके. मैं कम से कम उसको दिन में 4 से 5 बार तो मेरा बजता ही है. सो दैट इज हाउ इट येल्स बैक एट मी. बट वॉइस एक्टिवेटेड भी हो जाए तो अच्छा हो, कि मैं बोली फोन वेयर आर यू एंड द फोन सेज आई एम हियर, यू नो, तभी मजा आएगा. व्हाट डू यू से? सुरैया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक. आज आपका जन्मदिन है अक्टूबर 2 को. योर सन स्वीट हार्ट शफी ने कॉल किया है. शफी कहते हैं सुरैया मेरी मम्मा का जन्मदिन है तो हो जाए. तो मैंने कहा हो जाए, और वो हो जाए में ये वाला ही गाना तो होना चाहिए ना. हैप्पी बर्थडे सुरैया.

0: कि सुरैया सब कुछ लेने के काबिल है, वैसे सुरैया जी दैट वाज सच अ गुड ब्यूटीफुल डेडिकेशन फ्रॉम योर सन सफ़ी, और ये तो मज़ा ही आ गया। आप ही पर एक गाना बन चुका है, सुरैया जान लेगी क्या। वहीं पर हम रुक जाते हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं हूँ आपकी होस्ट नमनीता, 5 साल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये जो अमेजिंग सा शो है इसलिए है क्योंकि फ्राइडे मूड ही ऐसा होता है यार, टोटल धमाल। और इस मूड में हम शुरू कर देते हैं एक गेम शो भी, जिसका नाम है गर्ल हिंदी हिंदी बोल।
1: गर्ल हिंदी हिंदी बोल,
2: गर्ल हिंदी हिंदी बोल, गर्ल हिंदी हिंदी बोल।
0: ओय ओय ओय ओय, जमूरे क्या बोलेगा, बोलेगा तो बस हिंदी। उर्दू इज अलाउड बट नॉट अलाउड इज अंग्रेजी। पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है हमारे हिंदी भाषा में और बैठ जा रही है बहरूपिया समझ के डिस्गाइज्ड कि मैं तो हिंदी हूँ, लेकिन हम चुन चुन के निकाल रहे हैं, कह रहे हैं मैडम मोहतरमा आप हिंदी नहीं हैं, आप तो अंग्रेजी हैं। तो फोन उठाइए, नंबर दबाइए 9702355555 है स्टूडियो का नंबर। अच्छा, व्हाट व्हाट झुमका, मतलब क्या झुमका भी बोल सकते थे, बट नहीं, झुमके में भी हमें वॉट लगाना है। आजकल की यंग जनरेशन, आई टेल यू।

0: What, झुमका? What, झुमका? तो झुमके से याद आया यार, इंडियन एथनिक वेव ज्योतिका पटेल इज गिविंग अवे. झुमका नहीं करूंगी तो इयररिंग्स कहूंगी. झुमका कह लीजिए बट है इयररिंग्स. आप सेलिब्रेट कर सकते हैं नवरात्रि विद अ फैबुलस न्यू लुक फॉर एवरी नाइट, क्योंकि ऐसे ही है खूबसूरत चनिया चोली इंडियन एथनिक वेयर ज्योतिका पटेल के पास, जो हर रोज के लिए आप एक नया आउटफिट ले सकते हैं. बिकॉज आई नो आई हैव फ्रेंड्स हु हैव टेकन ऑल डे फॉर ऑल एवरी डे, और इतने सारे नवरात्रि सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, इवनिंग नाइट्स एंड ऑल स्टार्स कमिंग टू परफॉर्म. एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कॉन्टेम्प्ररी चनिया चोलीज अलॉन्ग विद कस्टमाइजेबल वेडिंग एंड ब्राइडल वेयर फॉर मैन एंड वुमेन एट इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल. हाँ, दे डू वेडिंग आउटफिट्स एज वेल, और कस्टमाइज भी करते हैं ब्राइड ग्रूम एंड इवन द पीपल हु आर अटेंडिंग द वेडिंग के लिए. फोन उठाए, नंबर दबाए, उन्हें कॉल कीजिए 9454442194, या फिर विजिट कीजिए ज्योतिका पटेल designs.com. और अब एक ब्रांड न्यू झुमके के लिए यू कैन विन अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ इयर रिंग्स फ्रॉम ज्योतिका पटेल डिजाइन. मैंशन you know, go there and mention that you won it at Fun Asia and you can get it. And unka where do they have their showroom? It's in Valley Ranch in Irving, Texas. So that is super duper maza aa gaya. Chali leti hu main apne agle listener ko aur gal hindi mein dekhti hu ki wo jeet jayengi kya ye jhumka from Indian Ethnic Wear by Jyotika Patel. Welcome, naam kya hai?
1: मेरा नाम राधिका
0: है. ओ, नाम क्या है? राधिका. वेरी गुड राधिका, यू आर रेडी टू प्ले गर्ल हिंदी. हिंदी बोल.
1: यस.
0: सो आप अगर आप जीत गई तो आपको मिलेगा इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल से अ पेयर ऑफ इयररिंग्स. साउंड्स गुड?
1: बिल्कुल
0: सुपर. तो आप स्पीकर फोन में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो प्लीज आप स्पीकर फोन से हट जाइए.
1: मैं गाड़ी चला रही हूं. हां जी,
0: आप ही चला रही थी गाड़ी?
1: हाँ.
0: ऐसा लगा नहीं कि मुझे लगा आप साइड में बैठी हैं, बट ओके, आप कॉन्सेंट्रेट वैसे रोड पर ही कीजिएगा. ओके.
1: हाँ.
0: Awesome. Your time starts now, राधिका. Wonderful. आप चला तो रही हैं गाड़ी, बट वेयर आर यू गोइंग?
1: मैं अपनी एक दोस्त के घर पे जा रही हूँ.
0: ओह, वाय अकेला?
1: क्योंकि घर पे मेरी बच्ची सो रही है तो मैं अकेली जा रही
0: हूँ. ओह अच्छा, नहीं तो बच्ची को लेके जाती हैं?
1: हाँ, बट अभी वो थोड़ी छोटी है. तो
0: बट अभी
1: मेरे
0: वो छोटी है
1: उसके साथ. हाँ जी,
0: बट अभी वो छोटी है.
1: ओह,
0: बट तो बट इन हो ही जाता है.
1: ओह नो,
0: आई नो. बट अभी वो छोटी है, लव इट. तो इसकी वजह से पति आपके भी उनका ध्यान रख रहे हैं और इसलिए आप अकेले जा रहे हैं. एंजॉय मैन, एंजॉय फ्राइडे नाइट, मजे करके आइए. ये गर्लफ्रेंड्स का मिलाप है?
1: हाँ, ऐसा ही कुछ.
0: ठीक है, ऑसम, इंजॉय. थैंक यू राधिका, आई एम सो सॉरी ये आपको झुमके नहीं मिले ज्योतिका पटेल से.
1: नो, दैट्स ओके,
0: कोई और ले लेगा, बट लेट्स सी. थैंक यू सो मच. सो यस, इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल इज गिविंग अवे इयररिंग्स इफ यू कैन विन दिस गर्ल हिंदी हिंदी विद मी. लेकिन अभी ये गाना.

0: लाल पीली ना करे आंखें, गुस्से में क्या पड़ा है दोस्तों, जस्ट बी हैप्पी। ओके, टेकिंग माय नेक्स्ट कॉलर ऑन एयर, नाम है इनका दर्शन। वेलकम दर्शन जी, स्वागत है आपका गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर। हाय, हाउ आर यू
1: जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: Awesome, मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। तो इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल के इयररिंग्स फ्री में जीत सकते हैं आप, एंड यू टोल्ड मी यू विल विन इट फॉर योर वाइफ, राइट?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी ना बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही है, इफ यू आर ऑन योर ब्लूटूथ और स्पीकर फोन आप प्लीज हट जाइए।
1: श्योर, इज दिस बेटर?
0: लिटिल बिट बेटर, या बेटर। पता नहीं, वापस से मेरी ही गूंज मुझे सुनाई दे रही है।
1: ओके, यस मैम।
0: Awesome. See, this is so much clearer. So your time starts now. Darshan ji on air on Panesha Radio. So you, have you ever played Gal Hindi Hindi Bol pehle? Your time has started.
1: हाँ जी।
0: आपने खेला पहले?
1: नहीं, पहले तो मैंने नहीं खेला।
0: हाँ, but आपने सुना है?
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: ओके, सो फिर क्या लगता है सुनकर कि आप हिंदी बोल ही सकते?
1: काफी अच्छा है।
0: काफी अच्छा है,
1: काफी अच्छा है।
0: कहाँ से सीखी आपने हिंदी?
1: हिंदी तो हम बचपन से ही सीखते आते हैं।
0: एंड देन
1: हिंदी हमारी मातृभाषा है।
0: हाँ, आपकी भी ना, बहुत जन की मातृभाषा नहीं होके भी दे स्पीक वेरी वेल, यू नो, स्पेशली हैदराबाद में।
1: बिल्कुल सही है, ये बात से मैं सहमत हूँ आपसे।
0: सो यू हैव किड्स?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: हाउ ओल्ड?
1: एक है 13 साल का, दूसरा है 17 साल का।
0: वाओ, डू दे नो हिंदी?
1: हाँ जी, वो भी बोलते हैं।
0: हिंदी घर पे आप लोग बोलते हैं सब कोई?
1: जी बिल्कुल।
0: वेरी नाइस, सुपर, आई लाइक इट। सो डिड यू टीच देम सेपरेटली और वो बस सीख गए बोली से?
1: उनके पाठशाला में भी था तो उनको आता है।
0: सो यू मेड देम स्टडी? आप अमेरिका बहुत हाल ही में मूव हुए हैं?
1: करीबन 2.5 साल हुआ है।
0: ओह, ये तो बहुत ही छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा 2.5 साल का, यू नो, इट्स सो, यहाँ पर लेजेंड्स हैं, मतलब लोग तीन तीन तीस तीस साल से, यू नो, सो ओह देन तो 17-year-old किड इंडिया में पढ़ ही चुका है हिंदी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ऑसम, दैट्स व्हाई।
1: उसने अपनी 9वीं कक्षा तक वो भारत में पढ़ा है।
0: हाँ,
1: सो दैट्स, और 10वीं से उसने यहाँ पे किया है।
0: ऑसम, आई लाइक इट। सो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे डैलस वासियों को?
1: जी, वैसे तो बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही प्यारी जगह है, प्यारे लोग हैं, बस ऐसे ही बने रहे।
0: आप सेटल हो गए?
1: मैं ऐसा बोलूंगा, मैं अभी भी हो रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है।
0: बिकॉज मैं अभी भी सेटल हो रहा हूँ, बिकॉज बहुत बड़े बड़े शहरों में हो जाता है, बट नो, आई विल गिव इट टू यू बिकॉज आई वॉज स्ट्रेचिंग यू, यू वर इन हिंदी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो अभी आपका वक्त ख़त्म हो चुका था बिकॉज निकल गया, क्योंकि आप बस अपना थोड़े से गार्ड्स छोड़ दिए और बिकॉज में आ गए। बट आई विल गिव यू दिस इयररिंग्स फॉर योर वाइफ, कंग्रेचुलेशन।
1: थैंक यू, अप्रिशिएट इट।
0: हाँ, आप कहीं जाएगा मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। ओके,
1: श्योर।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
4: Yaar, festival season aa raha hai aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
5: Kitni lambi list hai?
4: Bas 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
6: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
8: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd. After your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
11: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
10: Miss Clicks?
12: 100 logon ne click bhi kiya.
10: Customers kitne aaye?
13: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
14: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention in

0: वाओ, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे यार, मजा ही आ जाता है, मूड ही बदल जाता है, और इतना अच्छा अगर वेदर हो तो चार चार लग जाता है. व्हाट यू से, ये फाइनली फॉल इज हियर. वैसे मूसलाधार वर्षा हुई 2-3 दिन तक, तो ऐसे हुई कि सम प्लेसेस विजिबिलिटी वॉज शून्य. आई मीन यू कुड जस्ट सी द नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू आर ड्राइविंग, स्टेप क्या, चक्का. बट या बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी सुनने में आए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर आइज राइट ऑन द स्ट्रीट वेयर यू आर ड्राइविंग, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बारिश हो रही हो तो, बट यार वेदर अच्छा हो गया, ठंडक आ गई है, टेम्परेचर्स हैव गॉन डाउन, एंड दिस इज़ व्हेन वी आर यूजिंग आवर बैकयार्ड्स एंड प्लानिंग पार्टीज, आउटडोर पार्टीज. यही तो मौसम है जो वेटेड रहता है डैलस का, जिसकी वजह से हम डैलस की शान समझते हैं इस वेदर को. सुपर से ऊपर. चलिए मैं अपने अगले कॉलर को ले लूँ फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. चलिए लेती हूँ ऑन एयर. गुड इवनिंग फाइजर रेडियो, आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल में.
1: हेलो, हाउ आर यू?
0: आई एम ऑसम मयंक साहब. देखिए आपको, आपका नाम भी मैं जान गई.
1: अभी अच्छा ठीक है, चलो मैं क्रेडिट दे देता हूँ, मन नहीं है मेरा लेकिन ठीक है.
0: सुपर. अभी अभी सब कुछ भूल चुकी थी, बट वेरी नाइस मयंक साहब. आप गर्ल हिंदी नहीं खेलना चाहते?
1: हाँ, अगर आप खिलाएंगे तो क्यों नहीं खेलेंगे.
0: हाँ, मतलब आप तो फोन किए हैं खेलने के लिए, और मैं ना खिलाऊ तो ये तो नहीं किया जा सकता है. बट कोई जीता हुआ इंसान फिर कॉल कर ले और फिर जीत जाए, वो मुझे पसंद नहीं आएगा वैसे.
1: अच्छा ऐसा आएगा. हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, आप हरा दो मुझे फिर, क्या उसी का एक ही इलाज है.
0: हाँ एक ही इलाज है. तो चलिए आपका वक्त शुरू करती हूँ अब. वेरी वेरी नाइस मयंक साहब, आप डैलस में कब से हैं? इतना सोचना पड़ रहा है. 6 साल. वाओ वेरी नाइस, दैट्स नॉट फार. सो वेयर वर यू बिफोर दैट?
1: 6 साल के पहले दूसरे राज्य में था मैं.
0: जैसे जहाँ?
1: You can Ohio, talk. I think.
0: Ohio, I think. Oh,
1: अरे okay. यार.
0: There you go. ऐसा ही होता है. I think. आपका दिमाग आ गया बीच में.
1: Over confidence हो गया मैं भी.
0: आज तो हो गया.
1: नहीं चलो ठीक है, मैंने जान करके बोला. आपको वैसे भी जिताना नहीं था ना मुझे. You don't like एक बार जो जीता है उसको वापस जिताना, तो मैंने एक बार जाने देते हैं.
0: चलिए इसी बात पे जाने देते. थैंक यू सो मच. यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग. ऑसम. हैव अ ग्रेट वीकेंड. ओके बाय बाय. ये है मयंक साहब 104.9 FM फनीजा रेडियो पर. आज खेलने आए थे और फिर मुझे हराने आए थे. पहले ही मैंने उन्हें थोड़ा सा तो दे ही दिया था, यू नो थिंग, कि हार ही जाना चाहिए उन्हें. लोड

0: beautiful song, Juvit Nautiyal, Shashwat Sachdev, Irshad Kamil ke bol. This is from Dhurandhar, The Revenge, Akhri Ishq. सुन रहे 104.9 FM फन एशिया रेडियो. दोस्तों फ्रिस्को, आप गेट रेडी फॉर रॉयल फीस्ट. द पॉपुलर बिरिस्ता हाउस फ्रॉम डेंटन इज नाउ इन फ्रिस्को बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. एंजॉय ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलिशियस डेजर्ट्स एंड मोर. यार खाने के वक्त ये सब बोला जाए तो मुंह में पानी आ रही होती है, बाढ़ आ रही है मेरे मुंह में. Bring your family and friends to 6377 Custer Road, Frisco, Texas. Make it a feast to remember. और आज जो हम गल हिंदी हिंदी खेल रहे हैं उसमें जो जीतेंगे उन्हें मिलेगा $20 gift coupon for dine in only. और one winner will be selected. तो ठीक है, लेती हूँ मैं अपने अगले लिसनर कौन है फॉर गल हिंदी हिंदी बोल. गुड इवनिंग फनीशा, रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत. हाय.
1: नमस्ते, मैं श्रीरंग बात कर रहा हूँ मकीनी से.
0: श्रीरंग मकीनी से, वेरी नाइस श्रीरंग साहब, वेलकम टू गल हिंदी हिंदी बोल.
1: धन्यवाद.
0: तो आप गल हिंदी हिंदी खेलना चाहते हैं?
1: जी जरूर.
0: चलिए शुरू करें, आपका वक्त
1: शुरू हो रहा है.
0: हाँ हो गया, योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ. इतना सोच सोच के ना बोले, बस बोलते जाए. ओके, बात ही कर ले मुझसे. देखिए कितना बात कर सकती हूँ मैं, डोंट यू थिंक सो? ये आरजेस बहुत बात करते हैं.
1: काफी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तभी तो सबके सब लगे हुए रहते. जब भी कार शुरू करते हैं
0: कार
1: तो फन एशिया शुरू हो जाता है.
0: कार शुरू करते हैं
1: कहीं बाहर जाने के लिए जब भी.
0: हाँ. कार हिंदी है क्या?
1: ओ
0: नहीं समझ पाए. जब भी कार शुरू करते हैं, ओ माय गॉड, बट हो जाता है. श्रीरंग जी थैंक यू सो मच
1: फॉर योर कॉल.
0: नेक्स्ट टाइम आप पहले, बट आप पहले जीते हुए, आई नो दैट. यस, ये कार आ गई बीच में गाड़ी चलाते चलाते. यार गुड इवनिंग फनीशा रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. हेलो.
2: हाँ जी.
0: हाँ जी, हाय, हाउ आर यू?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: वेरी वेरी नाइस. आप स्पीकर फोन से हट जाइए और अपना नाम बताइए प्लीज.
2: मेरा नाम नेहा है.
0: नेहा जी, आप स्पीकर फोन या ब्लूटूथ पर हैं? या यू फाइन?
2: हाँ जी.
0: ऑसम. सो नेहा जी, आप गल हिंदी हिंदी खेलना चाहती हैं?
2: हाँ जी, मैं खेलना चाहती हूँ.
0: चलिए वक्त शुरू करती हूँ आपका. Alright.
2: There
0: you go. This is Neha on Fun Asia Radio on a Saturday evening. क्योंकि हम कहते हैं Thank God it's Friday. और आता है ये शो on Friday के Friday. Neha जी, so where are you going? I know आपकी गाड़ी में कोई और भी है.
2: हाँ, मेरा पति है और मेरा एक बेटा है.
0: अच्छा, how old is your बेटा?
2: 4 साल.
0: 4 साल का. आप off air, on, off and on में जा रही हैं. Which I can feel it, but where is this safari going?
2: हम घर की ओर रवाना हो रहे हैं.
0: अयो, रवाना हो चुके? कहाँ, क्यों, कैसे, किधर से?
2: हम गए थे वॉलमार्ट कुछ खरीदने.
0: क्या खरीदा?
2: बेसिक.
0: बेसिक, अच्छा बेसिक खरीद लिया आपने. जो हिंदी में नहीं खरीदा बेसिक चीजें.
2: टमाटर प्याज.
0: मतलब बेसिक जो होता है वो अंग्रेजी है कि हिंदी से मैम? है ना,
2: हो गया.
0: सो सैड. आई नो, हो गया. वर्ड जो है ना ऐसा लगता है हो गया, यू नो. ऑलराइट, थैंक यू. यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग, एंजॉय योर वीकेंड. ओके, बाय बाय. ये तो बिरिस्ता वाला तो गिफ्ट गिव अवे नहीं गया है अभी तक. कोई बात नहीं, इस गाने के बाद देखती हूँ. वैसे आज मैं 9 बजे तक हूँ. आई एम नॉट लीविंग द स्टूडियो टिल 9 टुडे. 5 से 8 स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट रहता है मेरा शो, बट आज 1 घंटा अधिक. स्वाति इज डाउन विद द वेदर. यार हो जाता है, वेदर जब चेंज होता है ना, ये गले में खराश, खिच खिच और बुखार. संभल के रहिएगा आप सब.

0: This one from the Bads of Bollywood, Too Good a series by Aryan Khan. Yes, Shah Rukh Khan ke सुपुत्र ने बनाया यह फिल्म, बहुत ही कमाल का धमाल का बनाया. सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio on this Friday evening on my show. Thank God it's Friday. वैसे फेस्टिव सीजन है, कॉल्स फॉर देसी आउटफिट्स, मिठाई, नमकीन और भी आपके फेवरेट गुडीज जो आप लाना चाहते हैं अपने देश से यहाँ पर, क्योंकि दिवाली भी आ रही है. बहुत कुछ फेस्टिविटीज, नवरात्रि, ब्रिंग देम होम यार विद SFL वर्ल्ड वाइड. हाँ, वो डोर स्टेप पर डिलीवरी करते हैं और आपकी डोर स्टेप से पिकअप करके कहीं और भी पहुंचा सकते हैं. ओशन शिपिंग फॉर लार्जर आइटम्स भी करते हैं. पूजा की वो जो मंदिर है, आप सोच रहे हैं यार वहाँ देखा था इंडिया में और उसको मेरे ये जो कॉर्नर है उसमें बहुत खिलेगा, वाई नॉट. झूलाज हैं, फर्नीचर है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो वहीं मिलती हैं, ले आइए. लाने के लिए करना क्या है, sflworldwide.com पर जाना है. शिपिंग एंड मूविंग विद इन USA चाहिए, वो भी वो करते हैं. फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड विजिट sflworldwide.com. फोन उठाइए, नंबर दबाइए 800-691-2335. दैट इज द नंबर फॉर SFL Worldwide, ब्रिंगिंग फेस्टिविटीज क्लोजर टू होम. यस, दैट इज व्हाट इट इज. सुन रहे 104.9 FM फनीजा रेडियो और गर्ल हिंदी हिंदी बोल के लिए आई नो My listeners are calling. Good evening, Financial Radio. आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर. How are you?
1: Hello. Yeah, I'm fine. How are you?
0: Awesome, awesome. नाम बताइए.
1: सत्या.
0: सत्या. अच्छा, आप झूठ नहीं बोलते.
1: आज मैंने कोशिश करता हूँ.
0: कोशिश करता हूँ. आज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि झीलूराम बोल रहे थे कि मुझे काले कौवे ने नहीं काटा है क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे. आपको भी नहीं काटा क्योंकि आपने भी सत्य बोला है हमेशा.
1: बराबर.
0: काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं ये डायलॉग, मुझे काले कौवे ने नहीं काटा क्योंकि मैं सत्या हूँ. आपका वक्त शुरू होता है अब सत्या साहब फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. ओके, मुख्यमंत्री. हाँ जी. सो सत्या, आपको आपका नाम किसने रखा वैसे, आपको पता है?
1: माँ ने रखा था. हाँ,
0: यू नो. अच्छा, बट बहुत लोगों को पता नहीं होता, बहुत लोगों को सीरियसली पता, पूरी स्टोरी होती है उनके नेम के पीछे. सो वेयर आर यू गोइंग?
1: मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ.
0: अभी खाली आप इतने दुखी हो गए क्यों बोल रहे हो? अच्छे से खुश हो गए बोलिए, मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, हम मस्ती करने वाले. व्हाट आर यू डूइंग टुडे?
1: ऐसे ही मजाक मस्ती करेंगे.
0: कोई मजाक नहीं किया तो
1: शरबत वगैरह पियेंगे.
0: शरबत पीते आप? अच्छा, शरबत पीते. ओके, फ्राइडे नाउ को कौन सा शरबत पीते आप?
1: काला खस्ता पियेंगे.
0: काला खस्ता. अच्छा,
1: सोमरस होगा तो वो भी पी लेंगे.
0: सोमरस, वाह वाह वाह वाह. सो व्हाट आर द प्लान्स? इट्स ऑल बॉयज पार्टी और इट्स फैमिली पार्टी?
1: नहीं, घर घर के ही लोग हैं. उसकी बीबी भी है और बाकी दोस्त भी है.
0: तो मतलब फैमिली पार्टी है, सब परिवार.
1: हाँ हाँ, बराबर. सब परिवार है.
0: हाँ, वही खोज रहे थे बट नहीं मिला. मैं दे दी सप्लाई वर्ड का, है ना?
1: बराबर.
0: ऐसे ही कुछ हुआ. सो यू आर नॉट टेकिंग योर वाइफ अलोंग विद यू?
1: हाँ, वो भी जा रही है लेकिन वो खुद ही आएगी. तो वो बाहर गई है तो वो वहां से आएगी.
0: तो टू कार्स टुडे. हाँ
1: हाँ जी, दो गाड़ियां लेके जाएंगे.
0: हाँ, मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता टू कार्स. तो लौटते वक्त नींद आ रही होती है और कार ड्राइव करना पड़ता, राइट?
1: बराबर. लेकिन अभी हाँ, इतना दूर नहीं है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है.
0: अच्छा, नजदीक
1: में ही है.
0: छोटी वाली बात है. ओके, वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है.
1: थैंक यू, थैंक यू.
0: बिरिस्ता से $20 का गिफ्ट कूपन. ओके, सो ये फ्रिस्को में खुल चुका है. बिरिस्ता फ्रॉम प्रिज्म बार एंड ग्रिल. ओके, आप हैदराबादी बिरयानी खा सकते हैं. आप कहाँ से वैसे? हैदराबाद से? नहीं,
1: नहीं, मुंबई.
0: मुंबई से. अच्छा, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स भी हैं वहाँ पर. डिलिशियस डेजर्ट्स भी हैं और भी बहुत कुछ. ओके, तो मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ और अपने लिसनर्स को ये गाना भेंट करके जा रही हूँ.
1: जरूर.

थैंक गॉड इज फ्राइडे. वैसे थैंक गॉड इज फ्राइडे 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आता है मेरा शो, लेकिन आज ये स्ट्रेच हो रहा है टिल 9 o'clock. आवर वेरी ओन स्वाति इज डाउन अभी विद द वेदर, और बहुत खांसी बुखार टाइप है जिसकी वजह से वो नहीं आवा रही हैं. पर मैं ये आपका एंटरटेनमेंट जारी रखना होगा क्योंकि फनीजा 24/7 आपके एंटरटेनमेंट प्लेजर्स के लिए आता है एंड वी मेक इट हैपन फॉर यू. सो दिस फ्राइडे इवनिंग लेट अस स्ट्रेच इट टिल 9 o'clock.

0: सिर्फ लव रंजन फिल्म तू झूठी में मक्कार में रणबीर कपूर वेरी वेरी गुड एक्टर मैन. यू नो ये हल्का फुल्का मूवी उन्होंने किया था, फिर भी हर एक स्क्रीन के उनकी जो प्रेजेंस है ना सुपर डुपर. एंड विथ श्रद्धा कपूर. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे दोस्तों, ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी. एंड आई नो लॉट ऑफ यू आर स्टिल कॉलिंग फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. आई विल टेक अ फ्यू मोर कॉल्स फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल, बट वी आर गेटिंग इन टू अ ब्रेक. ब्रेक के बाद आने के बाद मैं आपको बाय बाय नहीं कर रही हूँ, मैं 9 तक हूँ. सो कैरी ऑन लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो विद मी योर होस्ट नवनीता. 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट था अभी तक शो, लेकिन हार्ट से ही रहेगा 9 तक भी. डोंट.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैना चाहूं.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी, ब्रिलियंस, सेलिब्रेशन. तन्मय

0: बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर, चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो। अब शाइन डबल विद इन बजट, लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: एक और लड्डू ले लो।
2: थोड़ी और बिरयानी?
1: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
3: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग। सुबह ड्राइव पे
0: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो। दोपहर फोन पर
16: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
7: शाम को घर पर
17: You are listening to Fun Asia Radio.
7: Your customers are listening. पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
18: Business, products या services. Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi. And connect with your customers in their own language.
7: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
18: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
7: Fun Asia Network. Be heard, be remembered, be chosen.
19: Put it on my mother, little boy.
4: वेलकम वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनी एशिया रेडियो पर। मैं आपकी होस्ट नवनीता अभी भी जा रही हूँ, शो कर रही हूँ फिलिंग अप फॉर स्वाति दिस नाइट। उनका शो रहता है 8 से 10 तक, वो देती हैं 10 तक 10 तक, लेकिन मैं 9 तक ही यहाँ रहने वाली हूँ। तो 8 से 9 रहेगा आपका मेरा साथ आज की शाम। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी बहुरूपीय रूप में हूँ मैं, जैसे कि ये Misprigenza. वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ कुछ गहरी वहरी बात करूं, बट फिर लगा मुझे कि बहुत ज़्यादा गहरी बात कर दी तो

0: बना दे पसूरी। कोक स्टूडियो सीजन 14 का बहुत ही कमाल का गाना 104.9 FM वन एजा रेडियो सुन रहे हैं। शेख गिल और अली सेठी की मिली भगत ऑन कोक स्टूडियो। चलिए लेती हूँ मैं अपने अगले लिसनर को ऑन गल हिंदी हिंदी बोल। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि ही कैन जॉइन अस ऑन गल हिंदी हिंदी बोल। वेलकम, आपका स्वागत है गल हिंदी हिंदी बोल पर। हाउ आर यू?
1: मैं बढ़िया हूँ जनाब।
0: जनाब आप बढ़िया हैं। तो आप सिर्फ हिंदी में ही बोलने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट?
1: कोशिश करेंगे। देखें, लेकिन वही बात है ना,
0: क्या है ना,
1: आप जो है ना फिरा देती हो। हाँ, गरीब बच्चों को
0: आई नो तो
1: घुमा देती हो, लट्टू के माफी घुमा देती हो।
0: चलिए आज आप मत घूमिएगा, आपका वक्त शुरू करती हूँ मैं तो। नाम तो बताना पड़ेगा।
1: बहुत बुरा चल रहा है नंदिता।
0: क्यों, ऐसा क्यों चल रहा है?
1: बस चले शुरू करें, बात करते हैं, मैं ज्यादा टाइम वक्त नहीं दूंगा आपका।
0: अच्छा, आपका वक्त शुरू हो चुका है अब। शेर खान साहब, यही नाम है ना आपका?
1: शोएब खान भाई, शोएब खान।
0: ओ शोएब खान है यार, शेर खान बना दिया। देखिए मैंने आपको पदवी दे दी।
1: हम तो देखे ना, बात ये है कि शेर तो शेर होता है ना, ना चाहते हुए भी आपने मेरा नाम ले लिया
0: है ना। सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, वही तो मैंने बोला आपको शोएब साहब। तो देयर यू गो। तो किधर भटक रहे हैं आप वैसे?
1: मैं अभी जो है, जो एक हमारा पैसे देने वाला रोड है उसके ऊपर
0: रोड है, जो रोड जो है ना,
1: पैसे देने वाला रोड,
0: पैसे देने वाला सही है रोड जो है ना, वही पर फंस गए ना
1: भाई। देखे ना, आपने फंसा दिया ना हमारे को, हम पैसे देने वाला सड़क बोल रहे हैं आपको, आपने फंसा दिया। चले कोई बात नहीं, आपकी जो है ना मधुर आवाज सुन ली और वैसे ही सुनते रहते हैं, यकीन जानिए तबीयत दिल और दिमाग वो हो जाता है अंग्रेजी ना बोलूं।
0: वेरी नाइस,
1: तो हार गया मुकाबला, तो हार गया, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप बड़ी अच्छी हैं और बड़ी अच्छी कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से अपनी जबान हिंदी उर्दू जो भी है उसको जिंदा रखा जाए। मेरे को इस बात पे बड़ी खुशी होती है आपकी, यकीन करें।
0: ऑसम, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
1: शुक्रिया जनाब, अपना ख्याल रखिएगा और अपने महल्ले पड़ोस वालों का भी ख्याल रखिएगा।
0: बिल्कुल, मैं पूरे डैलस का भी रखूंगी, आपका भी। शुक्रिया, यू टेक केयर। ओके बाय।
1: ओके ओके, बाय बाय।
0: There you go, 104.9 FM funny your radio सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, you know, and यहाँ पर ये थोड़े से कोक स्टूडियो वाले गाने सुपर लव इट।

0: Gotilo, wonderful banana FM Fun Asia Radio, and you know Dr. Cheryl Chamathil, board certified family medicine physician from Passion Health, is now available Saturdays from 9 a.m. to 1 p.m. So you don't have to miss work for a doctor's visit. Yaar, Saturday ko kahan hote hai koi doctor? Aapko milne ke liye, aapko office se chutti leni hi padti hai. Whether it's a checkup, preventive care, weight management, get the care you need on your schedule. Okay, 230 O'Connor Ridge Boulevard, Suite 110, Irving mein ye hai. Phone uthaye, number dabaye, 214-666-6259. Also, the Irving and Frisco location is open on Saturdays and Sundays too. So there you go, Passion Health Primary Care, 104.9 FM, Fun Asia Radio sun rahe hain. Aur main aapki host Namita, ye 5 se 8 se khichta hua 9 tak, आज आपका और मेरा साथ. थैंक यू सो मच. यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग. गाने बज रहे हैं. आई नो लॉट ऑफ यू स्टिल वांटिंग टू जॉइन इन फॉर गर्ल हिंदी हिंदी. तो चलिए मैं अपने एक लिसनर को ऑन एयर लेती हूँ. गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय हाय, दिस इज अर्श.
0: अर्श, ए आर एस एच.
1: हाँ, मेरा नाम अर्श है.
0: आपका नाम अर्श है, वेरी नाइस. तो आप कहाँ, आप गर्ल हिंदी हिंदी खेलना चाहती हैं अर्श जी?
1: जी, मुझे यही खेलना है.
0: यही खेलना है, अच्छा. चलिए बात ही करूंगी आफ्टर आई स्टार्ट योर टाइम. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अर्श, अर्श का क्या मतलब है?
1: अर्श का मतलब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि इसका मतलब होता है आसमान.
0: ओ हाउ लवली, माँ आप आसमान की तरफ फैली हुई है, राइट?
1: जी हाँ.
0: वेरी वेरी नाइस. सो वेयर आर यू फ्रॉम अर्श?
1: मैं भारत से हूँ. अभी मैं घर जा रही हूँ.
0: अच्छा, ओके, ये भी बता दिया आपने, वेरी नाइस. तो ये जो अर्श में ना एक गूंज भी है और शांति भी है, यू नो अर्श. आई मुझे बहुत पसंद आ गया अर्श, ये तो नाम, वाओ. अर्श जी, आपको किसी ने बोला यू हैव अ वेरी नाइस नेम, ब्यूटिफुल नेम?
1: धन्यवाद धन्यवाद. मेरा मेरा पूरा नाम अर्शता है, बट
0: ये बट तो बटन हो ही जाता है. अर्शता जी, अर्श इज ब्यूटीफुल. बता दीजिए आप अपना ख्याल, बता दीजिए.
1: मेरा ख्याल अच्छा है.
0: नहीं नहीं, आप जो बात कर रही थी उसको कंप्लीट कर दीजिए कि मेरा नाम तो ये है बट.
1: हाँ हाँ हाँ जी. तो मेरे कहने का मतलब यही था कि मेरा पूरा नाम अर्शता है, जो कि मेरे पापा बोल सकते हैं. हाँ,
0: उन्होंने
1: नाम मेरे लिए रखा है, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों के लिए आसान होता है अगर वो थोड़ा सा नाम को आप छोटा कर दें.
0: अच्छा.
1: इसलिए मैंने अपना नाम अर्श मैंने बताना शुरू कर दिया है.
0: वेरी वेरी नाइस. बट आप शुरू तो कर दी हैं, लेकिन अब खत्म होता है आपका वक्त. बट थैंक यू सो मच. यस, हैव अ वंडरफुल वीकेंड. ऑलराइट, बाय बाय.
1: थैंक यू थैंक यू.
0: सो लवली, शुरुआत अच्छी थी, बहुत ही लग रहा था कॉन्फिडेंस तो वाव है, हिंदी तो सुपर डुपर है, लेकिन ये जो बटन होता है ना, उसका क्या ही तो कर सकते हैं.

0: This is a song from Folk Studio Season 4, Pakistan. Thagiyan Zain Zohaib aur Quratulain Baloch ki awaazein. सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजा रेडियो. वक्त चेंज कर रही हूँ और समय भी चेंज कर रही हूँ विद अ बर्थडे सेलिब्रेशन. ये तो बनता है टोटल. और मेरे पास एक घंटा और होने की वजह से आई हैव डेडिकेटेड द अदर न्यूज़ एंड बज अराउंड माय प्रीवियस शो. बट ये तो बनता है. आज मैंने सोच करी, मैं आई थी कि I have to. He's my favorite. क्योंकि celebrate कर रही हूँ कपूर को, जो कभी बंटी बनकर हमें travel के सपने दिखाते हैं, कभी Jordan बनकर दिल की तार छेड़ते हैं, और कभी बर्फी बनकर बिना ज़्यादा बोले बहुत कुछ कह जाते हैं. इनके तो रग रग में एक्टिंग बसी है फ्रॉम generations टू कम, एंड वी हैव सीन इट. वो थोड़े से आँखों की मस्ती के साथ भी बहुत कुछ कह जाते हैं. यह है रणबीर कपूर. बर्थडे वीक के बहाने आज उनकी कहानियाँ भी होंगी और उनकी फिल्मों का जज्बा म्यूज़िक भी. और बर्थडे पार्टी शुरू हो, चलिए दिल को थोड़ा बदतमीज़ होना बनता है. क्योंकि ये जो है ना, इनमें एक गंभीरता भी है, एक लाइटनेस भी है, और एक फ्लर्टीनेस, बदतमीजी भी. एंड दैट इज नन अदर देन रणबीर कपूर फॉर यू गाइस.
1: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है. अदिति, मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया. बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है. मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते.

0: Castles by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
1: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
0: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
1: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
5: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
6: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
8: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
9: नेक्स्ट क्वेश्चन।
8: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
9: याद नहीं।
8: बफे में क्या था?
9: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
10: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
12: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

totally. Thank God it's Friday and you are with your host Namnita on this Friday evening stretch till 9 o'clock. पांच से आठ straight from the heart लेकर आती हूँ every Friday के Friday stretch till 9 today. और रणबीर कपूर का जन्मदिन मना रहे हैं हम on this evening. रहता तो उनका वैसे 28th को है लेकिन आज हम stretch कर दिए हैं दिन भी. रणबीर का नाम तो आप जानते हैं बट उनके दादाजी का भी नाम रणबीर राज कपूर था, सिर्फ राज कपूर नहीं था. ये काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी शायद अभी जाने हो. और वही नाम रणबीर ने ले लिया अपने दादाजी के साथ. सिर्फ फिल्मी लेगेसी नहीं पर नाम भी शेयर करते हैं रणबीर कपूर एंड दैट बिकम्स लाइक अ सिनेमैटिक कनेक्शन लेकर आते हैं. और एक लेस नोन बात यह है, सांवरिया में उन्होंने सिनेमा के पीछे मतलब कैमरा के पीछे असिस्ट किया था संजय लीला बंसाली को और इसी फिल्म में सोनम कपूर ने भी असिस्ट किया था. तो दोनों असिस्टेंट को लेकर उन्होंने उनकी फिल्म सांवरिया बना ली. बाद में वही डायरेक्टर वही दोनों असिस्टेंट सांवरिया में एक्टिंग करते दिखाई देते हैं और मज़े से दे वर लॉन्च. चलिए बंटी के साथ थोड़ा दुनिया घुमा जाए. ये बंटी बबली वाले नहीं है, नाम इनका बंटी था.

ये तो दुनिया घूम रहे हैं, दैट इज रणबीर कपूर इन दिस फिल्म, ये जवानी है दीवानी. लेकिन आप अगर घर ढूंढ रहे हैं तो ड्रीम होम में मेक इट क्लोजर देन यू थिंक. सिंस 1998 ड्रीम होम मोर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग. फोन उठाए, नंबर दबाए 9722455626 और विजिट dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स happen, and that is Mr. Hussain Panjwani for us. सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे रणबीर कपूर को, जो एक्टर तो है ही हैं, लेकिन आप उनका म्यूजिक कनेक्शन जानते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग. बचपन में उन्होंने तबला और ड्रम्स सीखे थे, हाँ, एंड रॉक स्टार में जॉर्डन के रोल के लिए उन्होंने गिटार लेसन्स भी लिए थे. सो इमेजिन, तबला, ड्रम्स, गिटार, बर्थडे पार्टी में एंटरटेनमेंट के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ वन फुल फ्लेडेड एंटरटेनमेंट का पैकेज. बट रॉक स्टार में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ही परफॉर्म्स एज अ सुपर स्टार, वी कुड सेंस दैट. एंड जब गाना होता है, सिर्फ लिप सिंक करते हैं मोहित चौहान की आवाज़ पे, तो जो कॉम्बिनेशन था ना, कमाल था. एवरी स्क्रीन पर इमोशंस झलक रहे थे. आवाज़ के पीछे की तो आवाज़ थी मोहित चौहान की, बट हिज इमोशंस. एंड द सेम थिंग ही डिड व्हेन ही डिड अरिजीत सिंह की भी आवाज़ के लिए जो उन्होंने लिप सिंक किया था. सो यू नो दैट्स वॉट इज सो amazing about Ranbir Kapoor, that he lives the screen completely. Roles mein doob jate hain aur jabhi bhi he forgets he is from a star family. He just becomes a raw actor for the director, completely surrendering for the requirement of the movie. That's what is brilliant about this rock star, Ranbir Kapoor. Enjoy this beautiful song.

totally gets into the mood. Awesome. My God, I'm such a big, hard, die-hard fan. I'm getting so many calls because I see a lot of you, my Dallas people are fan of Ranbir Kapoor. I know he's underplayed. Itne movies unke nahi aati. Do saal mein ek. I mean, I just wish he can do some more films and give us some more amazing characters जो वो प्ले करते हैं. पता है रणबीर की सिस्टर रिधिमा ने एक लवली बात शेयर की थी. रणबीर ने आर के बैनर की हर फिल्म देखी थी और उनके ग्रैंडफादर का उन पर बहुत इन्फ्लुएंस था. सो फिल्मी फैमिली में पैदा होना एक बात है और अपनी फैमिली के सिनेमा को इतने इंटरेस्ट से देखना, उससे सीखना, वो एक अलग ही कनेक्शन है. उनके लिए फिल्में वॉज लाइक ही वॉज ब्रीदिंग फिल्में. एंड रणबीर की परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा यही है कि उनका जो वल्नरेबल साइड है ना, वो स्क्रीन पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इम्परफेक्शन भी दिखा देते हैं, फिर भी अब उस कैरेक्टर के लिए फील करते हैं. एंड दैट इज़ सच एन इमोशन से भरा हुआ रोल प्ले. आई एम डेफिनेटली गेटिंग सम calls for some favorite songs of Ranbir Kapoor. So, मैंने कह ही दिया, जीनी हूँ मैं. क्या सुनेंगे आप? फोन उठाइए, नंबर दबाइए. There you go, जीनी is playing your song. But वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है. I will be leaving the studio by 9 o'clock. और ये वाला गाना for the you, दिव्या.

0: सुपर लव दिस सिड मैन, दिस इज रणबीर कपूर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए 104.9 एफएम फन एजर सुनने के लिए. एंड अटेंशन टू ऑल यू बिजनेस ओनर्स, इफ यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी. दे प्राउडली सर्व टेक्सास बिजनेस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. फोन उठाइए, नंबर दबाइए, उनको कॉल कीजिए 8444282808 या फिर विजिट कीजिए taraenergy.com. आज ही. पता है ये जो रणबीर कपूर है ना, ये कुछ ज्यादा ही ऑल अराउंडर है. ही सो मच इनटू हिमसेल्फ, सोशल मीडिया में इतना पसंद ही नहीं करते हैं दैट ही गोज आउट. और अभी जब उनकी डॉटर है तो ही इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन हर फुल्ली. और यू नो उनका फुटबॉल कनेक्शन भी बहुत है, सिर्फ हॉबी तक ही नहीं. वो 2014 में मुंबई सिटी एफसी के फाउंडिंग को ओनर्स में से एक बने ऑफ फुटबॉल. स्क्रीन पर हीरो, ग्राउंड पर फुटबॉल एंथुजियास्ट. इनके वीकेंड प्लान्स हमसे काफ़ी डिफरेंट होंगे, राइट? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विथ हिज डॉटर, फुटबॉल. आपके लिए एक सवाल, आपका फेवरेट रणबीर कौन है? बनी है, जॉर्डन है, सिड है या बर्फी? बर्फी से याद आई, अभी जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, कृषानु जी ने मुझे रिक्वेस्ट दिया है एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग का. पहले तो ही वांटेड टू लिसन टू वेक अप सिड कहे गुंजा सा, दैट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल सॉन्ग. बट देन ही सेड रॉकेट सिंह कितना अंडर प्लेड, इट वॉज सच एन अमेजिंग फिल्म दैट रणबीर सिंह दे डिड. ही प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ अ सरदार and he played it so well, a salesman who is fighting his battle in life, but it was super duper. aur unki filmon ka wo you know life mein hamesha ye hota hai that he tries characters and very believable characters and you just doob jate hain un characters mein, right? There you go, this birthday boy ka ye bahut hi khoobsurat gana. हाँ, और मैं आपको एक बात बता रही थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू फिनिश दिस ऑफ कृषानु जी. एंड ही हैड एक्चुअली प्लान्ड दैट ही विल मेक हिज किड्स वॉच बर्फी टुनाइट. एंड ही सेड, मैं ये नहीं सोचा था रणबीर का बर्थडे है या आप सेलिब्रेट कर रही हो बर्थडे और मैं सुन रहा हूँ, बट इट फील्स सो गुड दैट यू आर सेलिब्रेटिंग. आई एम थिंकिंग ऑफ रणबीर सिंह, आई एम थिंकिंग ऑफ दीज सॉन्ग्स, एंड आई वॉज ऑलरेडी प्लानिंग दिस वीकेंड का फ्राइडे नाइट मूवी दैट इज बर्फी. ओ गॉड, यू गाइज विल हैव सो मच फन, यू विल लव, यू विल क्राई, यू विल इंजॉय एंड क्रिएट मेमोरीज. गो फॉर इट.
1: अब तो ब्रांड हो गए, अब तो आएंगे इन्वेस्टर हमारी कंपनी में.

Sir, my name is Rajesh Das, new sales manager of AYS Rocket Sales Corporation. Rocket Corporation तो AYS में मिल गया, तो मैं बस वैसे ही चलाया introduction से के लिए. तो सर काम करते हैं, बाहर कहीं continue करते हैं, lunch पे.

0: क्या हो रहा है?
1: बस सर, एक एक करके उनके क्लाइंट से मिल रहे हैं।
0: मिलना मिलना ठीक है, ऑर्डर कब ला रहे हो?
1: थोड़ा अलग ही किस्म का एक्सपेक्टेशन है सर इनका।
2: पता नहीं क्या क्या मांगते हैं सर। इन रॉकेट वालों के क्लाइंट्स को कुछ अजीब ही किस्म की सर्विस की आदत पड़ी है सर।
1: बट विल हैंडल सर।
0: ये कुमार, गिरी की जगह सर्विस वगैरह चलती रहेगी, पर सेल्स वालों की हेल्प करो जो असली काम है। ऑफ कोर्स सर।
3: हाय।

ये तोड़ते ही रहेंगे रणबीर कपूर कि म्यूजिक में सेलिब्रेशन भी है, सफ़र भी, रोमांस भी और हार्ट ब्रेक भी। शायद इसीलिए हर मूड के लिए कोई ना कोई गाना मिल ही जाता है व्हेन इट कम्स टू रणबीर कपूर। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। और कोई ना कोई नया किरदार वो लेकर आएंगे ही, हम यही चाहते हैं। और भी और नए मेमोरीज बनते जाएं इनके साथ, नए नए किरदार जो ये लेकर आते जाएं हमारे लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल। एंड आई जस्ट कीप वेटिंग की, और उनकी उनको ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो फिल्म रिलीज़ भी करेंगे ना, हम सब बस पहुँच जाएंगे उनका फिल्म देखने के लिए। स्टार कलाकार को मुबारक दिया, थैंक यू मेरे साथ बनने के लिए। आई एम योर नवनीता एंड अ हैप्पी बर्थडे, बिग बिग हैप्पी वन टू रणबीर कपूर।

वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जाने का वक्त हो रहा है अब मेरा, और बस दिस इज द टाइम आउट फॉर टुनाइट ऑन पानीशा रेडियो एंड यू लिसन टू सम गुड म्यूजिक ऑलवेज, क्योंकि 24/7 आपके साथ हम होते हैं, आपके इर्द गिर्द अगल बगल, एंड बस आप मटर गश्ती करते रहिए। विच इज़ द लास्ट सॉन्ग विच आई लीव यू विथ, विच नॉट प्ले मच, बट जाते जाते ख्याल ये है, अ फिंगर दैट वाइप्स अवे टीयर्स इज ग्रेटर देन 10 क्लैपिंग फिंगर्स। ओके, सो if you can think of that, may your day be filled with kindness, compassion and beautiful moments. Good night, sleep tight, get up happy, fresh and bright, wishing you a flowerful morning, a colorful noon, a joyful evening and a peaceful night. And I know it's going to be a fantabulous day for you tomorrow. Started with a cup of positivity, phir dekhe din to bilkul positive hi jayega, kyunki aap positivity hi attract karenge. Milungi agle hafte, you take care, enjoy the weather. पांच से हाथ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अगले हफ्ते लेकर आऊंगी अपना शो विच इज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। एंड या थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, अभी तो फ्राइडे जमा है, कल सैटरडे फिर संडे, फिर देखा जाएगा हफ्ता जब शुरू होगा।

0: किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, सुइट 205, फ्रिस्को।
2: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 AM to 8 PM. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
3: भूख लगी
4: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है।
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
7: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy.
10: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Subah Drive Pe.
13: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
14: Dopahar phone par.
15: I don't listen to Spotify. I listen to Funny Share Radio.
16: Sham ko ghar par.
17: You are listening to Fun Asia Radio.
18: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
19: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स वाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
18: टू एडवर्टाइज कॉल 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net।
19: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: That garba was totally worth it. We had so much fun.
2: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
1: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
3: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
8: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
4: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
3: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
4: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
5: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
6: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
5: Barista House, richness of biryani bliss.
7: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
8: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
9: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
10: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
9: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
10: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
8: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.

0: खाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
2: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
3: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
2: Miss Clicks?
4: 100 लोगों ने click भी किया.
2: Customers कितने आए?
5: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
6: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a FunAsia Network product.
7: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to FunAsia Radio.

0: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माय स्क्वायर फीट।
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
3: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 AM Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end but the party doesn't.
6: Subha Drive Pe.
7: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
8: Dopahar phone par.
9: I don't listen to Spotify. I listen to Funny Share Radio.
6: Sham ko ghar par.
10: You are listening to Fun Asia Radio.
6: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
8: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
6: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
8: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की।

0: जी नहीं, एजी सुनते हैं।
1: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on FunAsia Radio.
2: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to FunAsia Radio.

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
3: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
5: हाय, आई एम राजकुमार राव एंड यू आर लिसनिंग टू द मोस्ट पॉपुलर FM स्टेशन इन द US, 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

solution and let the good times roll.

0: मैं हूं उमर शरीफ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फनेशिया।
1: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: सुबह ड्राइव पे
1: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शो रेडियो। दोपहर फोन पर
2: आई डोंट लिसन टू Spotify, आई लिसन टू फनी शो रेडियो।
0: शाम को घर पर
3: You are listening to Fun Asia Radio.
0: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
1: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
0: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
1: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
4: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
2: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
1: Miss Clicks?
3: 100 लोगों ने click भी किया.
1: Customers कितने आए?
4: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
3: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वाइन तू करे ब्लो बाकी करे शाइन तू करे ग्लो जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: सुबह ड्राइव पे
1: यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो दोपहर फोन पर
2: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो
0: शाम को घर पर
3: You are listening to Fun Asia Radio.
0: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
1: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स वाइल ट्रैकिंग कॉल्स बुकिंग्स और विजिट्स अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू सी यू एंड कनेक्ट विद यू
0: टू एडवर्टाइज कॉल 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net
1: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
4: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: फिर नजरें मिलाती हूँ।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो, और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: सुबह ड्राइव पे
8: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शो रेडियो. दोपहर फोन पर
9: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शो रेडियो.
10: शाम को घर पर
0: You are listening to Fun Asia Radio.
11: Your customers are listening. पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
12: Business, products या services? Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi and connect with your customers in their own language.
11: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
12: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
11: Fun Asia Network. Be heard, be remembered, be

0: Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.
1: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
2: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती। I'm sorry।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Phanasia Radio.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फनेशिया रेडियो के संग।
2: क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया,

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
10: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
14: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
15: एक और लड्डू ले लो।
16: थोड़ी और बिरयानी।
15: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
17: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
18: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ
19: प्राइमरी
10: केयर।
19: ये तारा वो तारा
10: हर तारा। अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
20: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
21: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
20: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
21: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
16: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।

0: they echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
7: नेक्स्ट क्वेश्चन।
6: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
7: याद नहीं।
6: बफे में क्या था?
7: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
1: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
12: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
13: ये last Diwali पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो already Instagram पर DP है.
14: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
15: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
13: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
15: Of course, festive collection par up to 25% off. Tathastu.
12: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco. Your divine destination for festive fashion.
16: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
12: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
16: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
16: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी। फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
17: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत हम आप ही के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। इफ यू आर आउट एंड अबाउट दिस मॉर्निंग और ड्राइव कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि यू नीड टू कीप द हेडलाइट्स ऑन दिस मॉर्निंग बिकॉज इट इज क्वाइट रादर वेल मॉडरेटली फॉगी। और बहुत ही अच्छा हो चुका है वातावरण बाहर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक। कुछ बहुत प्यारे गीत सुनती आ रही हूँ मैं भी। थॉट आई शेयर सम ऑफ दोज विद यू दिस मॉर्निंग। एनी रोमांटिक सॉन्ग्स ऑन योर माइंड, लेट मी नो, आई विल प्ले इट फॉर यू अंटिल 8:30। 972-235-5555 इज द नंबर हियर।

ब्यूटिफुल सॉन्ग. इसमें थे ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय. और विवेक ओबेरॉय की बातें करते हुए, वेल वांट टू टेल यू दैट दैट ही हैज एन अडॉप्टेड डॉटर. सम ऑफ यू मे नो एंड सम मे नॉट नो, एंड शी इज 22 इयर्स ओल्ड नाउ. हर नेम इज सहारा शाह एंड शी इज ऑल्सो अ कमर्शियल पायलट एंड अ कैंसर सर्वाइवर एंड वॉज अडॉप्टेड बाय विवेक ओबेरॉय ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड इलनेस. अच्छा, अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ. वेल शी रिसेंटली साइंड हर डेब्यू फिल्म. इट इज अ नेपाली फिल्म एंड इट विल स्टार सहारा शाह. इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर विवेक ओबेरॉय एंड यू नो आई थॉट आई शेयर विथ यू. आई थॉट दैट वॉज सच अ क्यूट मोमेंट दैट वी लव टू शेयर दीज थिंग्स विथ ऑल आवर लिसनर्स. टेकिंग योर रोमांटिक रिक्वेस्ट लेट 30. Let me know at 972-235-5555.

सुजैन डिमेलो ने भी आवाज मिलाई थी इस गाने में, जो कि आई वुड से बहुत ही प्यार से गाया राहत फतेह अली खान ने फॉर द फिल्म वीर, फिल्माया गया सलमान खान पर। दोस्तों सुन रहे हैं, अगर आप और सुनना चाह रहे हैं कोई रोमांटिक गाने, बताएं मुझे 972-235-5555 पे। विल प्ले सम ऑफ दोज फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड देन विल स्विच इनटू अ डिफरेंट मोड।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: What an intensely passionate love song that was, Bhige Honth Tere, in the voice of wonderful Kunal Ganjawala. कुछ और गीत ले आऊंगी आपके लिए आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। इस दौरान आप कुछ खास तौर पर सुनना चाह रहे हो तो बताइएगा मुझे एट 972-235-5555।
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 ईयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
4: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
2: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
5: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
6: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
5: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
6: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
7: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
8: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
7: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
8: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
2: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
2: Barista House, richness of biryani bliss.
9: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
10: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
11: जहां तंदूर की आंच हर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अर्विंग में।

And a warm welcome to each and every one of you on this beautiful morning in October. It was a bit foggy when I walked into the studio, or rather, when I was driving into the studio. काफी लंबा drive है, और you know what, ज़्यादातर I was enjoying the fog. So it was a nice, long, beautiful drive. और मैंने सोचा कि आज कुछ romantic गाने लगाते हैं सुबह सुबह. तो काफी सारे प्यारे से गीत सुने हमने इन द फर्स्ट सेगमेंट. विल कंटिन्यू ऑन फॉर अ बिट एंड देन मूविंग इन ऑन ए टॉपिक दैट आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. पर पहले आपसे पूछती हूँ, इस धुन को पहचानिए और मुझे बताइए गाने का नाम. एट द स्टूडियो नंबर 9722355555. लिसन टू दिस ट्यून.

Beautiful track that was from the film Jab We Met. Shahid Kapoor और करीना कपूर पर फिल्माया गया था और मानसी की रिक्वेस्ट पे था ये गाना. उम्मीद करती हूँ कि आप ये सेगमेंट को पसंद कर रहे हैं. अब तक काफ़ी सारे रोमांटिक गीत सुनाए, अब हम बढ़ेंगे आगे. एंड द टॉपिक इज व्हेन डू थिंग्स बिकम अ लिटिल बिट नॉट सो सिंपल रादर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स और जस्ट plain elaborate, right? Elaborate is probably the word here. तो you know, as an example, एक ज़माना था जब हम किसी को birthday wish करना चाहते थे तो बस फ़ोन उठाते थे, उनको कहते थे happy birthday, I love you, and you know, keep it simple, some blessings with it, some wonderful wishes that would go with it. पर अब जब हम किसी को birthday wish करना चाहते हैं तो क्या क्या करते हैं, especially in the world of social media. Give me a call and let me know about that. 972-235-5555. It feels like a huge party even before the birthday begins. And that party is usually on social media, but goes beyond. Let's talk about that in just a minute.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Subah Drive Pe.
7: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
8: Dopahar phone par.
9: I don't listen to Spotify, I listen to Funny Share Radio.
5: Shaam ko ghar par.
0: You are listening to Fun Asia Radio.
5: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
8: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
5: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
8: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
18: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
17: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
18: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
6: सुबह ड्राइव पे,
7: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो।
8: दोपहर फोन पर।
9: I don't listen to Spotify, I listen to Funny Share Radio.
5: शाम को घर पर।
19: You are listening to Fun Asia Radio.
20: Your customers are listening. पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
21: Business, products या services? Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi and connect with your customers in their own language.
20: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
21: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
20: Fun Asia Network. Be heard, be remembered, be chosen.
22: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
23: एंड वेलकम बैक टू फन एशिया रेडियो म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराना खूबसूरत संगीत और इस वक्त जुड़े हैं आप मेरे साथ ऑन ए टॉपिक दैट यू नो डेफिनेटली लीव्स यू थिंकिंग एंड दैट इज अबाउट व्हेन डिड थिंग्स चेंज। जैसे कि बर्थडे जब मनाते हैं तो पहले हम एक फोन कॉल करते थे, एक यू नो अच्छा सा प्यारा सा विश होता था, एक केक होता था, एक डिनर होती थी एंड दोज रियली नाइस विशेज एंड ब्लेसिंग्स वुड कैरी यू ओवर टू द नेक्स्ट ईयर। पर अब जो है समा इस आई गेस एरा में लोग जब बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे मनाने के लिए सिर्फ एक केक और डिनर काफ़ी नहीं है, एक सुबह से लेकर शुरू हो जाते हैं बर्थडे कॉफी, बर्थडे ब्रंच, लंच, फिर उसके बाद कॉफी फिर से एंड देन देयर इज दैट हैप्पी आवर इनविटेशन, देन देयर इज डिनर एंड इट गोज ऑन नॉट ओनली लिमिटेड टू द डे बट टू डेज आफ्टर टू वीक्स एंड देन समटाइम्स इवन बर्थडे मंथ बनता है।

ऑलराइट, पार्टी मना रहे हैं और वो पार्टी जो है ना, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. कभी ये मुझे बाहर लेके जाए, कभी वो मुझे लाए. ओ आई एम सो स्पेशल बिकॉज दिस ग्रुप टुक मी आउट फॉर ए वेरी टेरिफिक बर्थडे डिनर और मे बी इवन ए बर्थडे ट्रिप. और जब ट्रिप की बारी आती है तो दैट इज जस्ट नॉट इनफ कि भाई ये चार दोस्त मिलकर बाहर निकले हैं. व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन? देयर सो मच दैट नीड्स टू हैपन एट ए बर्थडे ट्रिप. एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग अबाउट देयर बर्थडे ट्रिप, लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट विद एवरीबडी. एंड इफ नॉट, इफ देयर इज अ सॉन्ग ऑन योर माइंड, देन लेट अस नो दैट एज वेल. कीपिंग इट फन, कीपिंग इट एंजॉयबल, राइट हियर ऑन म्यूजिक मंत्रा.

0: नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: तो हम बात कर रहे थे कि भाई बर्थडे हो रहा है, बर्थडे मंथ हो रहा है, बर्थडे फेस्टिवल हो रहा है, वेल उसमें शामिल है बर्थडे ट्रिप। बर्थडे ट्रिप पे जा रहे हैं हम, एंड ये वाली ट्रिप्स तो खैर यू नो द गर्ल्स ट्रिप्स और इवन गाइज ट्रिप्स एक्चुअली डिड एग्जिस्ट बिफोर। However, आजकल के ज़माने में when you are planning a girl's trip, the first thing that comes to your mind is, are we going to have coordinated clothes? What about the hashtag? खास तौर पे इस ट्रिप के लिए हम hashtags बनाएंगे. And hey, has anybody booked those professional level photographs? यानी कि that elaborate awesome photo shoot? When did all this happen? How did this happen? और क्या चेंजेस आई हैं बताइएगा मुझे। 972-235-555

0: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
1: All right, तो मौजा ही मौजा, और ये वाला जो गाना था, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उलझ जाते हैं हम जब कभी कोई किस्सा होता है या उसमें उस किस्से में होते हैं कुछ इंसिडेंट्स, जैसे कि हो गए अगर स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट या कार या ट्रक एक्सीडेंट, तो आपने याद करना है अटर्नी ओमर ख्वाजा को. Why? Well, because attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Very simple, right? इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर आपको कोई मसला है तो उसमें डील करने के लिए भी हेल्प करेंगे आपको उमर ख्वाजा. You want to make sure you have an attorney that will make sure you are compensated. इनके बारे में एक और खूबियत ये है कि you don't have to pay them until you win. Now, for a free consultation, you can give them a call at 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. Remember, attorneyomar.com.
2: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: तो दोस्तों हम बातें कर रहे थे कि when did things become so rather complicated, or rather, when did we leave the things in their best authentic and simple way. जैसे कि जब जन्मदिन मना रहे हैं तो a nice cake and a dinner was enough. It was plenty. It would be awesome and it would carry you over to the next year. However, आज के जमाने में not only is it a birthday, it is birthday week, birthday month, and then maybe a festival or like an itinerary बिछाई हो हमने to celebrate our birthday. And one of those things includes trips. Or trips के बारे में हम कह रहे थे कि जब लोग साथ में जाते हैं बस वही बहुत ही बड़ी खुशी होती थी कि लोग साथ आए साथ गए and celebrated and marked that occasion in a very very special way. However, आजकल ऐसा है कि आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, you want to make sure that you have coordinated clothes, कुछ खास तौर पे हमने कुछ प्रिंट करवाया हो to mark the occasion, to say, hey, we were here. You know what, एक स्टैम्प छोड़ना चाहते हैं हम जैसे. There's a hashtag that goes along with that trip and the photo shoot. Well, these are bigger things. However, when it comes to smaller personal things, जैसे कि किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो एंड द कपल इज टुगेदर, आई मीन दैट्स गुड इनफ ऑनेस्टली. वेल, इफ यू डोंट पोस्ट इट ऑनलाइन, लाइक पोस्ट योर पर्सनल प्राइवेट सेलिब्रेशन ऑनलाइन, तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं. देयर वाज नो सेलिब्रेशन. इनफैक्ट आजकल तो ऐसा हो गया कि वी एज अ कपल ऑल्सो विश ईच अदर ऑनलाइन. एनी थॉट्स ऑन दैट? लेट मी नो.

एंड वार्म वेलकम बैक टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस मॉर्निंग्स म्यूजिक मंत्र, जिसमें रही हूं मैं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहता है हर सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक। ले आती हूं आपके लिए हर बार एक अनोखी प्रस्तुति। आज की इस प्रस्तुति को हम जारी रखते हैं, प्रीटी मच विल बी सून टाइम टू कंक्लूड आवर टॉपिक ऑफ हाउ डिड दिस बिकम अ थिंग और अदर व्हेन डिड इट बिकम अ थिंग, थिंग्स दैट वर स्ट्रेंज टू अस नॉट लॉन्ग अगो has become a thing, and we'll talk about that in a bit.

थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज टू माई क्वेश्चन की वेन डिड थिंग्स चेंज. तो मुझे एक कॉल आया और उन्होंने कहा वेल समथिंग दैट हैज बिकम अ बिट अननोइंग फॉर देम हाउएवर यूजफुल फॉर सम अदर पीपल माइट बी वाज टू ट्रैक एवरीथिंग, जैसे कि ट्रैकिंग योर स्लीप, ट्रैकिंग योर कैलोरीज, ट्रैकिंग स्क्रीन टाइम, ट्रैकिंग योर हार्ट रेट एंड ट्रैकिंग योर स्टेप्स. पहले तो भाई जब ऐसा होता था कि हाँ सुबह उठे और कहते थे ओ बड़ी अच्छी नींद आई, पर अभी हमने चेक करना पड़ता है ऑनलाइन टू सी हाउ वेल डिड वी रियली स्लीप. इज़न्ट दैट समथिंग, इज़न्ट दैट फनी, थिंक अबाउट इट. एवरीथिंग इज ऑन द फोन, हाउएवर मोर इम्पॉर्टेंटली एवरीथिंग हैज बिकम अ थिंग. तो पूरा समय हमने अब बिताया टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वेल कोट एंड कोट थिंग, जैसे कि बर्थडे विशेस, जो कि फोन कॉल और पिक्चर्स के साथ साथ रील स्टोरीज डीपीज भी होने लग गए. फोन पर डिनर टेबल पे क्या आज पुरसा गया है उसकी तस्वीरें लेनी होती हैं खाने के पहले. नोइंग दैट समवन हैज रेड आवर मैसेज और इन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया, ये भी एक चीज है. और ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो नॉट टू लॉन्ग अगो तक काफी स्ट्रेंज समझ में आती थी. हाउ एवर इट इज नाउ फनी दैट इट इज अ थिंग एंड नोबडी सेड एनीथिंग टू अस अबाउट इट. जैसे कि किसी ने ये नहीं कहा स्टार्टिंग मंडे दिस इज हाउ वी आर ऑल गोइंग टू बिहेव. इट जस्ट हैपेंस, यू नो हाउ, एक बंदे ने कर लिया, दूसरे ने आजमाया, तीसरे को पसंद आया एंड सडनली इट्स अ थिंग. सम ऑफ दीज मेक इट ईजियर, सम ऑफ दीज थिंग्स मेक लाइफ फन. वट एवर कीप्स योर लाइफ इंटरेस्टिंग, आई से गो हैड एंड हैव मोर फन. टॉकिंग अबाउट फन, हाल ही में रिलीज हुई थी ये फिल्म कॉकटेल 2. Any thoughts on that, especially about the two heroines? Let me know at 972-235-5555. What did you think? Was it Kriti who stole people's hearts or was it Rashmika Mandanna? Let me know.

All right, that was from the film Street 2, starring Rajkumar Rao or Shraddha Kapoor. और स्त्री की जो शुरुआत हुई थी ऑफ द सीरीज वाज विद द फिल्म जस्ट सिंपली कॉल्ड स्त्री एंड इट वाज इन द ईयर 2018 और फिर 2024 में आई थी ये फिल्म स्त्री 2 एंड ऑल द फैंस ऑफ द फिल्म स्त्री इंस्टॉलमेंट के या फैंस ऑफ राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर वांट टू टेल यू दैट द फिल्म स्त्री 3 हैज बीन अनाउंस्ड एंड इट्स गोइंग टू रिलीज इन द नेक्स्ट कपल इयर्स कहते हैं कि 2028 नाउ 2028 इज राइट अराउंड द कॉर्नर राइट थिंक अबाउट इट वैसे ये भी कहूंगी कि ये जो गाना था ना आज की रात बहुत पॉपुलर हुआ नॉट माई फेवरेट हाउ एवर आई एम अ फैन ऑफ तमन्ना एंड तमन्ना फिर एक बार दिखाई दे रही है राइट नाउ इन द फिल्म ववान और ये इनका गाना बहुत ही पॉपुलर हो चुका है ठुमक ठुमक

एंड व्हाट एल्स इज ट्रेंडिंग? वेल, सुनाई दिया है कि राजकुमार हिरानी के जो सुपुत्र हैं वीर हिरानी और रशा थदानी, जो कि रवीना टंडन की बिटिया, दे आर गोइंग टू बी स्टारिंग टुगेदर इन द अपकमिंग हिंदी कॉमेडी फिल्म. फिल्म का नाम लगन लागी रे एंड द प्रोड्यूसर इज जे शिवक्रमानी. लुक्स लाइक ऑल द सिंधीज आर कमिंग टुगेदर इन मेकिंग दिस फिल्म लगन लगा रे, लगन लागी रे. सुन रहे आप म्यूजिक मंत्र, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता बच्चानी.

Looking forward to seeing Rasha Thadani and Aveer Hirani come into the movie, or rather in the Bollywood film that they're making, or he is making his debut in. वैसे अगर आपने नहीं देखी तो वीर हिरानी एंड अरशद वारसी ने साथ में बनाई है एक वेब सीरीज, वेरी सिंपल, लाइट हार्टेड, अच्छी वाली प्यारी सी है. इट्स कॉल्ड प्रीतम एंड पेड्रो, यू नो, समथिंग फॉर जस्ट लाइट वॉचिंग ऑन द वीकेंड. And now to tell you that the studio clock is asking me to leave so Madhulika can come, leaving you with this last piece of information that Saif Ali Khan and Priyanka Chopra, जिन्होंने साथ में कभी भी बड़े पर्दे पर काम नहीं किया, उन्हें बातें चल रही हैं that they are going to headline in an upcoming international project जो कि direct कर रहे हैं रितेश बत्रा. And Ritesh Batra, you would know him from The Lunchbox. So we're looking forward to that and many, many more. And I'm looking forward to being here again. Agle Shanivar, theek 8 baje. Tab tak ke liye mujhe, yani ki Sangeeta Bachani ko dijiye ijazat. Signing off from the studios of Fun Asia Radio, bringing the community together.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
3: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
2: When is it?
3: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
2: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
4: Breakfast mein kya khana hai?
5: Keema paratha.
6: Mummy, omelette paratha.
7: Beti, halwa puri aur tarkari.
4: Ab Sunday ko teen alag nashta kaun banayega?
0: Signature cuisine banayega. Choose any delicious breakfast option. Keema with paratha, halwa puri with tarkari or omelette with paratha. Served with a cup of hot kadak chai for only $8.99. Available during weekend breakfast hours at Signature Cuisine in Pleno. Weekend ka mood. गर्मा गर्म देसी फूड. विजिट signaturecuisine.net.
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
9: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
10: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
11: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो.
15: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक, मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ वनीशा रेडियो पर.
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीशिया रेडियो.

आजकल सच में ऐसा ही लग रहा है कि इतने दिनों, इतने महीनों, इतने टाइम बाद ये जो बारिश हुई है ना, तो सच में यही गाने का मन कर रहा है कि यार ऐसा मौसम देखा पहली बार। वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। जस्ट चिल में हम करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, राइट? तो ट्रैवल सेगमेंट में आज हम कहाँ जाएंगे सब बताती हूँ, बट पहले अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड कमिंग बैक टू जस्ट चिल, यस, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। और आज थोड़ा हट के है ये हमारा ट्रैवल सेगमेंट, क्योंकि आज यू नो वी आर गोइंग टू लेट द म्यूजिक फ्लो एंड टेक अ जर्नी अराउंड सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एंड वाटर बॉडीज, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। फिर चाहे यू नो फ्रॉम द माइटी गंगा टू कश्मीर्स ब्यूटिफुल डल लेक, फ्रॉम द ब्रह्मपुत्रा टू केरलाज बैक वाटर्स, एंड इवेंचुअली ऑल द वे टू द नायल एंड द एमेजॉन, टूडे वी आर गोइंग टू फॉलो द फ्लो। सो येस, सिट बैक्स, रिलैक्स एंड जस्ट चिल, बिकॉज यही तो हम करते हैं इन जस्ट चिल। होता है ना, पानी जो है हम उसे पीते हैं, उसमें नहाते हैं, उसके किनारे प्यार भी जताते हैं, उसके साथ शहर बसाते हैं, और कभी

यही तो हम करते हैं इन जस्ट चिल। होता है ना, पानी जो है हम उसे पीते हैं, उसमें नहाते हैं, उसके किनारे प्यार भी जताते हैं, उसके साथ शहर बसाते हैं, और कभी-कभी उसे देखकर बस चुप हो जाते हैं, या साथ में वहाँ किनारे पर बैठकर चाय भी पीते हैं।

ये है कि भाई बैठे यहाँ है लेकिन घर इंडिया में खरीदना है, चाहे फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए खरीदना है या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदना है या बस खरीदना है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम होम और मेक अ स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो आपको विजिट करना है गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. ये होगा अगले वीकेंड. जी हाँ, प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वायर फीट, द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. यू कैन यू नो कम एंड मीट लीडिंग डेवलपर्स फ्रॉम बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, एंड यू कैन एक्सप्लोर ओवर 200 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स. जी हाँ, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद यहाँ बैठे बैठे आप सर्च ना कर पाएं. सो एक ही जगह जाकर यू कैन हियर अबाउट, सी ऑल दोज प्रोजेक्ट्स एंड टॉक टू देम ऑल अंडर वन रूफ. So join them on October 10th and 11th from 10 a.m. to 8 p.m. This will be at Hyatt Regency in Frisco. Free entry hai, free parking hai. It's your perfect property in India. Could be, you know, waiting for you. To aap aur ab intezar na karein. It's just the next weekend. Grah Pravesh India Property Expo is going to be from 10th and 11th October from 10 a.m. to 8 p.m. at Hyatt Regency, Frisco.

ऑलराइट, सो आज हम जस्ट चिल में बातें कर रहे हैं रिवर्स की, यू नो, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड अगर इंडिया की अगर हम बात स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो रिवर ध्यान आता है दैट इज गंगा, है ना. द रिवर दैट इज ऑल्सो अ सिविलाइजेशन, बिकॉज ये जो गंगा है, इन्होंने पता नहीं कितने सिविलाइजेशंस को ग्रो होते हुआ देखा होगा, राइट. सो हाउ द गंगा बिगेन्स, यू नो, इट बिगेन्स एज भागीरथी उत्तराखंड में एंड बिकम्स गंगा एट देवप्रयाग आफ्टर द भागीरथी एंड अलकनंदा मीट. ये भी बड़ा प्यारा सा एक संगम है. एंड देन प्रयागराज पर इट मीट्स यमुना एट द संगम. सो इंडियाज ऑफिशियल टूरिज्म मटेरियल ऑल्सो डिस्क्राइब्स द गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम एज फॉर्मिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द सुंदरबन्स. और फिर कहते हैं ना कि यार गंगा स्नान कर लिया तो कितने पाप आपके धुल गए. तो सच में गंगा का ये जो हमारा गंगा जल आता है, हर जगह कुछ भी पवित्र करना होता है तो आप कहते हो कि भाई गंगा जल छिड़क दो. तो गंगा इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट यू नो जिनकी पूजा की जाती है. एंड इट्स रियली रियली वेरी वेरी वेल नोन गंगा रिवर.

कई बार होता है कि आप जब कोई एक्सीडेंट में, कोई ऐसे इंसिडेंट में फंस जाते हैं, तो यही होता है कि यार मैं क्या करूं, वैसे भी अभी इतनी बारिश हो रही है, रोड थोड़ी सी स्लिपरी हैं, थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाएं. एंड इफ़ यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा रखने हैं याद, क्योंकि ये आपका केस लड़ेंगे, आपको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे एंड इंश्योरेंस कंपनी से भी सारा स्ट्रेस यही डील करेंगे. एंड ही विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड वेल. एंड द बेस्ट पार्ट, आप अटर्नी ओमार ख्वाजा को तब तक पे नहीं करेंगे अनटिल यू विन योर केस. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, आप अटर्नी ओमार ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार .com. दैट्स अटर्नी ओमार .com.

0: Alright, well that was Khandisya from Indian Ocean. This is Madhulika lekar aayi hu Just Chill, jahan karte hain hum as the name suggests, Just Chill. Well, aaj Just Chill ke hamare travel segment mein hum baatein kar rahe hain rivers, lakes, oceans, basically water bodies, right? तो अभी आपको गंगा की बात की थी, अब चलते हैं हम डल लेक की तरफ. जी हाँ, द लेक दैट लुक्स लाइक अ सिटी ऑन वाटर, बिकॉज यू नो श्रीनगर कश्मीर में ये जो डल लेक है, चाहे वहाँ वो शिकाराज हों, हाउस बोट्स हों, यू इवन सी फ्लोटिंग गार्डन्स एंड देन यू सी वेंडर्स सेलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम बोट्स. सोचो कितना मज़े की बात है ना कि आप सुबह जब सो के उठें और अपना एक खिड़की खोलें तो आपको कोई स्ट्रीट नहीं, बस एक सुंदर सी लेक दिखे. इनफैक्ट कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया जो है डिस्क्राइब्स डल लेक एज हैविंग इंटरकनेक्टेड बेसिन्स एंड एक्सटेंसिव फ्लोटिंग गार्डन्स. पता है, कहते हैं कि हिस्टोरिकली इट वॉज मच लार्जर दैन इट्स प्रेजेंट एरिया. सो येस, वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर की ये जो डल लेक है, इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग.
1: ये चांद सा रोशन

0: चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना,
1: सच में तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वल्दार वॉज टेकन फ्रॉम कश्मीर की कली। अब झीलों की अगर बात हो ही रही है, राइट, लेक्स की बात हो ही रही है, तो सोचिए कि एक लेक है और उसके ऊपर जो आइलैंड्स हैं वो तैर रहे हैं। जी हाँ, दे आर फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑन टॉप ऑफ दैट लेक। और उन आइलैंड्स के इकोसिस्टम पर एक नेशनल पार्क बसा हुआ है। जी हाँ, वेलकम टू लोकताक। लोकताक जो है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, एंड इज फेमस फॉर फुमडीज। फुमडीज जो है फ्लोटिंग मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉयल एंड ऑर्गेनिक मैटर है। एंड सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इज लोकेटेड ऑन लोकताक इज डिस्क्राइब्ड बाय मणिपुर टूरिज्म एज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। And it's the last natural habitat of the endangered sangai. Sangai जो है मणिपुर्स का ब्रो एंटलर्ड डियर है, वो भी वहाँ देखा जाता है, पाया जाता है। So that was लोकताक in मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट।

taken from the movie Mission Kashmir. That was Bumroh. Socho ki jheelon ka shehar ho. And ji haan, main hamesha bolti hoon ki, you know, jab bhi aapko कोई भी गाना डेडिकेट करना है तो ज़रूर मुझे कॉल करिए. द स्टूडियो नंबर इज़ 972-235-5555 एंड आई वुड लव टू प्ले दोज सॉन्ग्स फॉर यू.

Taken from Ajab Prem Ki Gazab Kahani, that was a song request from Bhanu going out to Gaurav. And yes, before I play the next one, I do want to tell you all about Page 3 Eatery. Because ek to itna sunehra mausam, upar se weekend, to bhai ghar mein khana kyun banana hai, right? So from sizzling kebabs and flavorful chaat, फिर चाहे हो फ्यूजन बाइट्स या रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, वेल इफ यू स्टिल हैवंट एक्सपीरियंस्ड पेज 3 ईटरी विच इज एट हब 121, वेल यू आर सीरियसली मिसिंग आउट. सो दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फेयर. फिर चाहे वो ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, डेट नाइट या फिर कोई फूडी मीटअप, वेल पेज 3 ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. सो विजिट पेज 3 ईटरी, दिस इज लोकेटेड एट हब 121 एंड यू can explore more at page3eatery.com. That's page3eatery.com.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
6: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
7: Tarikh par tarikh.
4: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
6: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
11: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
10: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
14: अजी सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फनेशिया 104.9 FM।

Well, that was a song request coming from Mayank. Mayank, thank you so much for tuning in. This is Madhulika, lekar aayi hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Well, Saturday hota hai hamara travel segment, aur aaj ke hamare segment mein main le chali hoon aapko वो तमाम वाटर बॉडीज़, चाहे फिर वो रिवर हो या कोई ओशियन हो या कोई झील हो, कोई लेक हो, कोई झरना हो. सो उसी के बारे में कुछ जो इम्पॉर्टेंट, रादर जो इंटरेस्टिंग और फन बातें हैं वो कर रही हूँ आपके साथ, शेयर में दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555.

Taken from the movie Vishwatma, that was Saat Samandar Paar Main Tere. अच्छा, आगे बढ़ते बढ़ते अब चलिए मैं आपको चिलिका लेक के बारे में बताती हूँ, जो कि ओडिशा में है. एंड ये भी एक अनोखी सी लेक है, वो इसलिए कि इट्स अ मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर लेक. जी हाँ, ये जो चिलिका लेक है इन ओडिशा इज अ ब्रैकिश वाटर लगून. बेसिकली इसका जो पानी है इज अ मिक्सचर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. काफ़ी बड़ी सी ये लेक है, यू नो, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इरावदी डॉल्फिन्स. इंडियाज़ टूरिज्म पोर्टल जो है डिस्क्राइब्स इट एज एशियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक. तो चिलिका को लेक बुलाते हैं, लेकिन इसका पानी जो है वो समुंदर से भी हटकर है, कुछ जुदा है. सो इट्स अनदर इंटरेस्टिंग लेक टू डेफिनेटली विजिट. इट्स इन ओडिशा.

That was the title track from the movie Taal. And yes, before I play the next song, I want to tell you all about Dream Home Mortgage. क्योंकि होता है कि कई बार आप सोचते हैं घर लेंगे, फिर सोचते हैं कहाँ से मोर्गेज मिलेगी, कैसे होगा, क्या होगा. तो भाई आपको मैं बता दूं दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज ने बहुत सी फैमिलीज को नेशन वाइड हेल्प किया है विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग एंड फॉर रीफाइनेंसिंग. तो आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 9722455626, और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. And the next one, well, that's taken from the movie Baagi.

राइट, सुन रहे हैं आप जस्ट चिल विद मी मधुलिका, और जस्ट चिल में हम कर रहे हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक, और आज हमारे ट्रैवल सेगमेंट में ले चली हूँ आपको मैं उन इंटरेस्टिंग लेक्स और रिवर्स और वाटर बॉडीज की तरफ जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट बैक वाटर। बैक वाटर डजंट मीन कि जो पानी है वो बैकवर्ड फ्लो करता है, नहीं नहीं, इट जनरली रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड वाटरवेज, चाहे फिर वो लगूनस हों, लेक्स हों, कनाल्स हों, रिवर्स एंड एस्टुअरीज, राइट, सो ऑफन लाइंग अलॉन्ग साइड द कोस्ट एंड कनेक्टेड टू द सी। तो केरला का जो ये बैक वाटर है ना, इज अ जायंट नेचुरल नेटवर्क। केरला में इट्स एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ लेक्स, लगूनस, कैनाल्स एंड रिवर्स, जहाँ पर यू नो वेम्बानंद लेक इज एट इट्स हार्ट, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लोकेशन टू विजिट। सो नेक्स्ट whenever you go to Kerala or India, I would highly recommend कि आप केरला जाएं और ये बैक वाटर इन्जॉय करें। लाइक यू कैन लिटरली लिव ऑन द वाटर। जी हाँ, केरला इज़ फेमस केट्टुवलम्स, ट्रेडिशनल राइस बोट्स कन्वर्टेड इन टू हाउस बोट्स, कैन हैव बेडरूम्स, बाथरूम्स, किचन्स एंड डाइनिंग एरियाज, एंड इट्स अ ट्रीट टू जस्ट स्पेंड सम टाइम ओवर देयर।

जी हाँ जली, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल से। और अब दिल से आपके लिए एक गिव अवे आ गया है। जी हाँ, इट्स कमिंग फ्रॉम फन पिज्जा किचन। पहले तो आपको मैं फन पिज्जा किचन के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज उनके पास एक न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा आ गया है, विच इज फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा। जी हाँ, आप उनका फिएस्टा वेजी फियरी पोलो लोको सी फूड पैक्ड सेनोर कैमारॉन और बहुत कुछ चीज़ें जो हैं ट्राई कर सकते हैं। एंड जो ये गिव अवे है, यू कैन विन अ $10 गिफ्ट कार्ड। यू नो, सो वॉट यू नीड टू डू इज आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आज हम जो अपना ये जस्ट चिल का शो है इज ऑल अबाउट रिवर्स एंड यू नो सी एंड ओशियन एंड लेक्स। तो क्यों ना आप मुझे दो ऐसे बॉलीवुड गाने बताएं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनकी लिरिक्स में सागर या समंदर आता हो। सो एनी टू बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनकी लिरिक्स में सागर या समंदर आता हो। एंड द स्टूडियो नंबर वंस अगेन फॉर यू ऑल इज 972-235-5555।

0: चल मैं तंग ज्यादा नहीं करूंगी, आपको वेट नहीं करवाऊंगी। पूछा था आपसे सवाल कि मुझे बॉलीवुड के कोई भी ऐसे दो गाने बताएं जिन गानों की लिरिक्स में समुंदर या सागर आता हो। एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर,
1: Hey,
0: हाउ
1: hi.
0: आर यू?
1: Good, good. How are you?
0: आई एम डूइंग ग्रेट, एंड व्हाट्स योर नेम?
1: My name is Komal.
0: ऑल राइट कोमल, तो बताइए कौन से दो बॉलीवुड गाने आप बता रहे हैं जिनमें सागर या समुंदर आता हो?
1: एक तो है बहुत पुराना गाना, सागर किनारे दिल ये पुकारे.
0: क्या बात है। ओके, या
1: एंड दूसरा भी पुराना ही है, समुंदर में नहा के, बट उसके
0: और
1: रीमिक्स आए
0: भी,
1: कई
0: वाह
1: बार.
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। सो ऑसम कोमल, जीत लिया आपने फन पिज्जा किचन का ये $10 गिफ्ट कार्ड। आई एम गोना टेक यू ऑफ फेयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले बोथ द सॉन्ग्स दैट यू मेंशन फॉर आवर लिसनर्स। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस,
1: थैंक यू.
0: ऑसम।

वॉज टेकन फ्रॉम द पुकार. ये 1983 में ये मूवी आई थी. जीनत मान एंड अमिताभ बच्चन. एंड बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग आई डू वॉन्ट टेल यू ऑल दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाई ए जी फिनटैक्स ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग पेरोल बुक कीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेसेस. तो आप ए जी फिनटैक्स को कॉल कर सकते हैं. द नंबर इज 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com टुडे. दैट्स agfintechs.com. एंड द नेक्स्ट वन, वेल दैट्स टेकन फ्रॉम द मूवी सागर.

That was taken from the movie Sagar. And before I say my, Tata bye bye, होता है ना कि भाई जाते जाते एक और मज़े की बात या कुछ इन्फॉर्मेशन करूँ आपके साथ शेयर, तो मैं आपको रिलेटिव मीडिया, जी हाँ, नॉट रिलेटिव बट रिलेटिव मीडिया के बारे में बताना चाहूँगी. एस्पोनेशिया नेटवर्क नाउ ब्रिंग्स इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया. जी हाँ, विद रिलेटिव मीडिया, फ्रॉम इंगेजिंग रील्स, फिर चाहे वो ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो या एम्पलीफिकेशन थ्रू फनेशियाज रेडियो, डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स, रिलेटिव मीडिया जो है गिव्स योर ब्रांड अ कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन. क्योंकि हर किसी की बात नहीं होती रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस दिखाना. सो रिलेटिव मीडिया कैन हेल्प यू. कॉल 4694243188 टू बुक योर कॉन्टेंट ऑडिट टूडे. जी हाँ, रिलेटिव मीडिया पावर्ड बाय फन एशिया नेटवर्क. अच्छा, बिफोर आई प्ले द लास्ट सॉन्ग ऑफ माई शो टूडे, कहना चाहूँगी इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम अमेजिंग सॉन्ग्स, मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं, वेल, क्योंकि यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे. जी हाँ, 10 से कल, एक्चुअली मैं आपको 9 बजे मिलूंगी. 1 घंटे का बोनस शो भी है. सो कल आपका साथ दूंगी मैं सुबह 9 से लेके दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. वेल, कल मिलूंगी सुबह 9 बजे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

दिस इज KZMP 4.9 FM फनीशा रेडियो पे सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि नीलम को। और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत दिनों के बाद, जी हाँ बहुत बहुत दिनों के बाद हमने बारिश देखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइट फ्रॉम थर्सडे, राइट? आई थिंक वेंसडे थर्सडे, कल थोड़ी कम थी लेकिन आज है बिल्कुल। और इस बारिश के मौसम में मैं रहूंगी आपके साथ 3 बजे तक। आज 12 से 3 का होगा आपका और हमारे ये म्यूजिकल साथ। 2 बजे तक आपके लिए थीम बेस्ड बॉलीवुड गाने प्रस्तुत करूंगी, कुछ बातें होगी आप सभी के साथ। एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप, जी हाँ यहीं पे ऑन 104.9। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मधुलिका का, जहां पर आपने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुने। अब आप रहेंगे मेरे यानी नीलम के साथ। और आज का विषय क्या है? आज के विषय में आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, ऑफ एयर ऑन एयर आपकी राय लूंगी, कुछ आपसे सजेशंस लूंगी गानों के लिए। लेकिन पहले एक पहला गाना सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आज का विषय बताऊंगी। 104.9 FM फनीशा रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ।

शेर शाह से सुना आपने ये पहला गीत और सोच रहे होगे कि भाई आज की बातें है क्या, आखिरकार हमें कौन सी बातों पे आपसे राय लेनी है, कौन से गाने आपको सजेस्ट हमें करने हैं वगैरह वगैरह आप बिल्कुल सोच रहे होगे। तो बात यह है कि आज का जो विषय है कुछ ऐसी फिल्मों की हम बातें करने वाले, सिनेमा की जब हम बातें करते हैं, मूवीज़ की बातें करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि कल्पना की दुनिया है, ऐसा कुछ होता नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, राइट? आवर टिपिकल डायलॉग विल बी, ऐसा थोड़ी होता है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है।

है कुछ ऐसी फिल्मों की हम बातें करने वाले, सिनेमा की जब हम बातें करते हैं, मूवीज की बातें करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि कल्पना की दुनिया है, ऐसा कुछ होता नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, राइट? अवर टिपिकल डायलॉग विल बी, ऐसा थोड़ी होता है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, चांद सितारे तोड़कर लाने की बातें, ये करूँगा वो करूँगा. सो वी से इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, राइट? कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती नहीं है जो हकीकत में हमारी दुनिया में हो सकती है. लेकिन कभी कभी ऐसी फिल्म्स बनती है जो हकीकत में ये कहानियाँ हुई है, चाहे आप नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर ले, चाहे किसी की मर्डर, किडनैपिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, रियल लाइफ इवेंट. सो किसी के दिमाग की उपज नहीं होती, किसी लेखक ने ये कहानी लिखी नहीं होती, बल्कि हमारे बीच वो सच्ची बातें हुई होती है. चाहे जैसे कि मैंने कहा कि कहीं कभार मर्डर मिस्ट्रीज की बात हो, किडनैपिंग की बात हो, हाईजैक की बात हो, वगैरह वगैरह, और ये सारी जो बातें होती है इन्हीं कहानियों पर आधारित फिल्म बनती है. अब वो फिल्म्स कितनी रियलिटी से नज़दीक है नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, उसकी भी हम बातें करेंगे. लेकिन आज कुछ ऐसे ही गाने आपको सुनवा रही हूँ मैं, और कुछ ऐसी ही बातें होगी, और ये जो टॉपिक क्यों मेरे जहन में आया उसकी भी बातें होगी, क्यों मैं आज ये बात कर रही हूँ आपसे, एंड व्हाट वाज़ द थॉट बिहाइंड इट एंड व्हाट ट्रिगर्ड दिस थॉट, उसकी भी बातें होगी. अगर आपके जहन में कोई ऐसी फिल्म्स है जो नेचुरल डिज़ास्टर्स पर आधारित हो, रियल लाइफ इवेंट्स की कुछ बात हो, जहाँ पे कोई पे किडनैपिंग या कोई भी ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जो रियल लाइफ इवेंट हो, ऐसी फिल्म्स बनी हो, तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा 9722355555. चलते हैं अगले गानों की तरफ, जो है फिल्म का नाम काइपोचे.

बनी है उसकी भी हम करेंगे बातें, लेकिन भाई बॉलीवुड में कम बनी है तो क्या हुआ, जितनी भी बनी है आपकी राय ले रही हूँ और आप मुझे बहुत सारे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बताइएगा इफ़ यू रिमेम्बर एनी फिल्म जहाँ पर आपको लगता है कि ये फिल्म की कहानी जो है वो वाकई में कहीं ना कहीं ये बात हुई थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल फिल्म, सो लेट्स नॉट गेट कन्फ्यूज विद दैट। देखिए 1947 के पार्टीशन की बात हो या ब्रिटिशर्स की बात हो, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द रियल लाइफ इवेंट्स या जहाँ पर मर्डर की बात हो, नेचुरल डिजास्टर, किडनैपिंग वगैरह वगैरह, तो वो सारे सजेशंस मैं आपके ले रही हूँ। कुछ रायट्स की भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे, जो तो पहली कॉल जो मुझे आई और जो सजेशन मिला वो है बॉम्बे। उन्होंने कहा कि 92 में जो बात हुई थी बॉम्बे में रायट्स हुए थे उसकी कहानी है। तो चलिए आपके सजेशन पर सुनते हैं ये फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत। एंड एज आई सेड, आपके सजेशंस हो गए, कुछ राय आपकी लूँगी, कुछ बात छेड़ने वाली हूँ आपके साथ। कौन सी? थोड़ा सा इंतज़ार।

मीठी बोलिया फ्रॉम द फिल्म कायपोची सुने आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत। और गुजरात के जो भूकंप आए थे इन 2001 उसकी भी कुछ बातें थी इस फिल्म में। एंड वही सारे गाने आज आपको सुनवा रही हूँ, वही सारी फिल्मों की बातें कर रही हूँ जहाँ कहीं ना कहीं रियल लाइफ इवेंट्स से ये फिल्म्स बनी है। नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर ले, मर्डर हिस्ट्री या किडनैपिंग की बात हो, या कोई भी एक ऐसी घटना जो हमारे दुनिया में कहीं पर भी बनी हो उस पर फिल्म्स बनी है। बॉलीवुड में कम बनी है, हॉलीवुड में बहुत सारी।

बॉम्बे फिल्म से सुना अपनी गीत आप ही की पसंद पे। जी हाँ, और आज जो बातें हो रही है वो हो रही है कि कहानियाँ, जब हम फिल्मों में कहानियाँ देखते हैं हमें लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है नहीं, चांद सितारे कौन लाता है, ये कहाँ होता है, हीरो ऐसे ही थोड़ी 10 विलन्स को एक ही हाथ से मार सकता है, वगैरह वगैरह, राइट। हम अक्सर सोचते फिल्म में जो होता है वो अक्सर नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ फिल्म ऐसी बनी है जो हमारी ज़िंदगी में वो बातें बनी है, कुछ ऐसी घटनाएं जो दुनिया में बनी है, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात हो या कोई और भी बात हो। तो आज बस ऐसी ही आपकी राय ले रही हूँ और आप मुझे बताएंगे ऐसी कोई भी फिल्म जो आपको याद है जहाँ कहीं ना कहीं ये सारी बातें हुई थी वास्तविक जीवन में। कुछ आपके विचार भी लूँगी, वही बिल्कुल लूँगी, कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगी। चलिए, आप ही की पसंद पे आर्टिकल 15 की बात आई थी ये मूवी। कहा जाता है कि इस मूवी में आर्टिकल 15 के बाद जो एक बिल पास हुआ था उसके लिए बहुत सारे रायट्स हुए थे, तो उसी की कहानी है इस फिल्म में। एंड बहुत एक प्यारा सा ये गीत फ्रॉम द फिल्म आर्टिकल 15। 9722355555।

0: सांवरे से बावरे से नैना, ये बहुत ही खूबसूरत गीत, प्यारा सा गीत आपने सुना 104.9 FM वन एशिया रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए। एंड यू नो समटाइम इट डज हैपन कि आपकी जब सजेशंस आती है एक ही फिल्म के बहुत सारे नाम आ जाते हैं, एंड देन आई हैव टू से कि यही नाम मेरे पास एटलीस्ट 5-6 बार आ गए हैं। तो ऑफकोर्स आज जो फिल्मों की हम बातें कर रहे हैं या करने वाले हैं वो सारी फिल्म ऐसी है जो वास्तविक घटनाओं पर बनी है, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में या कहीं पर भी दुनिया में नेचुरल डिजास्टर्स पे। एंड एज आई सेड इट्स वेरी फ्यू, ऐसा नहीं है कि ढेर सारी फिल्म बनी है एज मच एज वी हैव इन हॉलीवुड, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि जो अच्छी या सच्ची घटनाएं है, अच्छी कहूँ नहीं कहूँगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने बनी है, हमारे सामने नहीं भी बनी है, उसकी कुछ बातें हुई है। एंड अगेन दिस आर नॉट द हिस्टोरिकल फिल्म्स, ये बातें ऐसी नहीं कि अरे पहले क्या हुआ था, 500 ईयर्स अगो क्या हुआ था, 100 ईयर्स अगो क्या हुआ था। ये जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं रिसेंट नेचुरल डिजास्टर्स पर बनी है, किडनेपिंग पे वगैरह वगैरह, रायट्स पे बनी है। तो आपकी कुछ राय ले रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी फिल्म आपके जहन में आ रही है। और बहुत सारे नाम, जैसे कि मैं सोच रही थी कि बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन एक या दो फिल्मों के नाम के लिए ही ढेर सारे कॉल्स हैं। तो चलिए वो फिल्म की भी बातें हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ हमारे प्रायोजक की तरफ, PMG ज्वेल्स। जी हाँ, उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देखिए ज्वेलरी एक ऐसी बात है, त्यौहार हो ना हो, कोई फेस्टिवल्स हो ना हो, इवेंट हो ना हो, लेकिन इट्स एन इन्वेस्टमेंट राइट, स्पेशली फॉर व्यूमन। इट्स लाइक अच्छा चलिए काम के लिए ना हो लेकिन हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। सो वेल यू कैन गो टू PMG ज्वेलर्स, दे आर ब्रिंगिंग यू 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन, बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट ज्वेलरी, गोल्ड में, डायमंड में एंड ब्राइडल कलेक्शन में। विंस अगेन दैट इज PMG ज्वेल्स, जहाँ पर आप जा सकते हैं, फ्रिस्को में है, लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट। बातें हो रही है आज कुछ नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों की, और उसके लिए जो सेगमेंट है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी एजे फिनटेक्स का। 4699429888, वंस अगेन दैट इज 4699429888 इज द नंबर, और यू कैन विजिट agfintechs.com, वंस अगेन इट इज agfintechs.com। अकाउंटिंग की बात हो, पेमेंट्स की बात हो या बिजनेस की बात हो, एक ही नाम इंडिविजुअल्स के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, एंड दैट इज agfintechs। चलिए कमर्शियल ब्रेक के बाद भी कुछ और भी मूवीज़ के नाम आपकी तरफ से आए हैं जो मैं आपको कुछ उसकी बातें करूंगी। एंड एज आई सेड यू नो दिस आर द मूवीज़ जो हकीकत में बनी है। अक्सर जो फिल्म की कहानियां होती है कहीं ना कहीं काल्पनिक होती है, कहीं ना कहीं फैंटेसी वर्ल्ड की होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो फैंटेसी नहीं होती, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो कहीं बनी हुई है। तो बस आपकी राय ले रही हूँ, आपके सजेशन ले रही हूँ, आपसे सवाल भी पूछूंगी, आपकी राय भी लूंगी फॉर दिस टॉपिक, फॉर दिस सब्जेक्ट, कि क्या ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और क्यों नहीं बननी चाहिए, और अगर बननी चाहिए तो क्यों बननी।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
6: कीमा पराठा।
7: मम्मी, ऑमलेट पराठा।
8: बेटी, हलवा पूरी और तरकारी।
5: अब संडे को 3 अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
9: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड, विजिट signaturecuisine.net।
10: सुबह ड्राइव पे
11: यू आर लिस्निंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो।
12: दोपहर फोन पर
13: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
14: शाम को घर पर
15: You are listening to Fun Asia Radio.
16: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
17: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स वाइल ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स। अ 360-degree एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस, सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू, सी यू एंड कनेक्ट विद यू।
16: टू एडवर्टाइज कॉल 4694243188 और email sales@funasia.net।
17: Fun Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
6: That garba was totally worth it. We had so much fun.
12: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
6: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
18: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
19: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
18: नहीं।
19: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
18: नहीं।
19: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
18: वो भी नहीं।
19: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
20: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
21: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
22: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
23: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
24: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
25: Matlab crispy golden dosa?
24: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
25: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
26: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
27: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

स्पेशल 26 के गाने के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का 104.9 FM फन एशिया रेडियो। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, वेल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, एंड आपको ये बारिश का मौसम मुबारक हो। आफ्टर 67 डेज, कैन यू बिलीव इट, आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द शोज और जहाँ पर ये बात की गई थी ऑन टीवी कि 67 डेज वी वर विदाउट वाटर इन डालस फोर्ट वर्थ, और देखिए 67 डेज के बाद जब बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है ना। बधाइयाँ बधाइयाँ। चलिए, और इसी बारिश की बात पे बहुत सारी मूवीज़ जब बनती है नेचुरल डिज़ास्टर्स पर या फिर कहीं ना कहीं यू नो क्राइम पे ज़्यादा बनी है, जो रियल लाइफ में क्राइम हुए उस पे सीरीज़ वेब सीरीज़ की भी बातें करेंगे ज़्यादा बनी है। रेन पे एक मूवी आई थी एंड ऑफकोर्स वन ऑफ माई अदर लिसनर्स शी रिमाइंडेड मी दिस मूवी, तुम मिले उनका नाम है। और ये मूवी में मुंबई में जब भी बारिश आती है, फॉर दैट मैटर जब भी बारिश आती है, आई ग्रो अप इन मुंबई सो आई नो दिस फॉर फैक्ट कि नंबर वन हैपन्स इसकी स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाती है। एंड अगर आप कॉलेज स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वी यूज टू ट्रैवल बाय ट्रेन टू गो टू एनी, बिकॉज सबर्ब्स में ट्रेन्स होती है, राइट, इट्स लाइक मेट्रो, हाउ वी हैव मेट्रो, तो वहाँ पर पहले ही नंबर वन होगी कि आपको कॉलेज में छुट्टी, आज आपको कॉलेज नहीं जाना है, सो दैट इज़ फन पार्ट। लेकिन सेकेंड पार्ट इज़ कि अगर आप कहीं पर फंस गए हैं, देखिए अगर आप कॉलेज नहीं गए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर आप गए हैं काम पर गए हैं कॉलेज में गए हैं एंड बारिश मुंबई में, आई थिंक आई डोंट वॉन्ट टू से दैट बिकॉज आई ग्रू अप इन दैट सिटी, लेकिन इतनी बुरी हालत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कि सारे लोग फंस जाते, कहीं पर भी आप है थोड़ी सी भी बारिश हो फंस जाती है बातें। तो इसी पे एक मूवी बनी थी जिसका नाम था तुम मिले, और लोगों को पसंद आई थी बिकॉज अगेन मुंबई की बारिश की बात थी, मुंबई की बात थी। एंड एज यूजुअल हमारे बॉलीवुड में कोई भी बात हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, लेकिन प्यार की कहानी ना हो तो मूवी कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही बात थी, फिल्म का नाम तुम मिले।

0: Let's get our own place.
1: What?
0: Let's get our own place.
1: Really?
2: क्या? तू शर्त लगा ले अक्षय. Moving in with her is a bad idea.
0: Vic, मैं कह रहा हूँ, she's really nice.
2: अबे, she's a princess, यार. अपने घर का रेंट तो तू अफोर्ड कर नहीं पाता. उसके लिए घर कहाँ से लाएगा?
3: अबे, तू पेंटर है, कोई वॉल स्ट्रीट ब्रोकर थोड़ी ना.
2: Trust me on this.

मिले से सुना आपने ये गीत और मिल गई थी बारिश इस फिल्म में। तो बारिश तो है हर साल, मुंबई की ये कहानी है। हर साल कहीं ना कहीं पानी भर ही जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन्स, कहीं ना कहीं नहीं हर जगह ट्रेन्स बंद हो ही जाती है। बट समटाइम्स इट इज़ मोर देन यू नो यूजुअल बारिश, इट इज़ मोर देन कि बस भाई ट्रेन ही बंद हो गई थी। सो दिस मूवी वॉज अबाउट 2006 आई बिलीव, जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से लोग फंस गए थे। एंड समबडी जस्ट कॉल्ड मी, उन्होंने कहा कि केरला में जब बारिश हुई थी, फ्लडिंग हुई थी, तो उसकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था 2018, एंड दैट्स अ रीजनल फिल्म जो मैंने नहीं देखी, बट दैट पर्सन एक्चुअली रिकमेंडेड इट मी। उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड वॉच दैट फिल्म, बहुत ही अच्छी तरह से बनाई थी। 2018 नाम है उस फिल्म का, जहाँ पे केरला के फ्लड्स की बात है। एंड ऑफ कोर्स मुंबई के अटके हमारे बहुत सारे कॉल्स, जब मुंबई की बात छिड़ती है वही तो कैसे रह जाए। सोहेल जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चलिए अब मैं आपको तो एक सवाल पूछना चाहूँगी। बारिश पे तो मैंने मूवी की बात की, इन बॉलीवुड दो या तीन मूवी बनी है जो माइनिंग एक्सीडेंट्स पर बनी है, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। माइनिंग जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से लोग फंस भी सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एंड इवन फॉर हेल्थ इट इज़ नॉट रियली वेरी हेल्दी। लेकिन इस बाबत पर, इस टॉपिक पे, इस विषय पे बहुत ही कम मूवीज़ बनी है। तो आप मुझे एटलीस्ट एक या दो मूवीज़ के नाम बताएंगे बॉलीवुड के जहाँ पर माइनिंग एक्सीडेंट की बात हुई है। 9722355555, मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूँगी टिल 3 PM।

0: खुशबू के डेरे।
1: सवाल पूछा है मैंने माइनिंग एक्सीडेंट्स के लिए, एंड फनीश आर यू लाइव ऑन एयर? हेलो
2: नीलम जी, दिस इज धनंजय।
1: यस धनंजय जी सर, गुड आफ्टरनून टू यू, हाउ आर यू?
2: बढ़िया, सब बढ़िया।
1: बढ़िया है बस, बिल्कुल, और बारिश भी बढ़िया है ना?
2: हाँ जी हाँ जी, बारिश
1: बढ़िया
2: हो रहा है। जी जी, आप पूछ रहे थे ना, तो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की, काला पत्थर शायद नाम था उसका।
1: ओके, काला पत्थर, बिल्कुल सर, और 70s की मूवी थी, यश चोपड़ा साहब की।
2: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सर सो मच। एंड फनीश आई लाइव ऑन एयर। सुमित जी क्या कहेंगे आप माइनिंग एक्सीडेंट्स के लिए?
2: तो एक मूवी बनी थी, दैट वाज 1989 का, जो माइनिंग कोल माइन का एक्सीडेंट हुआ था, दैट वाज मिशन रानीगंज, अक्षय कुमार थे जिसमें।
1: यस यस, मिशन रानीगंज में भी, लेकिन वो दैट वाज नॉट वेरी इम्पैक्टफुल, देखने के बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं probably you know they could not bring that जो बात actually बनी थी, so movie ने अच्छा काम नहीं किया था, वो business में अच्छा नहीं चली थी वो movie, if you remember. Yeah, it was a flop movie.
2: But movie was good. I have seen it.
1: Oh, you have seen it.
2: Movie अच्छी है.
1: अच्छा, चलिए चलिए, very good. Thank you, Sumit ji. So mining and it's definitely an issue in India or around the world, क्योंकि it's number one health hazard. बहुत होते हैं जितने भी mining workers होते, and ना खुदा ना खास्ता अगर फंस जाइए workers तो बहुत ही बुरी हालत होती है। तो काला पत्थर 70s की एक मूवी थी, एंड जैसे कि हमारे लिस्टर ने कहा मिशन रानीगंज, तो जी हाँ, चलिए दोनों फिल्म के गाने सुनेंगे ऑन 104.9 FM विथ मी योर होस्ट नीलम।

0: मिशन रानीगंज से सुना आपने गीत जो माइनिंग एक्सीडेंट पर आधारित है फिल्म, और हमारे एक लिसनर ने मुझे बताया कि भारत फिल्म, हालांकि वो पूरी फिल्म ऐसी नहीं थी लेकिन उसमें बिल्कुल कुछ माइनिंग एक्सीडेंट की भी बात थी। आज मैं नीलम आपसे बातें कर रही हूँ कहीं ना कहीं रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर हुई फिल्मों की। फिल्मों की हम जब बातें करते हैं हम अक्सर सोचते हैं कि कहाँ पे ऐसी बातें होती है, परी की कहानियाँ होती है, आसमान की, प्यार की, मोहब्बत की, एंड यू नो एक विलन सुपरमैन जैसा होता है जो बहुत सारे जो एक हीरो बहुत सारे विलन को मार सकता है, एंड ऑल दोज वेरी वेरी फैंटेसाइज थिंग्स। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो रियल लाइफ में बनी है और फिल्म में बनाते। नाउ ये फिल्म कितनी रियलिटी से नज़दीक है, दैट इज़ अनदर डिस्कशन। कितनी रियली वन लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, दैट इज़ अनदर डिस्कशन। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे गाने मैं आपको सुनवाती रहूँगी आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाएगा, और भी गाने हैं, कुछ और भी बातें हैं, और भी सवाल है आप सभी के लिए, राइट हियर ऑन 104.9 एफएम फॉर एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। ये गाने, ये कहानियाँ आपके लिए मैं नीलम लाती हूँ एवरी वीकेंड। जी हाँ, 12 से 3 के बीच में सैटरडेज होती है ये बातें आपकी और हमारी म्यूजिकल बातें, एंड संडेज जो साथ होता है आपका और हमारा वो होता है 12 से 2 के बीच में, 12 से 1 के बीच में गुजराती कार्यक्रम, रीजनल कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ, और 1 से 2 के बीच में गैर फिल्मी गाने, दैट इज ऑन संडेज, एवरी संडे बिटवीन 12 to 2 PM। और आज साथ रहेगा 3 बजे तक। 2 से 3 के बीच में बातें करूंगी कम्युनिटी की, कम्युनिटी राउंडअप में हमारे ही शहर में होने वाले नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की, एक्टिविटीज की, ऐसी बहुत सारी बातें और जानकारी आपको मैं देती रहूंगी नीलम ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 AM. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
11: 5 to 8 straight from the heart. Girl, Hindi bol.
12: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
13: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
14: Phone uthaye, number dabaye.
12: 347-449-4242.
15: It's the time to clock out.
16: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
17: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
18: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
19: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Yeah, join yeah. Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, yeah, or full-on yeah. entertainment. Bindas powered bolo. By Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan yeah, Bazaar. Yeah. Sirf Anisha Radio par.
0: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM Fanesha Radio pe. Main hoon Neelam aapke saath. A very very good afternoon to all of you and a very warm welcome. Is barish ki mausam mein swagat hai aap sabhi ka, pyar bhara. Agar aapne abhi abhi radio tune in kiya hai, main rehti hoon aapke saath 3 baje tak. Ji haan, on Saturdays 2 baje tak aaj ke jo aapki baatein ho rahi hai aapke saath, aur jo topic hai aaj ka vishay hai wo hamari Bollywood ki films jo kahin na kahin koi natural disasters pe bani, koi natural life events pe bani, accidents pe bani wagera wagera. और बहुत सारे और भी सवाल है आपसे करना चाहूँगी मैं, लेकिन कुछ गाने सुनवा रही हूँ, आपके सजेशन ले रही हूँ कौन कौन सी फिल्म आपको याद आ रही है. अगली जो फिल्म आपने ही सजेस्ट की है वो है सरबजीत. और हमारे लिसनर ने बताया कि दिस इज़ अबाउट एक इंडियन आर्मी मैन जो फंस गया था किसी और कंट्री में, हमारी नेबरिंग कंट्री में, और उसकी रियल लाइफ इवेंट पर यह कहानी बनी थी. तो चलिए वो सुनेंगे गीत, एंड आफ्टर दैट कुछ और बातें, कुछ और सवाल आप ही के लिए ऑन 104.9 FM फनेश रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. और मैं हूँ आपके साथ नीलम.

सरब जी से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गीत जो वास्तविक जी हाँ रियल लाइफ इवेंट पर आधारित थी ये फिल्म। एंड यू नो जब भी हम ऐसी फिल्म्स देखते हैं दिस इज़ रियली अ टॉपिक दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ बातें हम एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं बट सेंसिटिविटी अगर हम बात करें एम्पथी की बात करें तो ये बातें हुई है कहीं ना कहीं। जब आप बारिश में किसी के घर के बैतों को देखते हैं, किसी के फ्लड में किसी को फंसते हुए देखते हैं या यू नो गुमशुदा होते हुए देखते हैं, ऐसी बातें हुई होती है। सो दैट इज़ अनदर टॉपिक दैट आई वुड डिस्कस आफ्टर अ फ्यू सॉन्ग्स कि क्या वाकई में ऐसी फिल्में जो होती है हम एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, देखते भी हैं और बॉक्स ऑफिस पे कहीं ना कहीं कलेक्शन भी बनती होगी आई एम श्योर बिकॉज ऑफ अगर अच्छी बात जो भी अच्छी डायरेक्शन या अच्छी एक्टिंग रही लोगों की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्टिंग हमें लग रही है यहाँ पे, लेकिन जिन पर ये बात बीती थी वो एक्टिंग नहीं होगी, उन पर ये वाकई में ये सारी बातें हुई थी। खैर वो बात भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब हम रियल लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं, नाउ हॉलीवुड हैज़ मेड मैनी मैनी फिल्म अबाउट हाईजेकिंग प्लेन वगैरह वगैरह, राइट? तो मुझे आप बताइए अगर इफ़ यू रिमेम्बर एनी मूवी।

0: मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जब हम रियल लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं, नाउ हॉलीवुड हैज मेड मेनी मेनी फिल्म अबाउट हाईजेकिंग प्लेन वगैरह वगैरह, राइट? तो मुझे आप बताइए, अगर इफ़ यू रिमेम्बर एनी मूवी जहाँ पर प्लेन हाईजेकिंग की बात हो या कहीं ना कहीं कुछ लिफ्ट एयरलिफ्ट की बात हो. चलिए, मैंने मूवी का नाम ही आपको बता दिया, लेकिन इफ़ यू रिमेम्बर सच मूवीज़ जहाँ पे रियल लाइफ प्लेन एक्सीडेंट्स या प्लेन हाईजेकिंग ऐसी कोई बात हो, 9722355555. सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एयरलिफ्ट, चलिए उसी का गाना सुन लेते हैं जिसमें 1990 के गल्फ वॉर की बात थी और किस तरह से सारे इंडियंस जो रेस्क्यू किए गए थे बाय एयरलिफ्ट. कुछ कॉल्स दूंगी ऑन एयर और आप जब भी ऑन एयर आए, अनुरोध करना चाहूंगी आपकी फोन की आवाज़ बिल्कुल कम. एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
1: हे हाय, माय नेम इज दर्शिल
0: यस सर, बताइए कौन सी
1: एंड द
0: मूवी आपको याद आ
1: मूवीज
0: रही है?
1: मिर्जा एंड वन ऑफ द ओल्ड मूवीज जमीन ऑफ अजय देवगन.
0: जमीन, एंड जी अजय देवगन के साथ आई बिलीव कंगना रनौत थी, वॉज इट द सेम मूवी? एंड अभिषेक
1: नो,
0: बच्चन भी थे.
1: अजय देवगन के साथ वहां पे था अभिषेक बच्चन,
0: अभिषेक
1: दैट
0: बच्चन,
1: आई
0: यस आई
1: नो
0: रिमेम्बर दैट,
1: पर्सन.
0: यस यस यस एंड निर्जा
1: या
0: ऑफ कोर्स,
1: हीरोइन आई डोंट नो.
0: यस
1: एंड मिर्जा फॉर द हाईटेक वन. यस
0: निर्जा तो बहुत अच्छी बनी थी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. फनीश, आई यू लाइव ऑन एयर?
2: Yes, there's a 2026 Hollywood movie called as Carry On.
0: यस, तो हॉलीवुड में तो सर बहुत लंबी सी लिस्ट हो जाएगी. हॉलीवुड की तो बहुत है अच्छी अच्छी मूवीज, हमारे बॉलीवुड की कुछ बातें कीजिए, कुछ देसी बातें हो जाए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी. तो एयरलिफ्ट का गाना सुनते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी तरह, यू नो आई रियली लाइक दिस फिल्म. जो भी बात इंस्पिरेशनल कहूंगी मैं कि रियल लाइफ इवेंट्स की हो, लेकिन दोज आर इंस्पिरेशनल स्टोरीज, राइट? कि किस तरह से कितने भी मुश्किलात पड़ी थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि किस तरह से सारे इंडियंस को रेस्क्यू किया जाए. एंड देन यू नो यू फील हैप्पी बाय एंड ऑफ द मूवी, आपको लगता है कि नहीं अच्छा हुआ. कुछ ऐसी मूवीज होती है जो रियल लाइफ इवेंट से बनती है, देखने के बाद मन बहुत ही उदास हो जाता है, लगता है कि वी आर वॉचिंग इट एज एन एंटरटेनमेंट, लेकिन वाकई में ये सारी बुरी बातें कहीं ना कहीं हुई थी. नाउ एयरलिफ्ट आर सच मूवीज की देखने के बाद यू फील सो गुड अबाउट योर कंट्री कि किस तरह से ये सारी बातें हुई थी, इट्स सो इंस्पिरेशन, राइट? तो चलिए सुनते ये फिल्म का गीत और उसके बाद कुछ और बातें ऑन 104.9 FM.

एडलिब से सुना आपने ये गीत, और चलते हैं अगली फिल्म की तरफ। नीरजा, जो 1986 में पैन एम फ्लाइट की बात हुई थी हाईजैकिंग की, उसकी सच्ची घटना पर आधारित ये बात थी। एंड यू नो दिस डेज नीरजा भनोत भी न्यूज़ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने ये न्यूज़ दो तीन दिन पहले ही आपने पढ़े होंगे कि किस बहादुरी से हमारे ही इंडिया के ओरिजिन जो पायलट थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से फ्लाइट को हैंडल किया इन स्पाइट ऑफ हिम बिंग इंजर्ड, तो ये सारी बातों के साथ नीरजा की भी बिल्कुल लोगों को याद आ गई थी। और 1986 में जो ये बात बनी थी उस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम भी था नीरजा ही। तो सुनते हैं उससे ये गीत। एंड थैंक यू सो मच, इतने सारे कॉल्स, इतनी सारी बातें आज हो रही है, एंड बातें करूँगी भाई, बिल्कुल करूँगी, आपकी कुछ राय लेने वाली हूँ। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे ये सारी बातें ट्रिगर हुई है इन माई माइंड, कि मुझे क्यों ये सारी गाने क्या बातें आज याद आई है। तो ये सारी बातें गाने चलते रहेंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ नीरजा की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरती से सोनम कपूर ने इस फिल्म में अपनी अदाकारा जो है हमारी, उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स कमर्शियल की है, लेकिन आई थिंक दिस वाज द बेस्ट ऑफ हर करियर, कि बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने नीरजा का रोल निभाया था। 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

जब भी ऐसी कोई फिल्म बनती है, चाहे नीरजा की बात हो एंड ऐसी बहुत सारी फिल्म, सरबजीत फॉर एग्जांपल, मैंने उसका भी आपको गाना सुनाया था. वेन एवर फिल्म प्रोड्यूसर मेक सच फिल्म, और डायरेक्टर जब अपनी फिल्म बना लेते हैं, उसके बाद उनका पहला काम क्या होता है? दे ट्राई टू शो इट स्पेशली फॉर टू द फैमिली मेम्बर्स. जो परिवार के लोग होते हैं उनको ये फिल्म दिखाई जाती है, उनकी राय ली जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए. दोधारी तलवार हो सकती है, राइट? वेन दे आर ट्राइंग टू रीलिव दोज मोमेंट्स, परिवार वालों के साथ क्या हो सकती है बातें, वेदर दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, कह रहे भाई ऐसा नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, और दे आर गोइंग टू से कि हाँ ठीक ठाक है, आप बना लीजिए ये फिल्म की, बट यू नो यू कैन रियली रिलीज दिस फिल्म. तो ये बहुत ज़रूरी होती है. इट्स लाइक अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, विच दे डू एवरी टाइम. कोई भी फिल्म बनती है वो उनके परिवार को बिल्कुल दिखाते हैं. दे डू वॉन्ट टू मेक श्योर कि उनके परिवार वाले दे आर अग्रिंग टू दिस कंसेप्ट, दे आर अग्रिंग टू ईच एंड एवरी डायलॉग्स, एवरी सीन्स एज वेल, कि जो भी बातें पर्दे पर, बड़े पर्दे पर दिखाई गई थी, एंड दे आर नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन टू एनी ऑफ द सीन्स, एनी ऑफ द डायलॉग्स. इनफैक्ट हनुमान अंश जो अभी थे, उसके लिए मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, तो वो भी नीम करोली बाबा पर की ज़िंदगी पर आधारित है. तो वो भी उनकी बेटी को दिखाई गई थी ये फिल्म, ताकि उनकी बेटी भी अगर कोई भी ऐसी बात है विच शी इज़ नॉट अग्रिंग टू एनी ऑफ द सीन्स, एनी ऑफ द डायलॉग्स, जो भी बात है, सो दिस इज़ अ बिग मॉरल ऑब्लिगेशन. तो ये तो बात हो गई मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर द फैमिली मेम्बर्स. सेंसिटिविटी के लिए मैं बिल्कुल आपकी राय लेना चाहूँगी आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. जैसे मैंने कहा कि देखिए, ऐसी फिल्म्स बनाना सच्ची घटनाओं पर, इट्स कुड बी इधर वे. सेंसिटिविटी की अगर देखें तो ये बात हम एज ए मनोरंजन या एज एन एंटरटेनमेंट हम देखते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ये बात हुई होगी, चाहे केदारनाथ की बात है, फ्लडिंग की बात है, या कोई एक्सीडेंट की बात है, मर्डर मिस्ट्री की बात है, उस परिवार पे क्या बीती होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क अवर सेल्व्स, कि इज़ इट रियल एन एंटरटेनमेंट फॉर देम. वो जब ये फिल्म देखते होंगे, क्या उनकी पुरानी बातें, उनके पुराने जख्म हम ताज़ा कर रहे हैं, या सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट दे आर थिंकिंग वी आर जस्ट पेइंग अ ट्रिब्यूट. बिल्कुल आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद. फिलहाल चलते हैं केदारनाथ फिल्म की तरफ. बहुत ही खूबसूरती से ये फिल्म बनाई गई थी, और डायरेक्शन, एडिटिंग, एक्टिंग वगैरह वगैरह. बट अगेन द सेम क्वेश्चन, हमें लगता है कि चलिए एडिटिंग बहुत अच्छी थी, किस तरह से तबाही जो थी फ्लडिंग की दिखाई गई थी, लेकिन ये याद रखना बिल्कुल बनता है कि इस तबाही में जितने लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी वो कहीं ना कहीं किसी परिवार के थे. बिल्कुल.

0: हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे आप इतनी रियायत
1: तो
0: कहते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह

0: काफ़ी राना साहेश कहे या क्या है, केदारनाथ से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत, और बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म बनाई गई थी, वेरी वेरी क्लोज टू द रियलिटी जो बनी थी। आज मैं बातें कर रही हूँ कुछ रियल लाइफ इवेंट्स पे बनी हुई फिल्मों की। कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ आप बातें करेंगे, कुछ आपकी राय लूँगी मैं, लेकिन जाते जाते चलिए हम उमर ख्वाजा को याद कर लेते हैं। बिल्कुल आप उनको कॉल कर सकते हैं इफ़ अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी कार एक्सीडेंट, स्लीप और फॉल एक्सीडेंट, 469-300-5046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com। अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जी बिल्कुल, यू कैन कॉल हिम फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। वंस अगेन इट इज़ 469-300-5046। कुछ भी पे नहीं करना अंटिल यू विन, जीतने के बाद बिल्कुल, लेकिन आप जीतेंगे तो बिल्कुल आपको पे करना है। सो वंस अगेन इट इज़ attorneyomar.com, जहाँ पर आपकी जो भी इंश्योरेंस के मसले हैं, आपके जो भी और भी लीगलिटीज़ है, वो सारी आपके लिए ऑन योर बिहाफ दे कैन हैंडल दैट, दैट इज़ attorneyomar.com। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूँगी 2 बजे तक इस सेगमेंट में, जहाँ पर आज बातें हो रही है कुछ रियल लाइफ इवेंट्स की। कहीं मत जाएगा, बे विद अस ऑन 104.9।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हैथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स, free entry and free parking, an event by My Square Feet.
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving, but it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 AM on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th 5th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 AM. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: जहां तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ इरविंग में।
2: Introducing Punjab by Page 3. पंजाब से आए शेफ्स के हाथों बना अमृतसरी कुलचा विद छोले और मक्के की रोटी विद सरसों का साग, साथ में एक ठंडी लस्सी।
10: पंजाब by Page 3, now in Irving. स्वाद पंजाब का, अंदाज Page 3 का।
2: सुबह ड्राइव पे
11: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
12: दोपहर फोन पर
13: I don't listen to Spotify, I listen to Funny Share Radio.
2: शाम को घर पर
14: You are listening to Fun Asia Radio.
2: Your customers are listening. पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
15: Business, products या services? Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi. And connect with your customers in their own language.
2: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
15: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
2: Fun Asia Network. Be heard, be remembered, be chosen.
16: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
0: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूं नीलम आपके साथ. A very very good afternoon to all of you. And a very very warm welcome. चलिए आज बातें जो अगर आपने अभी रेडियो ट्यून इन किया है लेट तो थोड़ी बातें आपने मिस कर दी, थोड़े गाने मिस कर दिए. 12 से 3 का साथ होता है और ये सेगमेंट में आपके साथ मैं रहती हूँ 2 बजे तक. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को बिल्कुल याद करना चाहूंगी। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है जिंदगी में, है ना। लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि बात कि आपके पास इंश्योरेंस ना हो, या फिर ये भी बात हो सकती है कि पैशन हेल्थ इज आउट ऑफ योर नेटवर्क। वेल, इन सारी बातों के लिए दे हैव अ न्यू प्लान वेर यू कैन ओनली पे $85 पर मंथ। तो ये बिल्कुल उनको कॉल कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए 214-666-6259, और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com। एंड द फ्रिस्को लोकेशन इज नाउ ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि भाई मंडे टू फ्राइडे बहुत सारी मीटिंग्स होती है, वक्त नहीं मिलता। वक्त अगर नहीं मिलता, सैटरडे संडे चले जाइए एट द फ्रिस्को लोकेशन। चलिए, आज जो बातें हो रही है रियल लाइफ इवेंट्स से बनी हुई फिल्मों की कुछ बातें करी हूँ, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो, हाईजैकिंग की बात हो, ऐसे बहुत सारे कॉल्स, ऐसी बहुत सारी राय आपकी ले रही हूँ। कौन कौन सी फिल्म्स ऐसी बनी थी बॉलीवुड में, एज आई सेड वेरी फ्यू फिल्म्स, बहुत ऐसी नहीं बनती। हॉलीवुड में लाइन लग जाती है, लंबी सी कतार है, और उसमें बिल्कुल अच्छी फिल्म्स भी बनती है, उसकी भी बातें मैं आपसे करना चाहूँगी। फिलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ एक गीत, और उसके पहले उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, एंड यू नो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। तो पहले ये गीत सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा आपसे कुछ आपकी राय, कुछ सवाल पूछना चाहूँगी ऑन 104.9 FM।

उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत। मंजर है ये नया। और चलिए अब आपकी मैं राय लेना चाहूँगी। देखिए सिनेमा का काम क्या होता है, मूवीज़ का काम, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, ओरिजिनल फिल्म्स कोई भी, टू एंटरटेन अस, राइट? बट देट समटाइम्स डू मेक फिल्म्स विच आर बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इवेंट्स। किडनेपिंग की बात है, मर्डर मिस्ट्री की बात है, या नेचुरल डिजास्टर्स हो वगैरह वगैरह। एंड एट दैट टाइम द पॉइंट कम्स कि इज इट रियल इन एंटरटेनमेंट। फिल्म तो बिल्कुल बन गई है, एंड यू नो देर कुड बी अ डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ओपिनियन अगर आप मुझे पूछे तो मुझे सर्वाइवल की जो स्टोरीज बनती है रियल लाइफ इवेंट्स की अच्छी लगती है, क्योंकि यू नो दे डिड विन बाय एंड ऑफ द डे, एवरीबडी वन। एंड एक कोई मोटिवेशनल बात है, इंस्पिरेशनल बात है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, एयरलिफ्ट, ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी है सर्वाइवल पे कि जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बच जाता है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने के बाद। सो रिसेंटली एक वेब सीरीज में देख रही थी राख, और उससे ये जहन में मेरे ख्याल आया फॉर दिस सेगमेंट। दिस वेब सीरीज वॉज ट्रेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स क्योंकि बहुत लोगों को अच्छी पसंद आ रही थी। सोनाली बेंद्रे की एक्टिंग और अली फजल की एक्टिंग, कहानी अच्छी लग रही थी। बट विच वॉज अ ट्रू इवेंट, जहाँ पर वाकई में दिल्ली के एक परिवार के दोनों बच्चे को एक साथ मार दिया गया था। दैट मेड मी थिंक कि क्या वाकई में जो हम ट्रेंडिंग कहते हैं कि इट इज़ रियली मेकिंग अ गुड बिजनेस ऑन नेटफ्लिक्स फॉर दैट मैटर, जिस परिवार पे ये बात हुई थी, जिस माँ पे ये बात बनी थी, जिस पिता पर यह घटना हुई थी, सालों तक जहाँ जब तक वो जिंदा है ये बात वो नहीं भूल पाएंगे कि उनके परिवार में उनके बच्चों के साथ ये हुआ था। सो वाकई में क्या हम उसे एंटरटेनमेंट की तरह हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? एज आई सेड, देर आर मोटिवेशनल फिल्म्स, बिल्कुल सर्वाइवल की जब बात होती है तो अच्छा लगता है। बट राख जैसी वेब सीरीज हो या कोई ऐसी सीरीज हो जहाँ पे डिजास्टर्स दिखाते हैं, क्या ऐसी फिल्म बननी चाहिए? मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। एंड एज आई सेड, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन। आपकी क्या परसेप्शन है, आपके क्या परसेप्टिव्स है, बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या ऐसी बातें बॉलीवुड हो या हॉलीवुड बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए?

0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी राय क्या है फनीश, या यू आर लाइव ऑन एयर एंड आई थिंक आई लॉस्ट दैट लाइन, यू कैन ट्राई अगेन. फनीश, या यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज चंदनदीप.
0: जी सर, बताइए क्या है आपकी राय.
1: सो आई थिंक ये सीरीज लाइक कोई भी ये स्टोरीज बननी चाहिए, बिकॉज हर बार का कहानी अच्छी नहीं हो सकती, लाइक हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती. सो पीपल शुड नो कि जैसे आप फॉर एग्जांपल राग का बता रहे थे कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ. सो इससे अवेयरनेस मिलती है कि कैसे लोग, ऐसे सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं. सो बच्चों को थोड़ा नया अच्छी चीज सीखने को मिलती है.
0: राइट, सो हाउ टू बी कॉशियस, हाउ टू बी कॉशियस व्हेन दे गो आउट एंड नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर्स. जी बिल्कुल
1: करेक्ट. सो आई थिंक दे आर गुड. सो बोथ टाइप की जो भी है बननी चाहिए, बोथ हैप्पी एंड लाइक सैड एंडिंग की. दैट्स गुड.
0: जी जी बिल्कुल सर, आपकी इस राय बिल्कुल मैं लूंगी. सो हमारे इस लिसनर का कहना था कि बॉलीवुड अक्सर हमें फैंटेसी दिखाती है, राइट, अच्छी अच्छी एंडिंग की बातें बताती है, बट दिस आर द ट्रू इवेंट जो बताती है हमें हकीकत. हमारे समाज में ऐसा भी होता है. आप क्या सोचते हैं, हमारे समाज की ऐसी बातें दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए. एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर.
2: हाय, माय नेम इज अभिषेक.
0: यस अभिषेक जी, जय बताइए सर.
2: ये आपने जो टॉपिक बोला ना, इट हैज फोर्स्ड मी टू रीथिंक, टू बी ऑनेस्ट.
0: ओके,
2: बिकॉज पहले मैंने इस तरह से सोचा नहीं इस चीज को कि यू नो देर आर टू पार्ट्स टू इट, देर आर टू फैसेट्स टू इट, एंड आई एम बीइंग अ डिबेटर, आई ऑलवेज लुक फॉर बोथ साइड, यू नो आई डिबेट सो आई लुक फॉर बोथ साइड. नाउ अभी एक तरफ तो हमें ये लग रहा है कि रियलिटी आनी चाहिए लोगों के सामने, राइट, एंड आई बिलीव उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई फील मोर रियलिटी व्हेन देयर इज अ पर्सनल ट्रेजेडी एंड देयर इज डॉक्यूमेंट्री रादर देन ए वेब सीरीज और रादर देन ए यू नो मूवी, बिकॉज देन इट पुट सम एंटरटेनमेंट फैक्टर इन टू इट एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आर फोर्स टू इंक्लूड दैट इन दैट मूवी, राइट.
0: यस, सम ड्रामा, सम ड्रामा,
2: या सम बिलीव पर्सनल ट्रेजेडी के लिए पीपल शुड बी मोर कॉन्शियस एंड दे शुड बी क्रिएटिंग द राइट फॉर्मेट.
0: यस यस एब्सोल्युटली.
2: आपने वो सेंसिटिविटी का जो टॉपिक बोला ना, बहुत क्रूशियल है वो. अमेजिंग आपने वो जो पिक किया टॉपिक.
0: या बिकॉज यू नो सर, एज आई सेड, आई वॉज वॉचिंग दिस वेब सीरीज राग, एंड देन आई रेड दिस ऑनलाइन कि इट्स अ ट्रेंडिंग नंबर वन सीरीज एंड नेटफ्लिक्स इज मेकिंग गुड मनी, एंड इट मेड मी फील सो बैड. आई एम लाइक, जो माँ पे बीती होगी ये बात, इट्स अ सेंसिटिविटी इश्यू, राइट. How can you make money out of that topic?
2: I also have gone through some other tragedy, and I know what it means.
0: Yes.
2: I can never forget at any instant of my life, right?
0: Yes, yes, absolutely.
2: So how difficult it is to relive, and everybody is talking about it. I don't know.
0: Yeah, that was my point. But thank you, sir. You really made it very clear. And as I said, it is everybody's personal opinion. Fanesha, you're live on air. And I again lost that line. Fanesha, you live on air.
3: Anji, namaskar, Anji.
0: Namaskar, sir.
3: Yeah, topic is very interesting, mm-hmm. and I just wanted to say, keep it very, very simple. अगर हम सिर्फ अच्छी ही बातें पढ़ेंगे, दिखाएंगे, और दुनिया में जो होता है, जिससे कि हम काफी कुछ सीख सकते हैं, वो ना दिखाएं, तो पता नहीं दुनिया कहाँ पहुँचेगी.
0: जी, जी.
3: So, अगर आप कहें कि एंटरटेनमेंट, हाँ कुछ होती है कि खुशी के आंसू होते हैं
0: जी.
3: कुछ जैसे ही आपने बताया सीरीज की बात की, उसमें बहुत दुख होता है और हम असल में रोते हैं
0: जी.
3: क्योंकि हमें दुख होता है. सो दैट्स नॉट एंटरटेनमेंट,
0: इट्स
3: जस्ट दैट यस वी इमोशनली फील टू सम एक्सटेंट व्हाट देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली और किड्स मे हैव गॉन थ्रू. सो आई वुड से नो, आई एम विलिंग टू वॉच, राइट, रीड एनीथिंग and every aspect of life.
0: Jeez.
3: I cannot keep some aspects out of portraying in any which way.
0: Yes.
3: I would not do that.
0: Yes.
3: I would want to listen about it. I would want to read about it.
0: Yes.
3: And then hopefully learn from it.
0: Very good. Very good. Thank you, sir. बिल्कुल आपकी राय ले रही हूँ. चलिए तो कुछ गाने सुन लेते और फिर आपकी और राय और बातें.

बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने सुना राग फिल्म से, और राग वेब सीरीज, एक्चुअली नॉट फिल्म, राग वेब सीरीज से, और बहुत सारे और भी कॉल्स मैं ले रही हूँ। देखिए, सिनेमा का फ़र्ज़ होता है कि सच्ची और बुरी दोनों बातें बताए, राइट? सच्ची बातें जब हम देखते हैं, मे नॉट बी ऑलवेज, सच्ची बातें कड़वी होती है। हम हमेशा कहते हैं कि सच बहुत कड़वा होता है। एंड व्हेन आई वाज डूइंग अ सेगमेंट ऑन महेश भट्ट लास्ट वीकेंड, आई सेड दिस कि महेश भट्ट जब भी अपनी फिल्म्स बनाते हैं, वो कभी भी अपने हीरो या हीरोइन को परफेक्ट नहीं रखते। वो कभी ऐसा नहीं दिखा देते कि हीरो को हीरोइन मिलनी ही चाहिए। हीरो कुड बी एन अल्कोहलिक, उनकी फिल्मों में हीरो हीरोइन कुड बी अ वेरी डिप्रेस पर्सन, हीरो कुड बी एन अल्कोहलिक। तो परफेक्ट कैरेक्टर्स नहीं होते थे। दैट कुड बी अ सच्ची बात है कि हाँ भाई, सच्ची में ऐसा होता है कि हीरो को हीरोइन अक्सर नहीं मिलती। हीरोइन कुड बी रियल या फेलियर इन हर लाइफ। तो ये सारी बातें अलग है, लेकिन वेन यू आर शोइंग अ मर्डर मिस्ट्री और शोइंग समबडीज ट्रेजिक यू नो एंड इन अ फिल्म विथ अ ड्रामेटिक ट्विस्ट एंड टर्न्स, थोड़े लव स्टोरीज डाल देते हैं हम उसमें, थोड़े गाने डाल देते हैं रोमांटिक गाने, एंड वी आर ट्राइंग टू सेल दैट मूवी विथ ऑल दिस खिचड़ी कि जिसमें ट्रेजेडी भी है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें कुछ मसाला भी है, एंड देन यू प्रेजेंट इट ऑन अ बिग स्क्रीन। सच्ची बातें बिल्कुल बतानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नीरजा नीरजा जो भनोती, उनका जो हौसला था, इट वॉज कमेंडेबल कमेंडेबल हौसला, इवन दो इट वॉज हैपेंड इन 80s, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं विथ अ ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि उन्होंने वो उम्मीद जगाई थी हम कि ऐसी एरोस्ट्रेस भी हो सकती है। सो सिमिलरली, वेन देर आर इंसिडेंट्स जो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ उम्मीद देते हैं, एयरलिफ्ट फॉर एग्जाम्पल, कि उसमें कितनी उम्मीद की बात थी, पॉजिटिविटी की बात थी, कि हालांकि इतनी बुरी बात हुई थी इंडियंस के साथ आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा हुआ था। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन राख है या ऐसी कोई भी ऐसी बात है जहाँ परिवार के साथ कुछ घटनाएं बनती है, एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू वॉच दैट ऑन अ बिग स्क्रीन, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, कि हाउ मच रियली सेंसिटिविटी वी आर शोइंग बाय सीइंग दिस एज एन एंटरटेनमेंट। तलवार एक फिल्म आई थी जो भी बहुत ही खूबसूरत थी, गुलजार साहब के बोल, और उनकी ही बेटी ने इस फिल्म को बनाया था।

रेखा भारद्वाज इन द फिल्म तलवार, ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन आई थिंक मूवीज से ज़्यादा अब वेब सीरीज ऐसी बन रही है जो ट्रू क्राइम इवेंट्स पे हो, या ट्रू इवेंट्स, ट्रू लाइफ चेंजिंग इवेंट्स की, ऐसी बहुत सारी मूवीज से ज़्यादा वेब सीरीज बन रही है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि देखिए कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो हमारी मेमोरी से चली जाती है, तो फिल्मों का काम है कि नई मीडिया तक उसे उस पर जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हो जो 70s 80s में हुई हो, एंड न्यू जनरेशन मे नॉट नो अबाउट दैट। सो ऑफकोर्स फिल्मों का काम है कि सत्य को जो है कहते हैं हम, सच कहते हैं उसे उजागर करना, राइट? बट देन अगेन, हाउ मच ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ड्रामा एंड लव स्टोरीज वी कैन रियली ऐड टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, जो आखिरी गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एंड दिस इज़ अबाउट हॉलीवुड। देखिए हॉलीवुड में बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, हॉलीवुड में हाईजेकिंग की कहानियाँ बनी है, हॉलीवुड में मर्डर्स, रियल लाइफ मर्डर्स की, किडनैपिंग की, बहुत सारी बातें हुई है, इंक्लूडिंग नेचुरल डिजास्टर्स के। तो ये सारी बातें, दे आर वेरी गुड इन शोइंग वेरी वेरी क्लोज टू द रियलिटी कि हाँ ऐसा ही हुआ था, नॉट एडिंग सॉन्ग्स, नॉट एडिंग एनी डांस सीक्वेंस। एंड सो दैट इज़ माई क्वेश्चन इज कि जब हम कोई भी कहानी देखते हैं विच इज़ सो ट्रू, विच इज़ सो ट्रेजिक, इज इट रियली फेयर इनफ टू एड रोमेंटिक एलिमेंट इन दैट, कि उसमें कहीं ना कहीं हम प्यार के गाने डाल देते हैं, डांस नंबर भी डाल सकते हैं, सीक्वेंस भी डाल सकते हैं। सो ले रही हूँ आप सभी की राय ऑफ फेयर ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। जब मैंने कहा वेब सीरीज बहुत सारी ऐसी बनी है, सेक्टर 36 वॉज वन ऑफ द वेब सीरीज जहाँ पे दिल्ली की ही कुछ बात थी इन दिस सीरीज।

बहुत बहुत शुक्रिया आपके, ढेर सारे कॉल, इतनी सारी बातें, इतने सारी राय, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी हाँ, ये जहन में मेरे ख्याल आया था और आप सभी से शेयर कर रही हूँ, और आप सभी ने बहुत सारी आपकी अच्छी अच्छी राय मुझे दी। बस यही थी आज की मेरी बात, सेंसिटिविटी। जब भी हम ऐसी फिल्म्स देखें तो एक बात हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि इट इज़ जस्ट नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, ये मनोरंजन की नहीं हो सकती। कभी कभी जब हम पर्दे पर किसी का घर बहते देखते हैं, फ्लडिंग में देखते हैं लोगों को फंसे हुए, वी हैव टू रिमेंबर, ये याद रखना चाहिए कि किसी परिवार ने इस दर्द को झेला था, किसी के घर में किसी परिवार को गुमशुदा हुए देखा था, वेदर इट इज़ नेपाल फ्लडिंग की बात है या अभी आपने जो बात सुनी इन जुलाई इट हैपन राइट लास्ट मंथ, या फिर मुंबई के बारिश की बात हो, केरला के फ्लडिंग की बात हो, या हाईजेकिंग की बात हो, या एनी नेचुरल डिजास्टर्स केदारनाथ की बात हो, हम उसे देखते हैं जब बड़े पर्दे पर, वी हैव टू रिमेंबर दैट देयर वर एक्चुअली फैमिलीज जिनके साथ ये हुआ था। दिस इज़ जस्ट नॉट एन एंटरटेनमेंट फॉर 2.5 आवर कि जहाँ पर हम पॉपकॉर्न खाकर ये देखते हैं एंड वी आर हैप्पी कि चलिए अच्छी फिल्म देख कर आए हम, ये एक्चुअली हुआ था ये। एंड यू नो, आउट ऑफ ऑल द हॉलीवुड मूवीज जितनी भी हमने देखी है, आई थिंक वन फिल्म विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज़ टाइटेनिक। जिस तरह से इस फिल्म में सेंसिटिविटी थी, ऑफकोर्स दे डिड इंक्लूड रोमांटिक एलिमेंट, प्यार की कहानी थी, इट इज़ एक्चुअली अबाउट लव, राइट, ऑल अबाउट लव, बट द वे इट वॉज पोर्ट्रेट, सच ए ब्यूटिफुल फिल्म एंड सच ए सेंसिटिव फिल्म, आई वुड से कि इस सेंसिटिविटी से इस फिल्म को बनाया गया था कि देखने के बाद लगता था कि वाह क्या बात है। तो बस यह है हमारी आज की बात है कि सिनेमा की जो होती है जवाबदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे हैव टू मेक इट एनी सेंसिटिव टॉपिक इन द राइट वे, अप्रोप्रिएट वे। मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM।

104.9 FM फनेश शो पे सुन रहे आप ये कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। जी हाँ, ये हो नीलम एंड आपके लिए कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करती हूँ हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में। ब्रॉट टू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर, अ हम्बल अटेम्प्ट टू एंटायर कम्युनिटी। जी हाँ, हेल्प टू एंटायर कम्युनिटी, जहाँ पर आपके जो भी नॉन प्रॉफिट सोशल इवेंट्स है उसकी जानकारी हम पहुँचाते हैं आप ही तक, हमारी पूरी कम्युनिटी तक, एवरी सैटरडे 104.9 FM फनेश रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। आप ही के पसंद के कुछ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल गाने होते हैं और उसी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर कोई भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। तो आज भी होंगे कुछ गाने आप ही की पसंद के और कुछ जानकारी हम आपको देंगे अपकमिंग इवेंट्स की और एक्टिविटीज की। तो बने रहिए हमारे साथ, आपका कार्यक्रम, पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, एंड दैट इज कम्युनिटी राउंड अप

कृष्णा गोविंदा 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो। जी हाँ, आपका कार्यक्रम आप ही से बनता है ये कार्यक्रम, बहुत सारी जानकारी के साथ, कम्युनिटी के अनाउंसमेंट्स के साथ, हर शनिवार की दोपहर।

0: अबाउट 17th एंड 18th वी आर टॉकिंग टू अनूप जी हु इज़ अ वॉलंटियर एट श्री कृष्णा उडुपी मठ. तो बिल्कुल जाइएगा. एंड हैज़ ही मैंशनड इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द रिचुअल्स, इट इज़ अबाउट अवर लेगेसी, अवर कल्चर एंड ऑफकोर्स टीचिंग दैट टू अवर किड्स. सो अनूप जी गुड लक एंड मैनी मैनी बेस्ट विशेज फॉर ऑल दोज इवेंट्स सर. एंड आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एंड कीप लिसनिंग टू फनेश्टा रेडियो सर.
1: नमस्ते.
0: थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. फनेश्टा रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूं नीलम आपके साथ. ऐसे बहुत सारी जानकारी, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की बातें हम आपसे करते रहेंगे थ्रू आउट द शो.

वनोफो बनाना एफ एम फनी रेडियो, ये है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, एंड दैट इज कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम। कार्यक्रम आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में तारा कमर्शियल एनर्जी। जी हाँ, अगर आप टेक्सास में बिजनेस ओनर है तो आपके लिए एक बहुत ही स्मार्ट और कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन है, दैट इज तारा कमर्शियल एनर्जी। कम्युनिटी की सेवा में सिंस 2002 विद कम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस। आज ही उनको कॉल कीजिएगा, दैट इज 8444282808, और यू कैन विजिट taraenergy.com। वंस अगेन इट इज taraenergy.com। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे त्यौहार। जी हाँ, जैसे अब लगता है कि गणेश उत्सव की जब हमने उन्हें विसर्जन कर दिया और बस नवरात्रि जो नौरता है वो बस राउंड द कॉर्नर, राइट। नवरात्र और नवरात्र की मौसम शुरू हो रही है 11th, दैट इज 11th ऑफ अक्टूबर, नेक्स्ट संडे। उससे पहले कुछ और आपको जानकारी दे दूँ कम्युनिटी में होने वाली, एंड पितृपक्ष भगवत महापुराण की जो बात चल रही है अभी भी श्री राधा कृष्ण टेम्पल इन एलन में, सितंबर 26 से उसकी शुरुआत हो चुकी है, इट इज़ गोइंग ऑन टिल अक्टूबर 10th। जी हाँ, दैट इज़ एवरी डे बिटवीन 6 to 8 PM। शंकराय फाउंडेशन प्रेजेंट्स गरबा, दैट इज बॉलीवुड दंडिया, दैट इज टू नाइट अक्टूबर 3rd, और आप जा सकते हैं 7 to 11 PM, एंड द वेन्यू इज माई पॉसिबिलिटीज 3601 मेपल शेड लेन इन प्लानो, दैट इज बाय शंकरा आई फाउंडेशन, 7 to 11 PM। स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था 200th ईयर की सेलिब्रेशन में आपको इनवाइट कर रही है सैटरडे अक्टूबर 10th, आप जरूर जा सकते हैं बिटवीन 3 to 4:30 PM, दैट इज इन डालस, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था। दिवाली सेलिब्रेशन में भी गुरुकुल संस्था आपको इनवाइट कर रही है दिवाली, एंड दैट इज सैटरडे अक्टूबर 24th को, एंड 31st दे हैव दिवाली समयो शरद पूनम, शरद पूजन, एक्चुअली शारदा पूजन इज एट 8th and 10th, That is 8th of November and 10th of November. और ये सारी बातें हो रही है स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था। विवायो इज हैविंग दांडिया रास 9th, 16th and 23rd of October. That is 9th Friday, 16th is Friday and 23rd October is Friday as well. DFW Hindu Temple is having live dandiya, that is from 11th till 20th October. Fort Worth Hindu Temple is also having a Dandiya Ras, and that is also in Fort Worth Hindu Temple. DCICA is having a Dandiya Garba Night October 10th, that is next Saturday 6 PM onwards at Makkimi Middle School. Once again, that is DCICA Dandiya Night October 10th 6 PM onwards. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, बिल्कुल जानकारी हम देते रहेंगे क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, हैपनिंग एवरी सैटरडे। जी हाँ, आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम।

0: तिरंगा हम ही लहराएंगे।
1: श्री राम मंदिर इन प्लेनो इज ऑल्सो हैविंग पितृपक्ष पूजा एंड दैट इज हैपनिंग टिल ऑफकोर्स 10th of October एवरी डे, दैट इज पितृपक्ष पूजा एट राम मंदिर इन प्लेनो। दे आर ऑल्सो हैविंग नवरात्रि सेलिब्रेशन स्टार्टिंग ऑन October 11th टिल October 20th एंड देर हैव रंग ताली रास गरबा एंड माता जी भजन। दिस इज हैपनिंग ऑन थर्सडे October 15th एंड दिस इज ऑल हैपनिंग एट श्री राम मंदिर इन प्लेनो। बातें, कम्युनिटी इवेंट्स, कुछ इंस्पिरेशनल कहानी बिल्कुल आपको सुनवाऊंगी। ये कार्यक्रम आपके साथ रहेगा टिल 3 PM ऑन 104.9।

0: कुछ वतन के गाने, कुछ इंस्पिरेशनल बातें, कुछ इंस्पिरेशनल गाने एंड ऑल्सो आप ही की पसंद के कुछ होते हैं मोटिवेशनल बातें गाने, कुछ कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी के साथ। जी हाँ, ये कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी हम आपके लिए लाते हैं हर शनिवार की दोपहर। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप भी कोई भी आपके इवेंट, आप मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं से भी, कोई भी धार्मिक या सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, आपकी जो भी बातें हैं, आपके जो भी इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स हैं, उसकी जानकारी हम तक पहुंचाना चाहे, देन डू रीच आउट टू मी neelam@funasia.net। वंस अगेन, दैट इज neelam@funasia.net, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, आप ही के लिए, आप ही की सेवा में हर शनिवार की दोपहर। माई टाइम इक्विटी को याद करना चाहेंगे सीपीए सुधीर पाए, माई टाइम इक्विटी जिनका नंबर है 4697021272, और यू कैन विजिट mytimeequity.com। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात हो, रियल्टी की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, एंड रिटायरमेंट प्लानिंग की बात हो, एक ही नाम, दैट इज मिस्टर सुधीर पाई, माय टाइम इक्विटी, 4697021272। कुछ लम्हों में हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद एक कहानी आपका इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं कोई कहानी लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ इंस्पिरेशनल कहानी, उसी के साथ और भी कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी देंगे, हमारे साथ एक और धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। ये सारी बातें, ये सारे गाने, ये सारी कहानियाँ आप ही के लिए, क्योंकि ये है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, आप ही का कार्यक्रम, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम, दैट इज एवरी सैटरडे ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। जी हाँ, और यही है हमारा प्रयास, इट इज़ ब्रॉट यू बाय CEO वैशाली ठक्कर।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
4: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
5: Matlab crispy golden dosa?
4: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, or a delicious buffet jahan choices hi choices hain.
5: Wow, great food, full variety, and everyone's happy.
3: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
6: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
7: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
11: Beta, 95% आए?
9: हाँ मम्मी।
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
11: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने।
12: AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
2: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Filmon ka maza action, drama aur romance mein. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
14: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
13: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज.
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट.
15: हाय, दिस इज प्रियंका चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
0: एंड वेलकम बैक, दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पे. मैं हूं नीलम आपके साथ. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम. टेक्सास प्राइमरी केयर को बिल्कुल याद करेंगे. फॉर लास्ट 13 इयर्स आपकी सेवा में फॉर एंटायर कम्युनिटी. अब वो उनकी सेकंड लोकेशन के साथ आ गए एंड दैट इज इन फ्रिस्को. इंट्रोड्यूसिंग लिनक्स मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. आपके लिए प्राइमरी केयर भी है, अर्जेंट केयर भी है, इन हाउस लैब टेस्टिंग भी है, एक्सरेज वगैरह वगैरह. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, इट इज ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM टिल 8 PM. यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. दैट इज टेक्सास प्राइमरी केयर. कार्यक्रम में आपका, हमारी पूरी कम्युनिटी का, जो मैं नीलम आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ यहाँ पे 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. और आज हो या हर शनिवार, बातें जो होती है आपसे ही होती है, आप ही की होती है. एंड दैट इज हावर कम्युनिटी इवेंट्स, जहाँ पर आप ही के लिए लाते हैं हम आपके लिए बहुत सारे नॉन प्रॉफिट एंड सोशल इवेंट्स की जानकारी ऑन 104.9.

Sindoor Khela, and this is the event which is happening, going to happen on Friday, October 23rd at 7 PM. It's a culture and community gathering celebrating Durga Ma, Aarti, Bhog Prasad and the Nochi dance. And that is Sindoor Khela. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स की जानकारी मैं नीलम आपको देती रहती हूँ ड्यूरिंग दिस आवर, एंड दैट इज एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. क्योंकि ये है हमारा प्रयास आप ही के लिए आपके जो भी इवेंट है उसकी जानकारी हम तक पहुँचाए, हमारी कम्युनिटी तक पहुँचाए, एंड ऑल्सो वी टेक रिप्रेजेंटेटिव्स लाइव ऑन एयर टू टॉक अबाउट देयर अपकमिंग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज. ऑन दैट नोट, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, कोई भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं और आपकी जानकारी भी हम तक पहुंचाना चाहे, देन डू रीच आउट टू मी neelam@funasia.net. वंस अगेन, दैट इज NEELAM@funasia.net. सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत और उसके बाद मैं आपको कुछ कहानी एक छोटी सी बताऊंगी, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी राइट आफ्टर दिस सॉन्ग.

104.9 FM फनीशा रेडियो और बहुत सारी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पिरिचुअल बातें होती है। कुछ गाने आप ही के पसंद के होते हैं क्योंकि यह कविता कार्यक्रम आपका। जी हाँ, हम प्रस्तुत करते हैं आप ही के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए हर शनिवार की दोपहर। एंड आप मुझे सुन सकते हैं रविवार की दोपहर एज वेल, दैट इज 12 to 2 PM। 12 से 1 के बीच में आपके लिए गुजराती रीजनल कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम। एंड 1 से 2 के बीच में गैर फिल्मी गाने होते हैं। सैटरडेज 12 से 3 के बीच में होता है कार्यक्रम, जहाँ 12 से 2 के बीच में बॉलीवुड सेगमेंट। एंड 2 to 3 PM इट इज दिस कम्युनिटी शो। लिटिल बाय लिटिल फंड रेजर की आपको जानकारी देना चाहूंगी, एंड दैट इज सपोर्टिंग द जिटार कम्युनिटी इन नाइजेरिया। जी हाँ, ये एक ऐसी फंड रेजिंग एफर्ट है, दैट इज़ 50% डोनेशन मैच। इट इज़ गोइंग ऑन टिल October 4th। अगर आप भी कोई भी मदद करना चाहे, यू कैन डोनेट थ्रू ग्लोबल गिविंग, एंड दैर वेबसाइट इज़ bit.ly/jitar26। वंस अगेन, दैट इज लिटिल बाय लिटिल फंड रेजर एंड इट इज सपोर्टिंग द जिटार कम्युनिटी इन नाइजेरिया। चलिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। अक्सर हम किसी और को देखकर दुखी हो जाते हैं, एंड स्पेशली व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग इन अ विच एवर वे, राइट। सो एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है, कौवा था। कौवा अक्सर सोचता था कि मैं कितना काला हूँ, मेरा रंग कितना काला है और हंस कितना सफ़ेद है। सुंदर, बहुत ही सुंदर लगता है हंस, राइट, सफ़ेद मखमली पंख और बहुत ही शांत। तो कौवा उसके पास पहुँचता है और कौवा ने हंस को कहा कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मुझे लगता है कि मुझे मेरे काले रंग से नफरत हो गई है, कि मैं क्यों आपके जैसा नहीं हूँ, मेरा रंग क्यों इतना अच्छा नहीं है। तुम कितने खूबसूरत हो, तुम सब कोई तुम्हें पसंद करता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं काला हूँ, मैं कितना बदसूरत हूँ। हंस ने धीरे से मुस्कुराते कहा कि देखो दोस्त, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा। उसके पास हरे हरे चमकदार पंख थे, सुंदर लाल चोंच है, तो मुझे लगा कि तोता ही सबसे दुनिया का खूबसूरत जीव है। ये सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास पहुंचा। उसने तोते से कहा कि देखो, तुम्हारे रंग बिरंगे कितने पंख है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देखकर, तुम कितने खुश हो। तोते ने दुखी होकर कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं हमेशा पिंजरे में रहता हूँ। देखो ये मोर को देखो, मोर कितना खूबसूरत है, उसके कितने अच्छे अच्छे पंख है, कितनी अच्छी अच्छी भव्यता है, उसके सामने मेरा हरा रंग, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और हसीन जीव कोई है तो वो है मोर। ये सुनकर तोता उड़कर मोर के पास गया। उसने मोर से कहा कि अब आपके पास इतना अच्छे अच्छे पंख है, आपके रंग देखो, आपके जो नृत्य होता है वो देखने के लिए कितने लोग चले आते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत मोर तुम ही हो, तुम्हें हजारों लोग पसंद करते, तुम जब नाचते हो तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान ने तुम्हें बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनाया, तुम बहुत खुश होगे। मोर ने गहरी सांस ली और उदासी से कहा, मुझे भी लगता था कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली सबसे सुंदर हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश था, लेकिन इसी खूबसूरती के कारण कई लोगों ने मुझे इस पिंजर में कैद कर दिया है, अभी मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। मोर ने कौवे की आंखों में देखते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं पूरे चिड़ियाघर को ध्यान से गौर से देख रहा हूँ, लेकिन पता है क्या, एक बात मैंने गौर की है कि इस चिड़ियाघर में हर एक जानवर है, हर एक पक्षी है, हर किसी का पिंजरा है कहीं ना कहीं, लेकिन कौवे के लिए कोई पिंजरा नहीं है। तो मोर ने कहा, देखो तुम तो अभी भी आज़ाद हो, मैं हूँ, तोता है, मोर है, ये कोई आज़ाद नहीं है, हम अपनी कितनी भी खूबसूरती हो हम कैद में है, हमें कोई पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें तो कोई पकड़ने भी कोशिश नहीं करता, आसमान में आज़ादी से आप रह रहे हो। इसको सुनकर कौवे की आंख खुल गई, उसे समझ में आ गया कि बाहरी रंग रूप और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, असली खुशी इस बात में है कि आपके पास क्या है, आप कितने आज़ाद है, आपके पास जो बात है वो शायद किसी और के पास नहीं हो सकती। और ये सारी बातें ही हमें ज़िंदगी में सिखाती है कि हम किसी और को देखकर हम सोचते कि अरे मेरा रंग क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसी हूँ, मेरा क्यों ऐसा नहीं होता, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है वैसा इसलिए बनाया क्योंकि हम सब अलग है और हमारी खूबसूरती ही हम सब में, हमारी ओरिजिनल जो यूनिक आइडेंटिटी है उसी में है।

कम्युनिटी आउटरीच की है ये प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप। जी हाँ, जो आप मेरे साथ सुनते हैं हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए, जो कहानियाँ आप सुनते हैं उसके लिए। जी बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है आपके लिए ऐसी इंस्पिरेशनल बातें और कहानियाँ लाने के लिए। और हमारे फनेशिया के सोशल कम्युनिटी की पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इट इज़ फनेशियाज कम्युनिटी आउटरीच की पेज है, जहाँ पर आप सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एज वेल एज वी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द इंस्पिरेशनल टॉक्स एंड इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज। फनेशिया नेटवर्क इज ऑल्सो नाउ ब्रिंगिंग यू मीडिया एक्सपर्टीज। आप जानते ही होंगे कि जहाँ पर रेडियो के अलावा डिजिटल भी प्लेटफॉर्म है आपका रिलेटिव मीडिया, जो आपको दे सकते हैं ब्रांड न्यू कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन। उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 4694243188, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं दैट इज़ AI एम्पावर्ड। जी हाँ, स्मार्टर रीच के साथ, दैट इज़ फनेशिया नेटवर्क।

भीगे भीगे इस मौसम में हमने लगाया ये एक धुआंधार किस्म का कनाडा सॉन्ग, दैट इज आई लाइक टू कॉल इट कनेडियन. स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. खास तौर पर सैटरडेज को व्हेन वी होस्ट द सेगमेंट पूली प्यार की, जिसमें बहुत प्यार से आपके लिए प्ले किए जाते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. हर लैंग्वेज के सिर्फ दो ही गाने प्ले किए जाते हैं, सो ख्याल रखिए, पहले आइए पहले पाइए. एज इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, द सूनर यू कॉल द सूनर योर सॉन्ग गेट्स प्लेड. एंड रिमेम्बर, इस सेगमेंट में हम उर्दू, हिंदी या इंग्लिश के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि प्ले करते हैं सिर्फ साउथ एशियन रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर.

0: You are listening to Boli Pyar Ki on 104.9 FM. This part of our show brought to you by Dream Home Mortgage. Apne sapno ko sach kijiye aur apna ghar kharidiye. And now is the perfect time for buyers because the real estate prices are at an all-time low. It is a buyer's market. Do it through Dream Home Mortgage. Call Hussein Panjwani at 972-245-LOAN. All right, ladies and gentlemen, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. Phanisha Radio, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: मेरा नाम रविशंकर हूँ.
0: हेलो रवि, हाउ आर यू टुडे?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए.
0: मैं अच्छी हूँ. बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: वो भोजपुरी गाना सुनना पसंद करेंगे, लाल लाल ओटवा से.
0: भोजपुरी सॉन्ग लाल लाल
1: ओटवा से.
0: Okay, let's see if I can find that song for you.
1: Lata Mangeshkar ji ka gaana hai.
0: Lata Mangeshkar ka gaana hai. Okay, I'm finding other stuff. Let's see. Are you sure yahi naam hai uska?
1: Ji.
0: Okay. Aur aap kahan se call kar rahe hain hame?
1: मैं प्लेनो से कॉल कर रहा हूँ.
0: प्लेनो से कॉल कर रहे हूँ. ओके, लाल लाल होटवा से, दैट्स द वन.
1: जी
0: ओके,
1: जी जी.
0: आई विल प्ले दैट फॉर यू रवि. थैंक यू फॉर योर कॉल.
1: थैंक यू.
0: ऑलराइट, अब सुनते हैं हम ये भोजपुरी गाना.

0: लाल लाल होटवा से प्लेनो के रवि साहब के लिए हमने प्ले किया ये भोजपुरी गाना. इट इज 48 मिनट्स पास्ट 3 ऑन दिस 3rd ऑफ अक्टूबर 2026. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात, एंड ये है सेगमेंट बोली प्यार की. द करंट होल्ड टाइम इज 5 to 10 minutes, सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा. इस रीजनल सॉन्ग सेगमेंट में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है. ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हेलो.
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: जी आमरीन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक, वी आर सो हैप्पी टू हियर यू बैक.
0: थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट द लव. कैसे हैं आप सुहेल एंड मरियम?
1: बहुत अच्छे, मिस करते थे आपको, बट वी आर फाइनली हैप्पी.
0: I am so glad.
1: Welcome back.
0: So thank you so much. So which Bangla song can I play for you today?
1: Okay, I'm going to say to you, Ashar Shraban Mane Na To Mon.
0: Ashar Shraban
1: Mane
0: Mane Na
1: Na
0: Na To Mon. Okay, got it. It's a
1: Lata Mangeshkar ji.
0: Purana gana hai, yeah?
1: Ji.
0: Okay, no worries. I'll play it for you. And aap log kahan se call kar rahe hain hame?
1: हम लोग रिचर्डसन से कॉल कर रहे हैं.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. एंजॉय.

0: आषाढ़ श्रावण माने ना तो मौन। सुन रहे थे आप लता जी की आवाज में ये खूबसूरत बांग्ला सॉन्ग, जिसे सुनने की फरमाइश की थी सुहेल और मरियम ने। यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM। बहुत दिल से इसे पेश कर रही हूँ। यस, आई वॉज अवे, बट आई थिंक सुहेल आप लोगों ने मिस कर दिया। मैं लास्ट वीकेंड पर भी थी, सो आई हैड री स्टार्टेड द शो, बट नो वरीज, दैट्स ओके। आप लोगों ने ज्वाइन किया आज, सो इट्स ग्रेट टू हेयर फ्रॉम यू एज ऑलवेज। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, बोलिए आपका नाम।
1: जी रतन बोल रहा हूँ।
0: जी रतन बोलिए, कौन सा गाना? मैथिली सॉन्ग?
1: जी जी जी। और okay. कैसे हैं
0: आप? मैं ठीक हूँ, मैं भूली नहीं आपको। बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाने का बोल है प्रेम के नाजुक बंधन।
0: प्रेम के नाजुक बंधन।
1: नाजुक बंधन, नाजुक
0: बंधन। ओके, गॉट इट, आई विल प्ले इट फॉर यू। और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी हम बोनम में रहते हैं।
0: ओके ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये रहा आपका मैथिली सॉन्ग।

0: दे। 73 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज द करंट टेम्परेचर हियर इन द मिकिनी एरिया। सुबह से हो रही है झमझम बरसात और ये बरसात जारी रहेगी सारा दिन। टुडे इज हाई 73 एंड अ लो ऑफ 69 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। वेल, कुछ लोगों को ये मौसम भीगा भीगा अच्छा लगता है, कुछ लोग शायद तंग आ जाते हैं, स्पेशली इफ यू हैव टू ड्राइव अराउंड, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सो आई होप दैट आई विल प्ले सम ऑफ द बेस्ट म्यूजिक फॉर यू, जैसे कि ये मैथिली सॉन्ग हमने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। फरमाइश थी ये हमारे रतन साहब की। दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय माय टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाई। माय टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। सो यू कैन विजिट mytimeequity.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन और गेट हेल्प फ्रॉम देम। 4697021272 है उनका नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: मेरा नाम कृष्णा है
0: जी। कृष्णा जी बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगी, कौन सी लैंग्वेज?
1: मैं गुजराती लैंग्वेज में वालम आओ ने।
0: ये आपका फेवरेट गाना है ना?
1: हाँ।
0: आई नो, बिकॉज आई थिंक यू कॉल्ड बिफोर एज वेल फॉर द सेम सॉन्ग, बट यू नो व्हाट, नो प्रॉब्लम, जो गाना आपको पसंद होगा हम वो प्ले करेंगे। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
1: मैं फ्रिस्को से।
0: फ्रिस्को से, ऑल राइट, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनते हैं अब हम ये प्यारा सा गुजराती सॉन्ग।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
7: ओह हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, from timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
10: That garba was totally worth it. We had so much fun.
11: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
10: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
12: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Ek aur laddu le lo.
16: Thodi aur biryani.
15: Arey America jaake thodi milega.
17: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन Health Primary Care.
18: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
19: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
20: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
16: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं. You are listening to बोली प्यार की, हमारा weekly regional languages song segment, जिसमें हम आपकी रिक्वेस्ट पर प्ले करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. अब आपका गाना चाहे हो गुजराती या मलयालम, तेलुगु हो या हो पश्तू, सिंधी हो या सराइकी, भोजपुरी हो या हरियाणवी, आपको बस हमें कॉल करनी है 9722355555. अगर आपकी मातृभूमि, आपकी भाषा, आपकी जुबान का गाना अभी तक प्ले नहीं हुआ तो कसूर सरासर आपका है. आपने कॉल करके बताया ही नहीं कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और कौन सी लैंग्वेज का गाना आपको सुनना है, क्योंकि हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस सेगमेंट में हिंदी, उर्दू या इंग्लिश का कोई गाना प्ले नहीं करेंगे, सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने प्ले किए जाएंगे. हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं, सो पहले आइए पहले पाइए. सो फार वी हैव प्लेड कन्नडा, भोजपुरी, बांग्ला एंड गुजराती सॉन्ग. अब आइए देखते हैं अगला गाना कौन सी लैंग्वेज में होगा. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम. हेलो हेलो, फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है. हेलो, अच्छा आप लोग ऐसा करें, या अपनी बातें कर लें या मुझसे बात कर लें. हेलो, आई थिंक वो कॉल करके भूल गए. हेलो, ओके, आई एम गोना लेट देम कंटिन्यू देयर कॉन्वर्सेशन. फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है, आपका नाम. हेलो
20: हेलो
16: जी, आप ऑन एयर है, आपका नाम.
20: पार्थ
16: जी बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे.
20: उड़िया.
16: उड़िया सॉन्ग, ऑलराइट. और क्या नाम है आपके गाने का.
20: बोरसी जांग.
16: बोरा, आई एम सॉरी, क्या फिर से बोलिए.
20: बोरसी, बी ए आर ए एस आई.
16: हाँ, बोरासी जा
20: जा
16: मेघा, बारिश का गाना है.
20: हाँ हाँ,
16: वेरी नाइस, आई थिंक आई फाउंड इट. और पार्ट मैंने नोट किया है, कोई और कॉल करे ना करे, आप हर हफ्ते बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं, कॉल जरूर करते हैं हमें अपने उड़िया सॉन्ग के लिए.
20: हाँ जी,
16: चलिए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें.
20: Arvind,
16: thank you so much for your call. All right, we're going to go ahead and play this song. If you're able to hear my voice, that means you're on hold. Aap Qatar mein hain, queue mein rahiye. If you disconnect, you go further back in line. There is at least a 5-minute hold during this segment. So please be patient. Aapka gana zarur play kiya jayega. Do not disconnect. If you hear on hold music ya radio pe jo bhi chal raha hai, agar aapko wo sunai de raha hai, that means aapki call connect ho gayi hai and you're in line to hear your song. So please do not disconnect.

0: बरसी जाओ मेघा तू बरसी जा, उड़िया सॉन्ग सुन रहे थे हम पार्थ की रिक्वेस्ट पर. इट्स 11 मिनट्स पास्ट 4. विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग. दिस इज अमरीन हसनात एंड दिस इज बोली प्यार की. लेट्स सी अगला गाना कौन सी जुबान में होगा. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो,
1: आई एम दिव्यांश.
0: जी दिव्यांश, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: I want to request for a Malwa, I mean Madhya Pradesh song, Malwa, in Malwa language that is called Ama Kata Baba Na Poria.
0: Okay, kafi fast bole aap. So the name of the language is Malwa?
1: Not Malwa, it's Nimari Malwa.
0: Nimari, language ka naam kya hai? मालवी जुबान है और गाने का नाम क्या है? आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स अलग करके बताइएगा.
1: आमा काका बाबा ना पोरियारो, समथिंग लाइक दैट.
0: आमा आमा का
1: काका बाबा ना पोरिया.
0: ओके, आई एम सो सॉरी सर, आप इतना फास्ट बोल रहे हैं, मुझे तो ये लैंग्वेज नहीं आती ना, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि वर्ड्स अलग अलग से क्या है. सो कैन यू टेल मी द फर्स्ट वर्ड?
1: गिव मी अ सेकंड. आमा आमा
0: आमा
1: काका,
0: आमा क्या
1: काका, आमा काका बाबा एंड पोरिया.
0: काका, ओके काका बाबा. ओके, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट. आई थिंक पीछे से बच्चे की भी आवाज आ रही है. इट्स मेकिंग इट अ लिटिल. ओके ओके, आई एम गोना ट्राई टू फाइंड इट, आई विल प्ले इट फॉर यू. एंड आपने कहा मध्य प्रदेश.

0: ओके,
1: मैम
0: लेट मी सी इफ आई
1: पापा
0: कैन फाइंड इट. आई
1: पापा
0: थिंक पीछे से बच्चे की भी आवाज आ रही है. इट्स मेकिंग इट अ लिटिल. ओके ओके, आई एम गोना ट्राई टू फाइंड इट. आई विल प्ले इट फॉर यू. एंड आपने कहा मध्य प्रदेश की बोली है ये? हाँ ओके, ठीक है, चलिए आज ये सुनते हैं हम. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डोंट रिकॉल एवर प्लेइंग दिस लैंग्वेज सॉन्ग, बट हे देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, सो हियर इट इज.

0: ऑलराइट, पहली बार 104.9 एफएम पर एक मालवी भाषा का गाना सुनने को मिला और प्ले करने को मिला. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. आई डोंट नो कितने लोगों को ये भाषा, ये बोली समझ में आती है. यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की एंड आई वांटेड टू टेल यू अबाउट अ स्पेशल ऑफर फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या जब वो पैशन हेल्थ केयर जाते हैं तो वहां दे आर आउट ऑफ नेटवर्क फ्रॉम देयर इंश्योरेंस. वेल, you can get affordable primary care with Passion Health Direct, and that's a special deal that they have, like a membership program, $85 a month, which gives you primary care, preventative care, medication management, telehealth, and so much more. You can get all the details by calling them 214-666-6259 or visiting passionhealthphysicians.com. ये health insurance नहीं है, but it's just a membership program जिसमें आपको ये सारी services मिलती हैं. Like I said, you can get all the details from them. They do have a location in Frisco, which is open on Saturdays and Sundays. All right, moving on to our next caller, Fanisha Radio. आप on air है. Thank you for holding. क्या नाम है आपका? हेलो.
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: आई एम आसिफ.
0: आसिफ जी, बोलिए आसिफ. कौन सी लैंग्वेज का गाना?
1: बंगाली, बांग्ला.
0: बांग्ला सॉन्ग. ऑलराइट, कौन गान सुनबेन आज के?
1: खुला जानालाय बाय शानल रहमतुल्ला.
0: ओके, खुला जालना. ओके,
1: जानालाय.
0: ओके, जानाला. ओके, लेट मी फाइंड दैट फॉर यू. Okay, thank you so much for your call. And here is your song. Aur kahan se call kar rahe hain aap humko?
1: Plano.
0: All right, thank you. Here is your Bangla song. Now, this is the second Bangla song. Yani ki ab hum Bangla song ki aur request nahi le payenge.

0: आमी खोला जानला सुन रहे थे आप ये बांग्ला सॉन्ग. दिस इज आवर सेकंड बांग्ला सॉन्ग टुडे. 20 मिनट्स पास्ट 4. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फनीशर रेडियो. आप ऑन एयर हैं. आपका नाम
1: अजय.
0: जी अजय, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मराठी.
0: मराठी सॉन्ग. क्या नाम है आपके गाने का?
1: गुलाबी साड़ी.
0: गुलाबी साड़ी. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: कोपेल.
0: ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ऑलराइट, दिस इज आवर फर्स्ट मराठी सॉन्ग ऑफ टुडे.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
1: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
2: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
1: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
2: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
3: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
3: Barista House, richness of biryani bliss.
4: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba Fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
12: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
13: खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Funasia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई विल बी विद यू टिल 6 p.m. इट इज 33 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 3rd ऑफ अक्टूबर 2026. इट्स अ सैटरडे इवनिंग. एक नया महीना शुरू हो चुका है. आई होप दिस न्यू मंथ ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. एंड इफ देयर वाज स्ट्रेस इन योर लाइफ लास्ट मंथ, आई होप ऑल दैट vanishes and only good things happen and happy things happen and lots of peace and happiness comes to you. Now, Funasia Network has something new to share with you. They now bring their media expertise to your social media. That's right. Relative media, from engaging reels and graphics to captions, content distribution and amplification through Funasia's radio, digital and community platforms. Relative media gives you brand a complete content solution. Call 469-424-3188 to book your content audit today. That's Relative Media, powered by Funasia Network. All right, let's see who's our next caller. Funasia Radio, aap on air hai, aapka naam?
8: सैम
13: जी, सैम बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना?
8: तेलुगु।
13: ऑलराइट, क्या नाम है आपके तेलुगु गाने का?
8: श्रीवल्ली फ्रॉम पुष्पा।
13: श्रीवल्ली फ्रॉम पुष्पा, ऑलराइट, आई विल प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग। और आप हमें कहां से कॉल कर रहे हैं?
8: डेंटन।
13: डेंटन, ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल। लेट्स एंजॉय दिस सुपर हिट सुपर फेमस सॉन्ग। By the way, a quick recap. So far, we played Kannada, Bhojpuri, Bangla, Maithili, Gujarati, Odia, Malvi, Marathi and Tamil song. And this is Telugu.

0: One of the most loved Telugu songs, that was Shrivalli. Hope you enjoyed it. All right, guys, main batati chalu that we'll not be taking any Gujarati or Bangla song requests kyunki inke do do gaane already ho chuke hain. Let's see who's our next caller. Phanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: नमस्कार जी, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है.
0: जी पांडे जी, कहिए कैसे हैं आप?
1: हम बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे
0: हैं? मैं भी ठीक हूँ. बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: जी, मैं भोजपुरी का गाना सुनना चाहता हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी जी का फरमाइश है.
0: ओके.
1: आने के बोल है कि हमरे नजर से जो देखो हमरे पिया जी के, और सिंगर है इसकी स्वाति मिश्रा.
0: हमरी नजर से Okay, Swati Mishra.
1: Right.
0: Okay,
1: right,
0: let's
1: right.
0: see if I can find that song for you. I am finding shayad kuch aur. Is it called Dilna Bikau ya Pia Ji Ke? ओके, ठीक है. बिकॉज कई दफा गाने के बोल ना हमको कुछ और लगता है, पर एक्चुअल बोल कुछ और होते हैं. सो ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें पांडे जी?
1: जी, मैं मेलिसा से कॉल कर रहा हूँ.
0: थैंक यू. और ये आपकी वाइफ के लिए प्यारा सा भोजपुरी सॉन्ग. दिस इज आवर सेकंड भोजपुरी सॉन्ग, सो नो मोर रिक्वेस्ट ऑन भोजपुरी.

0: बड़ा ही सुरीला सा था ये भोजपुरी गाना जो हमने प्ले किया मिसेस पांडे के लिए. 42 मिनट्स पास्ट 4, वी आर गोना कंटिन्यू प्लेइंग योर रिक्वेस्ट फॉर रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स. लेट्स सी हुज़ आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: आयशा.
0: आयशा, थैंक यू फॉर होल्डिंग. बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: सिंधी.
0: ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
1: दाने पे दाना.
0: दाने पे दाना. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
1: ओके.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच. हियर इज योर सॉन्ग, एंजॉय. एंड दिस इज द शाजिया खुश्क वर्जन.

0: आयशा की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम दाने पे दाना, आप सिंधी सॉन्ग ऑफ दिस सेगमेंट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फनीशा रेडियो. आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं जी, आपका नाम?
1: रजनी.
0: जी रजनी, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: अभी तक कोई पंजाबी गाना नहीं हुआ, तो आप अपनी चॉइस को कोई भी पंजाबी गाना लगा दीजिए.
0: पंजाबी सॉन्ग, ओके लेट मी ओके आई एम गोना. आपको किस टाइप के पंजाबी गाने, क्योंकि पंजाबी में भी इतनी वेरिएशन है ना, आपको कौन सा पसंद है?
1: कुछ भी चला दीजिए.
0: ओके चलो, हाउ अबाउट लॉन्ग लाची?
1: हाँ श्योर.
0: ठीक है चलिए, प्ले करते हैं हम आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. All right, so here it is, a very, very sweet, very beautiful song. In fact, iska to Bollywood remake bhi bana tha. So I'm sure ki agar aapne original nahi suna, remake ka to Bollywood wala zarur suna hoga.

0: और अ ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग. आई होप कि आपको मजा आया ये गाना सुन के. मैंने भी बहुत दिनों के बाद सुना. वेल, मौसम अबर आलूद है, एज इन बारिश हो रही है सुबह से, एंड इट हैज ब्रॉट डाउन द टेम्परेचर क्वाइट अ बिट. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वेदर. 5 बजे के बाद हम शुरू करेंगे कुछ बारिश वाले गाने. आई होप यू स्टिक अराउंड फॉर दैट. But for now, let's move on to our next caller. Bas is segment mein 10 hi minute reh gaye. Let's try to squeeze in as many songs as we can. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Ajay.
0: Ji, Ajay, boli, kaun si language ka gana request karenge?
1: Rajasthani.
0: Rajasthani gana, kya naam hai aapke gane ka?
1: Chaudhary from Mame Khan.
0: Chaudhary, मामे खान. ओके, सिंगर का नाम है?
1: या अमित त्रिवेदी.
0: ऑलराइट, लेट मी फाइंड दैट सॉन्ग फॉर यू. और अजय, आप हमें कहां से कॉल कर रहे हैं?
1: प्लेनो से.
0: प्लेनो से. ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. हियर इज योर सॉन्ग.

0: थे हम ये राजस्थानी गाना मामे खान और अमित त्रिवेदी की आवाज में राइट हियर ऑन बोली प्यार की। आई होप आपने सभी गाने एंजॉय किए। अब तक 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने हमने आपको हैं सुनाए। नाउ रियली क्विकली वांट टू टेल यू अबाउट वैनेसा इवेंट्स। नाउ इफ यू हैव एन इवेंट कमिंग अप किसी भी किस्म का, वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग, व्हाटएवर सेलिब्रेशन, Vanessa Events can handle it all for you. Venue selection se lekar decor tak, and they do the decor through signature events and photography as well, hospitality, catering karwate hain Basera Grand se. All you need to do is call Hari Basera at 469-442-8770. That's Vanessa Events, your celebration partner. ओके अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी उन्हें कौन सी लैंग्वेज का सुनना है गाना। फनीशा रेडियो आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: सत्या।
0: आई एम सॉरी,
1: सत्या।
0: सत्या बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मराठी।
0: मराठी, ऑलराइट, दिस इज गोना बी आवर सेकंड मराठी सॉन्ग टुडे। क्या नाम है आपके गाने का?
1: गुलाबी साड़ी।
0: वो मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूँ, इसी गाने की आई थी फरमाइश, कुछ और बताइए।
1: दूसरा गाना है तामड़ी चमड़ी।
0: तामड़ी तामड़ी,
1: तामड़ी चमड़ी।
0: ओके, तामड़ी चन, इज इट ओके, तामड़ी चमड़ी, इज दैट व्हाट यू सेड? ओके ठीक है, आई विल प्ले दैट फॉर यू। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: फ्रिस्को।
0: फ्रिस्को, ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल। ये रहा आपका गाना। And if you can hear my voice, that means you're on hold. Please do not disconnect. Otherwise, aapko aur hold karna padega. Aap queue mein peeche chale jayenge.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
19: From elegant sarees, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
18: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
19: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
20: That garba was totally worth it. We had so much fun.
21: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
20: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
22: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
0: सुबह ड्राइव पे
1: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो।
2: दोपहर फोन पर
23: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो।
0: शाम को घर पर
24: You are listening to Fun Asia Radio.
25: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
26: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while tracking कॉल्स, बुकिंग्स और visits. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
25: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
26: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

सोचा था त्रिवेदी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो फिल्म तक्षक से लिया गया था और पिक्चराइज किया गया था तबू पर। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। यू आर लिसनिंग टू सावन स्पेशल। हमने सोचा कि मौसम के इस लुत्फ को दोबाला कर दिया जाए इन खूबसूरत गीतों के साथ। 73 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड क्लाउडी राइट नाउ इन द मिकिनी एरिया। टुडे इज हाई 73, यानी कि इट्स नॉट गोना गेट एनी हॉटर। टुडे इज लो 69। एंड दिस सावन स्पेशल इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, हाउसकीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स as well as businesses. Aap call kijiye 469-942-9888 or you can visit agfintechs.com today.

A lovely song. It's so hard not to sing along with these lovely songs. साधना सरगम और हरिहरन की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे पर पिक्चराइज किया गया था. एंड नाउ टाइम फॉर अ रिक्वेस्ट. सोहेल की तरफ से बहुत प्यार से उनकी वाइफ मरियम के लिए.

सुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, सर फिल्म से लिया गया ये गाना। कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप, एंड पूजा भाट पे पिक्चराइज किया गया था। 37 minutes past 5, यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, हियर इज अ मैसेज फ्रॉम स्मार्ट रीच AI। नाउ दिस इज फॉर बिजनेस ओनर्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल सी और क्लिक ऑन योर एड, इट्स अबाउट how many become your customers. Meet Smart Reach AI, a Funasia network product that helps you reach potential local customers, even those visiting your competitors across radio, digital streaming, TV and online audio. Then measure what truly matters: calls, bookings, offer redemptions and actual visits to your business. Visit smartreachai.us and turn local attention into customers.

देखो ना, व्हाट अ लवली सॉन्ग. काजल और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना. सुन रहे थे आप, आई बिलीव सोनू निगम और सुनीति चौहान की आवाज में. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 5 ऑन दिस 3rd ऑफ अक्टूबर 2026. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग ऑल दीज लवली सॉन्ग्स दैट आई एम प्लेइंग फॉर यू.

You are listening to the Sawan Special on 104.9 FM Funisha Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात. यू नो, आपका ये जो दिल होता है ना, ये महज गोश्त का एक टुकड़ा नहीं होता. ये आपकी तकदीर की सबसे सच्ची आवाज़ है. और अगर आप खामोशी से इसकी सुने तो वो आपको वहाँ तक ले जाता है जहाँ आपकी असल मंजिल आपके इंतज़ार में होती है. ज़िंदगी की खूबसूरती इस यकीन में ही छुपी होती है कि आज का ख्वाब कल की हकीकत बन सकता है. और यही उम्मीद, यही आशा इंसान को अंधेरों में भी चिराग थामे रखने का हौसला देती है. अक्सर हम नाकामी से नहीं बल्कि नाकाम होने के खौफ से हार जाते हैं. हालांकि रास्ते की ठोकरें मंजिल का पता देती हैं, ना कि सफ़र का खात्मा. इंसान का असली खजाना सोने चांदी के ढेरों में नहीं बल्कि उस जगह होता है जहां उसका दिल सुकून, मोहब्बत और अपने मकसद को पाता है, अपने लक्ष्य को पाता है. हर जिंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब किस्मत के बंद दरवाजे आहिस्ता से खुलते हैं और इंसान अपनी असल पहचान से आशना होता है. जो शख्स अपने अंदर से, अपनी सोल से दोस्ती कर लेता है, उसके लिए ये कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं और तूफान भी उसका दोस्त बन जाता है, उसकी रहनुमाई करने लगता है. जिंदगी की अजमत कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर शिकस्त, हर हार के बाद एक नए अजम, एक नई मोटिवेशन के साथ उठ खड़े होने में है. जख्म अगर हौसले के साथ सहे जाएं तो वो कमज़ोरी नहीं बल्कि किरदार की रोशनी बन जाते हैं, कैरेक्टर बन जाते हैं. बिलाखिर वही लोग अपनी कहानी को कंप्लीट करते हैं जो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते और दिल की सदा पर यकीन रखते हैं. कायनात भी उन्हीं मुसाफिरों के लिए रास्ते हमवार करती है जो अपने ख्वाबों को सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं.

और मेरे फेवरेट गाने के साथ आज के सेगमेंट का अख्तिताम करते हैं। वैसे तो हम सिर्फ बारिश से रिलेटेड गाने लगा रहे थे, लेकिन चूंकि वक्त कम रह गया है तो हमने सोचा जाते जाते मेरा फेवरेट गाना आप सबकी खिदमत में। दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से। डोंट वरी, कल फिर होगी मुलाकात, सेम प्लेस सेम टाइम, यानी कि राइट हियर ऑन 104.9 FM बिटवीन 3 and 5 PM. This is Amreen Hasnat and you are listening to Dil Se.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texas फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
7: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर DP है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
8: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
7: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
8: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
9: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
10: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
11: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
16: Breakfast mein kya khana hai?
17: Keema paratha.
18: Mummy, omelette paratha.
17: Beti, halwa puri.
16: पूरी और तरकारी।
17: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
18: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net।
19: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Grow Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Grow Pravesh India Property Expo by My Square Feet.

जी हाँ बिल्कुल, ये शो मुझसे ही शुरू होगा। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। दोस्तों, आज का शो है उन लोगों के नाम जो काम करने में चाहे बस दो मिनट लगाएं, लेकिन उस काम को अवॉइड करने के लिए 20 मिनट की कहानी बना देते हैं। जी हाँ, आज होगी बात बहानों की, यानी कि एक्सक्यूजेस की। जिम नहीं जाना, आज बॉडी में बहुत पेन है, सुबह जल्दी नहीं उठना, रात को नींद देर से आई, किसी का फोन नहीं उठाया, सॉरी यार फोन साइलेंट पे था ना, और सबसे डेंजरस बहाना ये है कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस यूं आया 2 मिनट। तो आज का सवाल आपके लिए है कि आपकी लाइफ का सबसे लेजेंडरी बहाना क्या है, वो बहाना जो आपने शायद खुद बनाया हो, सुना हो, या किसी और को बनाते हुए पकड़ा हो। डू लेट मी नो, हमें आप कॉल कर सकते हैं 972-235-5555 पे।

दोस्तों देखिए, और कुछ मिला हो या ना मिला हो, पर बहाने हमें काफी बार काफी अच्छे अच्छे मिले। और मुझे तो अभी फोन पे बहुत लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग बहाने भी बताए। और कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि भार्गवी जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है ना, वो रोज रोज टिफिन ना खाने के नए नए बहाने लेके आता है। और उनका ऐसा मानना है कि ये सारी मम्मियों के ना ऐसे कॉमन सी प्रॉब्लम है। और हम दोनों का मानना है कि काफी क्रिएटिव है वो। अगर वो एक साल में बहाने रिपीट नहीं कर रहा है तब तो भाई मैं तो आपके बेटे की क्रिएटिविटी की फैन हूं। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, शायद ना बहुत सारा डीएचए बीएचए खा लिया था उसके टाइम पे, तो अभी वो काफी क्रिएटिव निकल गया है। और वहीं पे हर बच्चों की एक और कहानी बिटवीन यू नो किड्स एंड देयर सन्स एंड डॉटर्स ये था कि आदि ने फोन किया। उन्होंने बताया कि हर सुबह जब उनकी मम्मी उनको जगाती थी तब वो बोलती थी 5 मिनट, बस 5 मिनट और 5 मिनट में जगा देना। हर कोई हम में से यही करता है कि जब भी वो चद्दर खींची जाती है या फिर ऐसा उठो उठो उठो 5 मिनट प्लीज 5 मिनट, और वो 5 मिनट आधे घंटे और 1 घंटे हो ही जाता है। सिद्धार्थ ने भी एक बहुत कॉमन सा एक बहाना बताया कि अगर आपको कहीं जाने का मन नहीं हो, लगा कि अरे यार मन नहीं है, तो अभी बहाना क्या बनाओ, ऐसा कुछ बहाना बनाना पड़ेगा ताकि आपका जो है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ऐसे में आप सोचो आप क्या बना सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो सामने वाला भी आपको ऐसा सिंपथी दे, अच्छा अच्छा कोई नहीं है ना, मेडिसिन ले लो, आराम करो, तुम आराम करो, कोई बात नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि बहानों के लिए भी थोड़ी क्रिएटिविटी ज़रूरी है, ये भी टैलेंट है। और मैं आप लोगों से भी सुनना चाहती हूँ कि आपके बहानों का टैलेंट क्या है, या फिर आपने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बहाने अगर लोगों ने आपको बताए हो, बनाए हो आपके सामने, तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप सबके लिए, स्पेशली मरियम एंड सोहेल के लिए, एक रोमांटिक गाना बजाने जा रही हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट।

दिस इज आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। हम आज बात कर रहे हैं बहाने यानी कि एक्सक्यूजेस के बारे में, और बहुत सारे लिसनर्स हमें कॉल करके बहुत इंटरेस्टिंग बहाने सुना रहे हैं कि जो वो यूज करते हैं अपनी लाइफ में या फिर सामने से उनको आते हैं। और उन्हीं में से अंजलि ने बताया कि जब उनके ना देसी रिलेटिव्स या पेरेंट्स वगैरह कभी कभी स्पेशली रिलेटिव्स जब कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ है यार, उनसे बात करा दो, और सामने आप हस्बैंड को देख रहे होते हैं कि अरे यार बेचारा हस्बैंड तो इंट्रोवर्ट नॉन सोशल, उनको उनकी प्लीडिंग आंखें और इशारे कि प्लीज नहीं प्लीज नहीं। तो ऐसे केस में द पतिव्रता पत्नी जो है अंजलि जी, उनको बचाते हुए बोलती है कि वो तो ऑफिस गए हैं, बाद में बात कर लेंगे। तो हाउ क्यूट, आई मीन कितने प्यार से उन्होंने बचा लिया अगर उनका मूड नहीं हो बात करने के लिए, क्योंकि आपको ना कभी भी ऐसा बहुत एनर्जेटिक साउंड करना होता है अपने देसी घरों में या फिर रिलेटिव्स के सामने, आप ऐसा लो नहीं साउंड कर सकते वरना उनको परेशानी भी हो सकती है। तो ये तो बात थी रिलेटिव्स के बारे में, और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और रिलेटिव मीडिया के बारे में। जी हाँ, इंस्टाग्राम रील्स वाला REEL रिलेटिव मीडिया फनेशियर नेटवर्क लेके आए हैं अपनी मीडिया एक्सपर्टीज आपके सोशल मीडिया तक विद रिलेटिव मीडिया। इंगेजिंग रील्स से लेके ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्पलीफिकेशन, ये सब कुछ थ्रू फनेशियर रेडियो डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स। रिलेटिव मीडिया देगा आपके ब्रांड को एक कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन एंड मेकओवर। तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं, अपने बिजनेस को और ग्रो करें बाय कॉलिंग एट 9469-424-3188। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, द नंबर इज 4694243188। तो आप अपने कंटेंट ऑडिट को अभी भी बुक कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे कि कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना चाहिए आपके ब्रांड या आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, ऑल एवरीथिंग, पूरा का पूरा सोल्यूशन एक ही जगह पे। एंड दैट्स रिलेटिव मीडिया फॉर यू, एंड दिस इज पावर्ड बाय फनेशियर नेटवर्क।

0: जी आज हम बात कर रहे हैं बहानों के बारे में, एक्सक्यूजेस के बारे में, और कुछ बहाने ऐसे हैं जो आपको हर घर में मिलेंगे। नंबर वन है कि कल से पक्का, कल से जिम, कल से डाइट, कल से सेविंग, कल से इंग्लिश पे काम करेंगे, कल से फोन यूज कम करेंगे। लेकिन फिर कल आता है और हम बोलते हैं आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल से पक्का। मुझे तो लगता है कि ये कल से ना एक ऐसी इमेजिनरी डेट है जो हम सबकी लाइफ में परमानेंटली बुकिंग करके बैठी है, पर वो आता कभी नहीं है। बहाना नंबर टू है नेटवर्क नहीं था। चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में, दुबई में, मलेशिया में, बांग्लादेश, नेपाल या फिर US में, ये बहाना इंटरनेशनल है। आपने मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं किया, फोन किया पर सामने वाले ने उठाया नहीं, और दो दिन के बाद रिप्लाई आता है कि यार नेटवर्क इशू था, यार मुझे तो ये मिला ही नहीं। लेकिन उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टोरीज अपलोड हो रही थी लगातार, उनके लिए उनको वाईफाई मिल गया। और बहाना नंबर तीन है कि ट्रैफिक बहुत था। अगर आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जैसे 9 बजे की मीटिंग है और आप घर से 8:55 पे निकले, फिर आप तो आपने ना अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं कि वहां पे जाके यही बोल दूंगा कि भाई ट्रैफिक बहुत था, सिग्नल काफी मिल गए। लेकिन गूगल मैप्स ने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आज आप लेट होने वाले, आपने शुरुआत ही लेट की थी। और अभी अभी हमें कॉल आया था मोहम्मद जी का, जो उन्होंने अपने बहानों के बारे में बात की कि वो जो है अक्सर दोस्तों के साथ बैठे होते और अगर बार बार वाइफ का फ़ोन आ रहा है तो ये कहते बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में, और ये बहाना तो घंटों चलता रहता है, क्योंकि यार जब दोस्तों के साथ बैठे हो तो मन थोड़ी करता है वापस जाने का। और उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की हमसे कि हम आप लिसनर्स के साथ भी ये शेयर करेंगे, अभी खास मौसम काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप ओक्लाहोमा जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ अगर आप देखेंगे मैप में, सो कुछ तो आई थिंक ऑन द वे पड़ता है, वहाँ पे बहुत ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह टाइप का है जो कि बहुत अच्छा है, और आपको फुल फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यू नो कहाँ पे चले जाएं कि कुछ घंटों में ही कुछ अच्छा सा देखने को मिल जाए, तो दिस माइट बी अ गुड स्टॉप फॉर यू। और हमारे लिसनर्स ने भी सजेस्ट किया है, वो खुद जाके आए हैं, तो I think you should try it.
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

जब हम इतने सारे बहानों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ बहाने हम अपने बचपन के भी याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने स्कूल में होमवर्क नहीं किया होता था और फिर नेक्स्ट डे हम पकड़े जाते थे अपने टीचर से कि और पूछा जाता था कि बताओ क्यों नहीं किया होमवर्क, तो हम कैसे अजीबोगरीब बहाने लेके आते थे कि वो ना मैम हमारे पेट डॉग ने ना होमवर्क खा लिया, मैंने तो किया था मैम, लेकिन नोटबुक तो घर पे ही भूल गए। और फिर सामने से जवाब आएगा, अच्छा लंच बॉक्स लाना नहीं भूले, या फिर मम्मी ने कहा था कि आज तो स्कूल की छुट्टी है पर तो छुट्टी नहीं हुई। और बचपन में हम टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते थे, बड़े हो के कैलेंडर को, अलार्म को और खुद को नो ऐसे बेवकूफ बनाते रहते हैं, अलार्म स्नूज कर करके सोते ही रहते हैं। और फिर अगर हमारे घर वाले कह दे कि थोड़े मेड नहीं आई है, थोड़ा बर्तन वर्तन धो दो, थोड़ी हेल्प कर दो, तो कुछ लोग तो कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अचानक से अरे अभी याद आया एक इम्पॉर्टेंट मेल भेजना था यार मम्मी, वो फटाफट कर लेता हूँ, या फिर ऑर्डर कर लेते हैं रोज़ क्या खाना बनाना है। या फिर बहुत सारा ऐसा कुछ भी सफाई करनी हो तो भी हम कि थोड़ा और गंदा होने देते हैं, थोड़ा और गंदा हो जाएगा ना तो साफ ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे से क्लीन होता है गंदा होने पर, ऐसे अजीबोगरीब बहाने भी लेके आते हैं। बट मुझे आप लोगों से सुनने हैं कि सबसे क्रिएटिव एक्सक्यूज कौन सा रहा है जो आपने खुद जो है बनाया है, डिराइव किया है, क्रिएट किया है, या फिर आपको सामने से सुनने को मिला है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 972-235-5555 पे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
6: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
5: Miss Clicks.
7: 100 logon ne click bhi kiya.
5: Customers kitne aaye?
8: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
9: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI. Turn attention into customers. Smartreach AI, a Fun Asia Network product.
10: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
11: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
13: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
14: तारीख पर तारीख
15: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
13: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
16: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं
17: फ्रंट पेज का तो पता नहीं बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
16: कैसे
17: पेज 3 ईटरी
16: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
17: ड्यूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर cocktails, classic bowls, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
16: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
18: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
19: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.